मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 मई सन 2026, प्रातः के 5:55 और 35 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, चिड़ियों के मधुर कलरव और सूर्य की पहली किरण के साथ हो चुकी है प्रातःकालीन की शुरुआत। थोड़ी ही देर में संपूर्ण धरती पर नई किरणों के साथ नई ऊर्जा का संचालन करेगी और ये संपूर्ण धरती अपनी उसी नई ऊर्जा के साथ बढ़ जाएगी। और श्रोताओं, इसी नई ऊर्जा के साथ लेकर आए हैं हम कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी हमजोली, जी हाँ संजोली। श्रोताओं, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, धीरे धीरे वक्त हो चला है दीन दुनिया की खबर रखने का, यानी समाचार का। तो आइए चलते हैं हमारे दिल्ली स्टूडियो।

0: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी

वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक

0: कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एनडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि की एक विशेष महत्ता है और वही महत्ता है कृषि चर्चा की भी। तो आइए श्रोताओं, जानते हैं अरबी की उन्नत खेती के विषय में। जानकारी दे रहे हैं नागेंद्र सिंह रघुवंशी। कार्यक्रम है कृषि चर्चा।
2: शुभ प्रभात। अरबी की खेती सामान्यतः हमारे पूरे देश में की जाती है, लेकिन प्रमुख रूप से उत्तरी और पूर्वी राज्यों में अरबी का उत्पादन अधिक होता है। हमारे यहाँ परंपरागत रूप से अरबी की खेती होती रही है और इसका उपयोग भी काफी व्यापक स्तर पर रहता है। अरबी एक शाकीय पौधा है, जिसमें जमीन के अंदर बनने वाले घनकंदों को सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अरबी में मंड की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अरबी में लोहा के साथ साथ प्रोटीन एवं खनिज लवण की मात्रा भी अन्य कंदों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है, जिससे इसका प्रयोग आयुर्वेदिक दवाइयों के बनाने में भी बहुतायत से किया जाता है। लेकिन सब्जी रूप में या चोखा रूप में इसका प्रयोग अवध और पूर्वांचल क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है। जब इसकी महत्ता को हम देखते हुए खेती की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा ध्यान जाता है कि उन्नतशील जो किस्में हैं, अच्छी किस्में हैं, उनके बारे में जानें। एक सतमुखी जाति है इसकी, जिसके पौधों की ऊंचाई 100 से 150 सेंटीमीटर तक की होती है, लेकिन मातृ घनकंद जो है वह मध्य आकार के होते हैं। बाहरी घनकंद काफी संख्या में और आकार में पुष्ट होते हैं। पकाने में अच्छी तरह से घनकंद गल जाते हैं। इसकी औसत पैदावार 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और इस किस्म को अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाने के लिए संस्तुत किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। श्री रश्मि भी है, इस किस्म के पौधे 100 से 150 सेंटीमीटर लंबे और सीधे बढ़वार वाले होते हैं। पत्तियां मध्यम

0: आकार की चौड़ी और डंठल गहरे हरे बैगनी रंग के होते हैं। घनकंद बड़े बेलनाकार और मध्यम आकार के होते हैं। घनकंदों की औसत पैदावार 150 से लेकर 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। श्री पल्लवी भी है एक जाति, यह भी 100 से 150 सेंटीमीटर ही लंबी होती है और सीधे बढ़वार वाले होते हैं। लेकिन इसके उत्पादन की अगर हम बात करते हैं, उपज की जिसे हम कह लेते हैं, तो वह 150 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। कंदयाम सी एक प्रजाति है। इसकी 7 नंबर की सीरीज काफी उपयोगी है। इनके कंदों का आकार काफी लंबा होता है तथा प्रत्येक क्लंप में औसतन 4 से 5 पुत्तियां निकलती हैं। इस किस्म के कंद की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर, मोटाई 15 से 80 सेंटीमीटर और प्रति क्लंप का भार 550 से लेकर 600 ग्राम तक का होता है। इन किस्मों के अतिरिक्त अगर हम देखें तो अहीना, पूनम पेट, जाखड़ी साकीन 5, मुक्ता केशी, टोपी, एनडीसी 1, ये बहुत सारी जातियां हैं जिसे हम उगा सकते हैं। और अपने यहाँ देखें, जो नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है या फिर चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, वहां से संपर्क करके इनके जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनकी सहायता से अच्छी खेती की जा सकती है बीज प्राप्त करके। इसके लिए भूमि और जलवायु के लिए क्या कहना, यही समय चल रहा है, इसी समय इसकी बुआई की जाती है अपने पूरे उत्तर प्रदेश में और दूसरा होता है उधर खरीफ मौसम में। लेकिन जायद में जिनके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वह इसकी बुआई कर सकते हैं। बुआई के लिए खेत की जुताई अच्छी तरह से करके खेत को समतल बना लेना है और अरबी की बुआई मेड़ों पर करनी चाहिए जिससे पैदावार आपको अच्छी मिले। कंद से कंद की दूरी 45 सेंटीमीटर और मेड़ से मेड़ की दूरी 60 सेंटीमीटर रखने पर उत्पादन अच्छा मिलता है। कुछ जगहों पर इसे समतल क्यारी में भी बोया जाता है। समतल क्यारी में कंदों की बुआई गड्ढों में की जाती है जिसमें कंदों को 5 से 10 सेंटीमीटर की गहराई तक बोते हैं। अरबी के कंदों को 45 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बोया जाता है जिसमें अरबी के कंदों की 1.5 टन से 2 टन प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होगी। तो इस तरह से उसकी आप बुआई कर सकते हैं। खाद उर्वरक का प्रयोग तो करना ही करना है, इसलिए गोबर की खाद 10 से 15 टन और फास्फोरस, पोटास और नत्रजन, इसका भी जो प्रयोग आप करेंगे, नत्रजन 80 किलोग्राम, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना होगा। नाइट्रोजन और पोटाश की आधी मात्रा तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय खेत में मिला देना होगा। बाकी बची हुई नाइट्रोजन और पोटाश की मात्रा को 2 बार में बीज जमने के 7 से 10 दिन बाद तथा दूसरी 1 महीने बाद खेत में डालकर मिट्टी चढ़ा देना होता है, तब जाकर के बढ़िया उत्पादन मिलता है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा में, जिसमें आज का विषय था अरबी की उन्नत खेती और जानकारी दे रहे थे नगेंद्र सिंह रघुवंशी। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है और कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है गांधी चर्चा का।
2: गांधी चर्चा।

0: सबसे पहले आप सुनेंगे बापू के विचार।
1: मनुष्य का अंतिम उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति। मनुष्य चाहे जो करे, उसकी सारी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक हलचलों को ईश्वर के साक्षात्कार के चरमोद्देश्य से परिचालित होना है। सभी मनुष्यों की तत्काल सेवा हमारे प्रयत्नों का अविभाज्य अंग इसीलिए बन जाती है कि ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय उसे उसकी सृष्टि में देखने का प्रयत्न करते हुए उससे एक रूप हो जाना है। ऐसी स्थिति सबकी सेवा के लिए बिना प्राप्त नहीं हो सकती। मैं समग्र का अंग हूँ और सारी मानवता से विलग होकर मैं

समग्र से जुड़ा नहीं रह सकता। सच्चा व्यक्तित्व अपने को शून्य बना लेने में है। जीवन का रहस्य है स्वार्थहीन सेवा। सबसे बड़ा उद्देश्य है वीतराग बनना। ऋषियों ने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर सदाचार के नियम बनाए थे। ऋषि वह है जिसने वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया है। गीता ने फल की इच्छाओं से प्रेरित कर्म के त्याग को संन्यास कहा है, जो कामनाओं अर्थात कर्म फल की इच्छाओं को छोड़ देता है। जो जितेंद्रिय है वही वास्तव में मनुष्य है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य जिस अनुपात में मानवता प्राप्त करता है, अर्थात मानव समाज से अपनी एकता का अनुभव करता है, वो उसी अनुपात में ईश्वरत्व के निकट पहुंचता है। व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति का विकास करे तो दूसरे व्यक्ति या समूहों द्वारा शोषण कम होता चला जाएगा और व्यक्ति स्वयं अपने विवेक के अनुसार काम करेगा। भावना और विचार दोनों ही मनुष्य स्वभाव के अंग हैं। इंद्रियों की अंधी प्रगति के वश में होकर बुद्धि अथवा विवेक के अंकुश को अलग कर देना मानो एक बहुत बड़े मानवीय सत्ता क्षेत्र को छोड़ देना है। मनुष्य को यह सत्ता क्षेत्र कुछ दिनों के लिए सौंपा गया है। इस क्षेत्र में अच्छी और बुरी ताकतें हावी होने की कोशिशें किया करती हैं। लोभ और मोह इसे लेना चाहते हैं। इन्हें पराजित करना ही पुरुषार्थ है। जो किन्हीं बाहरी शत्रुओं से लड़ता है और भीतर के अनंत शत्रु के विरोध में एक उंगली भी नहीं उठाता, यहाँ तक कि उन्हें मित्र समझने की भूल करता है, सच्चा योद्धा नहीं है। विवेक के जाग जाने पर भावनाएं उसका अनुकरण करती हैं। विवेक को जगाने का अर्थ है बुद्धि को जगाना, अच्छे और बुरे में अंतर करना और आत्मा की आवाज को सुनना और समझना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, ये करते हैं उस परमपिता को याद कार्यक्रम आराधना के साथ।

मानव में उत्तम पुरुषोत्तम है, हे जानकीनाथ, आपका जीवन सदैव सदा और सर्वोत्तम है, हमें अपने चरणों में स्थान दें।

हे कौशल्या के नंदन राम, हे अवध के राजा राम, पुरुषोत्तम में उत्तम तुम पुरुषोत्तम, हे रघुकुल के राजा राम।

हे ईश्वर, जिसे संसार ठुकराता है उसे तू अपनाता है, मजबूत बनाता है, उठाता है और फिर से उसे खड़ा कर देता है आत्मविश्वास के साथ।

तेरी रोशनी से ही सहारा है माँ, तेरी ज्योति से ही उजियारा है माँ। तू हर राह में दिया बन, बस साथ चलना, तेरे नूर का ही उजियारा है माँ।

हे ईश्वर, हम पर अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखना और सदा सद्मार्ग पर हमेशा चलाए रखना। इसी प्रार्थना के साथ आज की आराधना यहीं संपन्न होती है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, जो बना दे मनुष्य को सर्वोत्तम, वो महिमा है श्री रामचरितमानस की। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस की संगीत में प्रस्तुति। आज आप सुनेंगे भाग 172।

श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता को वन की राह पर बढ़ते देख वनवासियों के द्रवित हृदय में स्नेह, श्रद्धा और सद्भाव उमड़ पड़ते हैं। ऐसे सुकुमार शरीर वाले वन के कठिन मार्ग पर कैसे चलेंगे? इनके कोमल रक्ताप चरणों के स्पर्श से धरती वैसे ही सकुचा जाती है जैसे वनवासियों के हृदय सकुचा रहे हैं। विधाता को यदि इन्हें वनवास ही देना था तो इनकी राह में फूल क्यों नहीं बिछा दिए? यदि सृष्टिकर्ता से मांगे मिल जाए तो वनवासी उन्हें अपनी आंखों में बसा लें। श्री राम के दर्शन के लिए गांव-गांव के लोग खींचे चले आते हैं। कुछ लोग ऐसे सुकुमारों को वनवास देने वाले राजा रानी को दोष देते हैं तो दूसरे राजा की इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि ऐसा करके उन्होंने राह घाट के लोगों को श्री राम के दर्शनों का सुअवसर प्रदान किया। धन्य है वे माता पिता जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, धन्य है वो नगर जहाँ से ये आए हैं, और धन्य हैं वे पर्वत, वन, गांव और ठौर जहाँ ये जा रहे हैं। आगे श्री राम और पीछे लक्ष्मण, तपस्वी वेश में इन दोनों के बीच सीता वैसे ही सुशोभित हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया होती है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय प्रसारण। आज आपने सुना भाग 172। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती।
0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब संस्कृत में समाचार होंगे।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्यारभ्य यूएई नेदरलैंड स्वीडन नार्वे

नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस फल की जिसे हम सब बड़े चाव से खाते हैं, जिसका मौसम आते ही हर गली हर नुक्कड़ पर खुशबू तैरने लगती है और जो हमारे दिल के भी उतना ही करीब है जितना हमारी थाली के। हम बात कर रहे हैं आम की, जिसे हम सब प्यार से फलों का राजा कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम केवल स्वाद का खजाना ही नहीं बल्कि सेहत का भी अद्भुत स्रोत है। गर्मी के मौसम में जब लू चलती है, धूप चुभती है और शरीर थकान से भर जाता है, तब आम हमें न केवल ऊर्जा देता है बल्कि हमारे शरीर को ठंडक और पोषण भी प्रदान करता है। आम में भरपूर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स और नेचुरल शुगर पाई जाती है। ये सभी तत्व मिलकर हमारे शरीर को न केवल ऊर्जा देते हैं बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं। आम को खाने का सबसे पहला और जायकेदार तरीका है उसका पका हुआ रूप, रसदार, मीठा और खुशबूदार। लेकिन कच्चे आम यानी कैरी का अपना ही महत्व है। कैरी से बनी चटनी, पना, अचार और लौंजी, ये सब केवल स्वाद की बात नहीं करते बल्कि शरीर को लू से बचाने, पाचन शक्ति को सुधारने और प्यास को शांत करने का काम करते हैं। खासकर पना, जिसे कैरी को उबालकर पुदीना, काला नमक और जीरा मिलाकर बनाया जाता है, ये एक बेहतरीन देसी इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक की तरह काम करता है। शरीर से अतिरिक्त गर्मी को निकालता है और थकान को भी दूर करता है। अब जब बात पके आम की हो रही है तो ये जान लेना बेहद जरूरी है कि ये फल न केवल स्वाद में अद्वितीय है बल्कि शरीर की कई जरूरतों को पूरा करता है। विटामिन ए की प्रचुरता आंखों की रोशनी के लिए लाभकारी है। वहीं विटामिन सी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। आम में उपस्थित फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आम खाने से मोटापा बढ़ता है, लेकिन अगर इसे सीमित मात्रा में और सही समय पर खाया जाए तो ये वजन नहीं बढ़ाता बल्कि मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने में मदद करता है। खासकर दोपहर के खाने से पहले आम खाना ज्यादा फायदेमंद होता है। यदि आप आम खाने के तुरंत बाद भारी खाना खाते हैं तो ये जरूर पाचन पर असर डाल सकता है, इसलिए समय

0: में मदद करता है। खासकर दोपहर के खाने से पहले आम खाना ज्यादा फायदेमंद होता है। यदि आप आम खाने के तुरंत बाद भारी खाना खाते हैं तो ये जरूर पाचन पर असर डाल सकता है, इसलिए समय और मात्रा का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। श्रोताओं, आम केवल शरीर के लिए ही नहीं बल्कि त्वचा के लिए भी लाभकारी होता है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स त्वचा को भीतर से पोषण देते हैं और त्वचा को चमकदार, कोमल और हाइड्रेटेड बनाए रखते हैं। कई लोग आम के गूदे का फेस पैक की तरह उपयोग भी करते हैं, जिससे त्वचा को निखार मिलता है। बच्चों के लिए तो आम किसी खजाने से कम नहीं है। ये एक ऐसा फल है जो उन्हें जायका देता है, नखरे नहीं करवाता और साथ ही उनके विकास में भी मदद करता है। बच्चों की हड्डियों, मांसपेशियों और दिमागी विकास के लिए आम में मौजूद पोषक तत्व बेहद सहायक होते हैं। बुजुर्गों के लिए भी आम ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है, बशर्ते शुगर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसका सेवन किया जाए। ये कहना गलत नहीं होगा कि आम एक ऐसा फल है जो केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन को भी आनंद देता है। आम से जुड़े किस्से, आम के बागों की सैर, आम रस की मिठास, ये सब हमारी सांस्कृतिक स्मृतियों का हिस्सा बन चुके हैं। आम का मौसम हर बार गर्मी में एक उत्सव की तरह आता है और हर उम्र के लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आता है। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि बहुत ज्यादा आम खाना भी नुकसानदायक हो सकता है, खासकर यदि उसे दूध या अन्य भारी चीजों के साथ तुरंत खाया जाए। इससे पाचन पर असर पड़ सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है। न ज्यादा न कम, बस उतना ही जितना शरीर को जरूरत हो और आत्मा को तृप्ति मिले। श्रोताओं, इस गर्मी के मौसम में जब आम फिर से बाजारों में अपनी महक के साथ आए तो उसे केवल स्वाद के लिए मत चुनिए बल्कि ये भी जानिए कि वो आपकी सेहत के लिए क्या क्या कर सकता है। आम केवल एक फल ही नहीं बल्कि वो मौसम का प्रेम है जो हमें प्रकृति भेजती है, स्वाद में रचा बसा और पोषण में भरा पूरा। श्रोताओं, आज की स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: श्रोताओं, भी आपको जानकारी मिल रही थी आम के गुड़ों के बारे में और जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। कार्यक्रम था स्वास्थ्य चर्चा। श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं, आज रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा पंडित राजखुशी राम का पखावज वादन ताल चौताल। रात्रि 9:30 पर पत्र व ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद होगा। कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे मोहम्मद अजीज के स्वर में नात और कव्वाली रात्रि 8:10 पर। रात्रि 8 बजे होगा हिंदी कार्यक्रम। शाम 7:31 पर होगा कार्यक्रम अंग्रेजी कार्यक्रम। हमारे किसान भाइयों का कार्यक्रम लोकायतन व खेती किसानी आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर। नई उड़ान ये कार्यक्रम होगा शाम 5:45 पर। और हमारे युवा साथियों का कार्यक्रम युवा तरंग होगा अपने ही समय पर यानी शाम 5:10 पर। विज्ञान और किसानी कार्यक्रम होगा दोपहर 2:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे एक भेंट वार्ता डॉक्टर अशोक कुमार सिंह से। वार्ता का विषय होगा खरीफ मक्का की उन्नत कृषि तकनीक और आपसे बात करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। कार्यक्रम लोक संगीत के अंतर्गत लोक माधुरी में आज आप सुनेंगे संजू सिंह के स्वर में भोजपुरी लोकगीत। फौजी भाइयों का कार्यक्रम जवानों के लिए कार्यक्रम होगा दोपहर 1:50 पर। हमारे शहरी बहनों का कार्यक्रम अपराजिता आप सुन सकेंगे दोपहर 1:15 पर। फिल्म संगीत का फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें आप सुन सकेंगे सुबह 11 बजे। उर्दू कार्यक्रम नशे किया जाएगा सुबह 9:30 पर। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश होगी।

0: प्रातः 9:15 पर सुनिएगा मिर्जापुर व सिद्धार्थनगर जिले की हलचल। श्रोताओं के पत्र व मेल पर आधारित इंटरैक्टिव प्रोग्राम आपके मेल व आपके गीत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 8:45 पर। प्रातः 7:31 पर सुनेगा शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित राजखुशी राम का पखावज वादन ताल सुल। अच्छा थोड़ी देर में यानी प्रातः 7:10 पर होगा कार्यक्रम विविधा, जिसमें आज का विषय है दया धर्म का मूल है। तो श्रोताओं ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: मीडियम वेव मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। विविधा कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं आज का विषय है दया धर्म का मूल है। जी हाँ, मानव जीवन का सबसे बड़ा आभूषण उसका सद्गुण होता है। इन सद्गुणों में दया का स्थान अत्यंत ऊंचा माना गया है। दया वो भावना है जो मनुष्य को दूसरों के दुख को समझने और उनकी सहायता करने के लिए प्रेरित करती है। जिस व्यक्ति के हृदय में दया होती है वो सच्चे अर्थों में मानव कहलाने के योग्य होता है। भारतीय संस्कृति में दया को धर्म का मूल बताया गया है। इसका अर्थ है कि बिना दया के कोई भी धर्म पूर्ण हो ही नहीं सकता। दया मनुष्य को मानवता, प्रेम, करुणा और सहानुभूति का मार्ग दिखाती है। अगर दया के अर्थ की बात की जाए तो दया का अर्थ है दूसरे के दुख दर्द को देखकर उनके प्रति करुणा, सहानुभूति की भावना रखना। जब किसी जरूरतमंद, गरीब या बीमार या असहाय व्यक्ति की सहायता करने का भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है ना, तो वही दया कहलाती है। दया केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं होती। जी हाँ, दया केवल मनुष्य तक सीमित नहीं होती बल्कि पशु पक्षियों और समस्त जीव जंतुओं के प्रति भी ये होनी चाहिए। जिस मनुष्य के हृदय में दया होती है वो कभी भी किसी को कष्ट पहुंचा ही नहीं सकता। जी हाँ, वह दूसरों की सहायता करने में आत्मिक सुख को प्राप्त करता है। इसलिए कहा भी गया है कि परहित सरसि धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। अर्थात दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं और दूसरों को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। धर्म और दया का संबंध, धर्म का वास्तविक अर्थ केवल पूजा पाठ, व्रत या धार्मिक अनुष्ठान करना नहीं होता है श्रोताओं। धर्म का सच्चा स्वरूप मानवता को सदाचार में छिपा होता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति के मन में दया नहीं है तो उसका धर्म केवल दिखावा बनकर ही रह जाता है। दया धर्म की नींव है। जिस प्रकार किसी भवन को मजबूत बनाने के लिए मजबूत आधार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार धर्म को और मनुष्य को कितना मजबूत बनाने के लिए, महान बनाने के लिए दया बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। सभी धर्मों में दया और करुणा का एक विशेष महत्व बताया गया है। भगवान बुद्ध ने भी जीवों पर दया करना सिखाया है। महात्मा गांधी जी ने भी अहिंसा और दया को अपने जीवन का आधार बनाया है। संत कबीर और तुलसीदास जैसे महान संतों ने भी दया को सबसे बड़ा धर्म बताया है। दया का महत्व हमारे

जीवन में बहुत बड़ा है। दया मनुष्य को महान बनाती है। यह समाज में प्रेम, भाईचारा और शांति को स्थापित करती है। यदि संसार में दया ना हो तो चारों ओर केवल हिंसा, घृणा और स्वार्थ ही दिखाई देगा। दया का महत्व कई बिंदुओं पर समझा जा सकता है। अगर बात की जाए मानवता की पहचान की, तो दया से मानवता की एक बहुत बड़ी पहचान बनती है। दया ही मनुष्य को पशु से अलग बनाती है। पशु केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, जबकि मनुष्य दूसरों के सुख दुख को भी समझता है। समाज में प्रेम और शांति लेकर आता है। जब लोग एक दूसरे के प्रति दयालु होते हैं तो समाज में शांति और सद्भावना बनी रहती है। दया लोगों को जोड़ती है, मनस को समाप्त करती है, ईर्ष्या को समाप्त करती है। साथ ही साथ ये भावना हमें आत्मिक सुख की प्राप्ति भी कराती है। जी हाँ, दूसरों की सहायता करने में मन की शांति और संतोष मिलता है। ये सुख किसी धन या वस्तु से प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। दया ही एक ऐसा पड़ाव है जहाँ से ईश्वर की कृपा आप सीधे प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि ईश्वर उसी पर कृपा करता है जो दूसरों पर दया करता है। दयालु व्यक्ति ईश्वर के अधिक निकट पहुँच जाता है। माना जाता है कि ईश्वर उसे अपने सानिध्य में रखता है। दया का उदाहरण इतिहास और समाज में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां दया ने लोगों का जीवन बदल दिया है। बात की जाए महात्मा बुद्ध की, तो इवन महात्मा बुद्ध ने घायल हंस को बचाया था। उन्होंने कहा कि किसी जीव की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म होता है। कई ऐसे महान लोग रहे हैं हमारे समाज में जिन्होंने दया का भाव सबसे सर्वोपरि रखा है। बात की जाए अगर महात्मा गांधी की, तो गांधी जी ने हमेशा गरीबों और पीड़ितों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाई है। उन्होंने अहिंसा के माध्यम से पूरी दुनिया को प्रेम और करुणा का संदेश दिया है। बात की जाए अगर राजा शिवी की, जी हाँ, राजा शिवी भी दया का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। उन्होंने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस तक देने को तैयार हो गए थे। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि दया मनुष्य को महानता की ओर लेकर जाती है और साथ ही साथ ईश्वर के सानिध्य में भी लेके जाती है। आज के समय में दया की आवश्यकता का युग भौतिकवादी और स्वार्थ का युग बनता जा रहा है। लोग अपने लाभ के लिए दूसरों की भावनाओं को भूलते जा रहे हैं। ऐसी समय में दया की भावना की कहीं बहुत अधिक आवश्यकता हो गई है। गरीबों, अनाथों, वृद्धों और बीमारों के लिए सहायता करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। पशु पक्षियों के प्रति भी हमारा दयालु होना जरूरी है। पर्यावरण की रक्षा करना भी दया का ही एक रूप है। जी हाँ, क्योंकि प्रकृति सभी जीवों का आधार है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को दया को नहीं अपनाएगा तो समाज में अनेक समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। दया का सीधा सीधा संबंध अहिंसा से भी आता है। दया का संबंध अहिंसा से बहुत गहरा है। जो व्यक्ति दयालु होता है वो कभी हिंसा का मार्ग अपना ही नहीं सकता। वह सभी जीवों के जीवन का सम्मान करता है। अहिंसा केवल किसी को शारीरिक चोट ना पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी को कठोर शब्दों को बोल देना भी एक अहिंसा ही है। इसलिए दया मन, वचन और कर्म तीनों में दिखाई देनी चाहिए। दया वास्तव में धर्म का एक बहुत बड़ा मूल आधार है। बिना दया के धर्म अधूरा है। दया मनुष्य को सच्चा इंसान बनाती है और समाज में प्रेम, शांति और भाईचारे की भावना को उत्पन्न करती है। हमें अपने जीवन में दया, करुणा और सहानुभूति को अपनाना चाहिए। और साथ ही साथ जरूरतमंदों की सहायता भी करनी चाहिए। पशु पक्षियों पर दया करनी चाहिए। दूसरों के दुख को समझना चाहिए। किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। यदि संसार का प्रत्येक व्यक्ति दया को अपने जीवन का आधार बना ले तो ये दुनिया स्वर्ग से भी सुंदर बन सकती है।

श्रोताओं, आज की विविधा यहीं तक। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। आपदा में जान गंवाने वाले 111 लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को प्रभावित परिवारों तक अविलंब सहायता पहुंचाने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री ने ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की अपील की, कहा संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। गाजियाबाद में NDRF के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश में आज से शुष्क रहेगा मौसम, लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में तेज आंधी तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से हुई जनधन की हानि को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और हर जरूरतमंद तक त्वरित सहायता पहुंचाई जाएगी। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित परिवारों तक अविलंब राहत सहायता पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को अनुमन्य 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त पशु हानि से प्रभावित लोगों को भी नियमानुसार सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखते हुए राहत एवं सहायता कार्यों की निरंतर निगरानी करने के निर्देश भी दिए हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार प्रदेश के 26 जनपदों में खराब मौसम के कारण आंधी तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें 111 लोगों की मृत्यु हुई है जबकि 72 लोग घायल हुए हैं। सबसे अधिक जन हानि प्रयागराज में हुई है जहां 21 लोगों की मृत्यु हुई।
4: इसके बाद मिर्जापुर में 19, संत रविदास नगर में 16 और फतेहपुर में 11 लोगों की जान गई है। समाचार कक्ष से मैं अरुण।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से ईंधन की बचत की अपील के क्रम में मुख्यमंत्री योगी

0: आदित्यनाथ ने भी ईंधन की बचत के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और कार पुलिंग के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने का आह्वान किया है। लखनऊ में एक निजी मीडिया संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। हर नागरिक का दायित्व है कि वह राष्ट्र के साथ खड़ा होकर अपना योगदान दे।
1: अगर आपके घर से ऑफिस जाने के लिए या अपने प्रतिष्ठान में जाने के लिए वह सुविधा है, हम उसका उपयोग करें तो ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि हम इस कार्य को करते हैं, तो यह भी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि संकट के समय हम भी इस आह्वान के साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 7,700 से अधिक गो आश्रय स्थलों में संरक्षित 15 लाख से अधिक गोवंश के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट आधारित सामूहिक किचन मॉडल विकसित करने पर विशेष जोर दिया ताकि एलपीजी पर निर्भरता कम हो सके। इस बीच देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन बचत की अपील और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल का असर दिखने लगा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से प्रभावित होकर लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर राधा कृष्ण धीमन अपने आवास से कार्यालय तक साइकिल चलाकर पहुंचे। वहीं अयोध्या नगर निगम ने फैसला लिया कि अब सप्ताह में प्रत्येक सोमवार को महापौर, पार्षद और अधिकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के जरिए नगर निगम कार्यालय पहुंचेंगे। इस बीच कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने भी सार्वजनिक परिवहन और ई वाहनों के उपयोग किए जाने और विश्वविद्यालय की बैठकों को अधिक से अधिक ऑनलाइन आयोजित करने का निर्देश दिया है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने भी परिषद की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल कहा कि घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
3: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल गाजियाबाद स्थित 8वीं NDRF बटालियन में राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से न केवल जोखिम को न्यूनतम करने के लिए कार्य किया गया बल्कि प्राकृतिक आपदा को कम करके उससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि NDRF ने बीते 2 दशक के कम समय में ही देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है।
4: देश भर में कहीं पर भी जाते हैं, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र इस घोष वाक्य के साथ काम करते हुए NDRF के जवानों के प्रति न केवल समग्र देश, जहां जहां दुनिया में गए वहां आपने प्यार भी अर्जित किया है और लोगों का भरोसा भी अर्जित।
0: कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने वीर जवानों को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने 6 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई शिलान्यास और 1 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई लोकार्पण भी किया।

0: प्रदेश में स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में कल स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम थीम पर डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि निराश्रित गोवंश सरकार की प्राथमिकता है।
1: निराश्रित गोवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है और इसके उत्तर प्रदेश में हम सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश में उत्तर प्रदेश नंबर वन है और भारत का हिस्सा उत्तर प्रदेश में दूध का सबसे अच्छा है। हम दुग्ध महोत्सव के माध्यम से पशुपालकों को दुग्ध संपत्तियों को मजबूत करते हुए महीने के अंदर ही हम दुग्ध उत्पादकों का भुगतान कराने का काम करेंगे और ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसमें दुग्ध उत्पादन की बढ़ोतरी हो।
0: मौसम विभाग ने आज से 18 मई तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। विभाग ने इस अवधि में दिन के समय कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही अगले एक सप्ताह के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की जबकि न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आपदा में जान गंवाने वाले 111 लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को प्रभावित परिवारों तक अविलंब सहायता पहुंचाने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री ने ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की अपील की। कहा, संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश में आज से शुष्क रहेगा मौसम, लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है और श्रोताओं कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ। श्रोताओं, संगीत वो विधा है जो जीवन को लयबद्ध और अनुशासित होना सिखाती है, इसलिए संगीत का जीवन में बड़ा महत्व है। इसलिए आइए श्रोताओं सुनते हैं शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित राजखुशी राम का पखावज वादन, ताल है सुल।

नमः धा ओम ढांग रिंग डुंग रिंग डुंग हनुमते नमः धा ओम ढांग रिंग डुंग रिंग डुंग हनुमते नमः तदा

7 बार तांडव नृत्य किया है, जिसमें रौद्र तांडव और आनंद तांडव बहुत प्रचारित हुए हैं। रौद्र तांडव महासती के भस्म होने के बाद क्रोध में किया था भगवान शंकर ने ये नृत्य, और अगली बार जब मां पार्वती से उनका विवाह हुआ उसके बाद उन्होंने जगत में श्रृंगार रस को व्याप्त करने के लिए दोनों ने मिलके मां और पार्वती और शिव ने युगल नृत्य प्रस्तुत किया विश्व के समक्ष, वो है आनंद तांडव। इसी आनंद तांडव को हमने गुरु कृपा से एक परन बनाई है, जिसका नाम हमने आनंद तांडव परन रखा है। ये स्वनिर्मित है, आपके सामने प्रस्तुत है। और इसमें एक चीज और है, नृत्य को जब उन्होंने किया तो वो संकीर्ण जाति में है, और गणपति गणेश ने सर्वप्रथम पुष्कर नाम के वाद्य, जो आजकल पखावज या मृदंग के नाम से है, उसका वादन किया। तो आपके सामने प्रस्तुत है आनंद तांडव। जटा कटा समभ्रमं भ्रमन्नलिम्प निर्झरि गले लवीच वल्लरि विराजमान मूर्धनि धगद धगद धगद जलललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षण मम जटाटवी गलज जल प्रवाह पाहित स्थले गले वलम्ब लुंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट डमट डमट डमट निनाद व डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिव शिवम बमक बमक बम बमक बमक बम बमक बमक बम बमाक बम बम बमाक बम बम बमाक बम बम बमाक बमाक बम बमाक बम बम बम बमाक बम शिव शंकर सतीपति कैलाशपति गिरजापति हर हर हर विश्वर कार्तिकेय गणपति पितु शंभु सांब सदा शिवकारक शत्रुविदारक डमरु अरुत्रिशूलकर धारक महादेव अभयंकर प्रलयंकर कृतकता धान धिकिट धद्र धिकिट कृध धिकिट नतिकत त्रिकृतान धा त्रिकृतान धा त्रिकृतान धा डम डम डम डम डिमि डम डिमि डम डम डमरु बजावत पार्वती संग नटत नटेश्वर संगति करत पुष्कर गणपति दे या छवि निरख राज ताली दे स्तुति गावत मृदंग बजावत सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहिताम नमामि कत्त दिगट धगट दिगट धगट धान धा धगट धान धा धगट धान धा भवम भवानी सहिताम नमामि कत्त दिगट धगट दिगट धगट धान धा धगट धान धा धगट धान धा भवम भवानी सहिताम नमामि कत्त दिगट धगट दिगट धगट धान धा धगट धान धा धगट धान धा।

प्रस्तुत हैं कुछ परने जो घरानेदार भी हैं। सबसे प्रथम नाना पांसे घराना। दादी टा दादा टीट किले दाकी टा दिदा की दिदा की टिकी टिकी दिदागे ते टिकर दाते ते दागे ते टेगा दिगा ने नागे ये गे ते टेगा ते दिता गिन नागे दिगे ते त्रिकर ते दागा ते दिता गिन ने दागे दी धु धु त्रिकर के दा कर दा न दा दा गे दिगे ने दा कद दागे दिगे त्रिकर ते दागा दागा दागा ते दिता गिन ने दागे दिगा न दागे दिगा न दे दे दे दे दे टिकी ते दागा ता दोम किट तक देत किट धाग दिगत लग दिन दिलान देता तिरगर तक ता गदी गन धाग तिट कतिट तगिन धाग निदा कतिट तगिन धाग तिट धान धा कतिट तगिन धाग तिट

एक रामपुर दरबार की शतरंगी परन जिसमें छह लय बनती हैं, दिन ता तिट धा तिट कत घ दी घ धा तिट धा तिट धा धा तिट किट धा किट धा धान धिकिट तक धिकिट तधिकिट तगन धा तगट तग तक धगट दग दिन धगट दग दिन दगन धा किट तक दिगन किट तक तकिट थुकिट तक धद्र धिकिट तक धा धान धिकिट तकिट थुकिट तकिट थुकिट दिगन ला धकिट धान धा त्रिगण तक दात्रिक गिगन धा कांधा त्रिगण तक दात्रिक गिगन धा कांधा त्रिगण तक दात्रिक गिगन धा कांधा धकिट

कुछ चक्रदार परने द्वेक तगदी गल, ये अवधि घराने की चक्रदार परन है जो फरमाइशी है। तगते टिकट तगते टिकट तगते तगते तगते धगते टिकट धगते टिकट धगते धगते धगते धगना धगते धगना धगते धगते धगते धगते धगना धगते धगते टिकट धगते धगते कतगदी धगते तगिन धत्ता किट तगिन धान धा। फरमाइशी है, देखें

चैत्र का महीना चल रहा है और अभी 22 तारीख से माँ का स्तवन नवरात्र के रूप में होगा, जो 9 दिन 9 देवियों के पर आधारित होगा। 9 दुर्गा को

स्कंद पुराण में प्रथमम शैलपुत्रीम च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रि महागौरी च अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इस तरह श्लोकबद्ध किया गया है। इसी श्लोकों पर आधारित गुरु कृपा से हमसे ये रचना बन गई है जो नवदुर्गा परम के नाम से प्रचारित है। इस स्वनिर्मित रचना को आप सुने और माँ दुर्गा का स्तवन अपने हृदय में करें। धा दिन ता तेट धा त्रिकट गति गिन धा त्रिकट गति गिन धा त्रिकट धा गिर तक धूम गिरता गति गिन धा धूम गिरता गति गिन धा धूम गिरता गति गिन धा दुर्गे दुर्गति हारणी माता दधान तान धा गति गिन धाता शैल पुत्र जय ब्रह्मचारिणी दर्प दलन त्रय ताप हारणी गति गिन धा धा गति गिन धा धा गति गिन धा धा चंद्र घंटा घनन घनन घन घनात घनन कुष्मांडामा गदिन धान तान धा स्कंद मात जय कात्यायनी काल रात्रि जय कांत्रिकृत तक धागृत धूमृत घांत्रिकृत तकान महागौरी जय सिद्धिदात्री अणिमा धा महिमा धा लघिमा धा त्रिकृत तकात ईशत्तधा वैशत्तधा प्रकाम्य प्राप्त अंतरमितत्तधा धा धा पुंगी फल तांबूल लमग ध्वज कुमकुम अक्षत प्रसून श्रीफल कपूर कर धर राज नमत जय नव दुर्गे शंख नाद दिग दिग दिगंत में मृदंग करत गुंजार धा जय मा जय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंड विच्चे नमः। धा धा धा धा धा धा धा धा धा बीच में अष्ट सिद्धि और नौ प्रकार की पूजन सामग्री का भी प्रयोग जो मृदंग वांग में प्रथम बार आया है इसका भी प्रयोग किया गया है इस स्मरण में।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना श्री राजखुशी राम का पखावज वादन ताल थी सुल, और इसी कार्यक्रम के साथ आज का नमस्कार लखनऊ यहीं संपन्न होता है। कल फिर हाजिर होंगे इसी कार्यक्रम के साथ और नई आवाज के साथ। थोड़ी देर में अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सोवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग

0: हानि और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव

0: चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पुद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और

0: बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और LIC द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए UDF मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: VD सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। UDF सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर UDF के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और UDF के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वे यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रन।
0: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महा आवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट PM डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री

0: तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं, ये बहुमत की तानाशाही चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं? निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी SIR, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने CUET UG में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, NTA का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोताओ, आपने ट्यून किया है FM 100.4 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी बरेली।

श्रोताओ, ये आकाशवाणी बरेली एफ एम 100.4 मेगाहर्ट्ज है। आइए सुनते हैं रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शनिवार दिनांक 16 मई 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है, समय से पूर्व पैदा हुए अथवा प्रीटर्म बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे शुक्रवार दिनांक 15 मई 2026 को शाम 4 बजे से, यानी आज शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें टेलीफोन नंबर 0581251720 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लीजिएगा, विषय है समय से पूर्व पैदा हुए अथवा प्रीटर्म बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, शुक्रवार दिनांक 15 मई 2026 को शाम 4 बजे से, यानी आज शाम 4 बजे से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 0581251720। श्रोताओं, इसी के साथ रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना समाप्त

0: श्रोताओ, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है FM 100.4 MHz पर। आइए अब सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे।
1: फिल्मी फ्राइडे कट वन
2: टेक वन 5, 6, 7, 8
1: लाइट कैमरा एक्शन एक्शन एक्शन।
3: Ladies and gentlemen, hold your heart.

0: नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के बॉलीवुड गॉसिप्स के उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है फिल्म माय फ्राइडे विद द डोज ऑफ बॉलीवुड गॉसिप्स एंटरटेनमेंट। बातें सिर्फ फिल्मी नहीं होती हैं बल्कि कुछ बातें इल्मी भी होती हैं। आप अगर हमारे साथ आएंगे तो यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, अब कुछ देर के लिए ही सही अपनी सारी टेंशन बाय बाय कर जाएंगे।
1: हाँ तो देन किस बात की, ट्यून तो किए हुए हुई हो
0: मगर वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। अरे इतना ज्यादा भी ना कि पड़ोसियों को परेशानी होने लगे।
1: देखिए आज के इस दौर में आंखें, कान, दिल, जिगर, गुर्दा सब कुछ बहुत नाजुक हो गए, इसलिए खाएं वो जो आपके शरीर को पौष्टिक हो, देखें वो जो आपकी आंखों को नुकसान न पहुंचाए, और सुने उतना ही जितना श्रवण शक्ति के लिए ठीक हो। इससे ज्यादा भैया ज्यादा बढ़ोगे आगे तो फिर बहुत सारे नुकसान है और ये आजकल देखने में भी आ रहे हैं। देखिए मोबाइल फोन हमारे लिए कई तरह से नुकसानदायक है, हमारी जो जीवनचर्या है, हमारी जो लाइफ साइकिल है उसको भी प्रभावित करता है। मान लीजिए भाई आपका आइडियल टाइम सोने का रात 10 बजे तक है और आप 2 बजे तक जागेंगे और सुबह आपको 5-6 बजे जाना है कहीं या 7 बजे जाना है, तो सोचिए कि आपकी जो नींद की साइकिल है वो डिस्टर्ब होगी कि ना होगी। साइकिल से हमें याद आया, देखिए भाई आजकल के इस दौर में हम जरा सी दूरी के लिए भी अपनी बाइक का यूज करते हैं। अब बाइक का यूज करते हैं चलिए ठीक है, करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यातायात के नियमों का पालन करते हुए हेलमेट जरूर लगाइएगा। इसके अलावा भाई ये जो हमारे पेट्रोलियम संसाधन है वो सीमित मात्रा में है, ज्यादातर तो हमें विदेशों से आयात करने पड़ते हैं, इसलिए जरूरी है कि अगर थोड़ी बहुत दूर के लिए जाएं तो पैदल चल लिया करें। मान लीजिए अगर मॉर्निंग वॉक का टाइम आपके पास नहीं है तो दिन में कम से कम 2-4 बार छोटे मोटे कामों के लिए घर के आसपास जाना हो तो पैदल चले जाइए। हाँ ये मत कहिए, देखिए भाई ये तो आपकी अपनी मर्जी है, आप माने या न माने, लेकिन हम सिर्फ आपकी जेब की बचत बात नहीं कर रहे, हम आपकी जो है शरीर आपके स्वास्थ्य के लिए भी चिंतित रहते हैं। हाँ इसीलिए तो बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन आपको बता दें दोस्तों ये सही भी है, बदलते दौर के साथ जब संसाधनों की कमी होती जाए तो फिर हमें उनका सीमित मात्रा में उपयोग करना आवश्यकता बन जाती है। खैर इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी फ्राइडे और फिल्मों में इल्म भी छुपा होता है, इसीलिए हमने ये बात आपके साथ साझा की। समझ रहे हैं आप, लेकिन देखिए मोबाइल से हमने शुरू की थी और मोबाइल किस हद तक हमारी जिंदगी में, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में दखल दे चुका है, गाहे बगाहे आपको महसूस तो होता होगा। यह अलग बात है कि किसी के कहने पे नाराज हो जाते हो, नाक भौं सिकोड़ने भी लगते होंगे, होता है ना, किसी ने कह दिया इतनी देर हो गई फोन देखते हुए, भैया रख दो इसे, तो ऐसे देखेंगे अभी तो हाथ में उठाया था फोन, आए आपको हमेशा यही दिखाई देता है, हम फोन ही देखते रहे। सच मानिए अगर कोई आपसे ऐसा कहता है तो वो आपके हित के लिए कहता है, जानते सब हैं, मानते कितने हैं, ये बात सोचने वाली बात है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों फिल्मी फ्राइडे में न सिर्फ फिल्मी बातें होती हैं बल्कि बहुत कुछ ऐसी बातें भी होती हैं। एक सवाल जो आपके दिमाग को चकरघंडी बना दे, सच मानिए अगर आप फिल्मी फ्राइडे सुनेंगे शुक्रवार सुबह 8:15 से आपका दिन बन जाएगा। आज सुन रहे हैं ना, हाँ यकीन मानिए पूरे दिन आप अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। हाँ तरह ताजगी से हमें याद आया मौसम भी बड़ा खुशनुमा हो रहा है, आसमान में बादल घटाएं छाई हुई हैं, ये नजारे हैं कुदरत के, तो कभी घर से बाहर निकलिए इन नजारों का भी आनंद लीजिए। और हाँ ये जो बूंदें होती हैं ना पानी की, हमने म्यूजिक प्ले किया, आप महसूस कीजिए इन धुनों में छन छन छन की उन बूंदों को। और भिगो डालिए अपने मन को सुरीले गीत और संगीत के साथ ओनली ऑन 100.4 FM बोले तो 100.4 MHz और न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी बरेली से फिल्मी फ्राइडे। फिल्मी फ्राइडे आपको मौका देता है स्टार या

सुपर स्टार बनने का। कभी दिल में तमन्ना थी आपके कि हम भी फिल्मों के हीरो होते? हाँ, कोई कोई दोस्त तो यह भी सोच रहा होंगे कि विलेन का रोल भी मिल जाता तो काफी था। कई बार तो दिल इस हद तक मजबूर हो जाता है, साइड एक्टर का रोल भी मिल जाता, अरे डांस आर्टिस्ट में ही नंबर आ जाता। लेकिन क्या करें, अफसोस इस किस्मत को वहां तक नहीं पहुंचा पाए। तो फिल्मी फ्राइडे आपके साथ है और आपको मौका मिलेगा स्टार या सुपर स्टार बनने का फिल्मी फ्राइडे के। मेरे दोस्त मायूस बिल्कुल ना हो, हम जो सवाल पूछे उस सवाल का सबसे पहले से ही जवाब भेजो, सुपर स्टार बन जाओगे आप हमारे, और बाकी के जितने भी राइट आंसर मिलेंगे वो सब स्टार कहलाएंगे। तो पिछले हफ्ते भी हमने एक गीत की कुछ लाइनें आपको सुनवाई थी और आपसे पूछा था ये गायक कलाकार कौन है, नाम बताना था। हमारे सभी दोस्तों में सभी के दिमाग चकर घिन्नी बन गए, दिल जिगर गुर्दा पूरे दिन आप तलाशते रहे जवाब, और बिल्कुल आखिर में रात 11:52 के आसपास मैसेज मिले हैं आपके। तो चलिए, पहले सही जवाब जिन्होंने भेजा वो तो सुपर स्टार है, मगर बाकी के स्टार हैं। तो आज एक सुपर स्टार वो तो हमेशा होते हैं, इसमें कहने वाली बात क्या है, लेकिन दो स्टार हैं, टू स्टार कौन कौन? डॉक्टर डी एच बच्चन साहब गणेशपुर गंज डंडवारा से, और कोई दोस्त है क्या? हम जितना फास्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही हमारा पोर्टल स्लो चल रहा है। आप हैं सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज से पवन गौड़ जी। तो दोनों सितारों को, दोनों स्टारों को ओहो बधाई।

सही है, हमने वहीं लगाया दिल जहाँ जाना मना था। और अक्सर वही होता है भैया, जहाँ जाने को मना किया जाए लोग वहीं ज्यादा जाते हैं। मगर हम अपनी बात पर लौट कर आते हैं। आपको बता दें दोस्तों, फिल्मी फ्राइडे समय आप सुन रहे हैं बॉलीवुड गॉसिप्स का।

0: वीकली शो शुक्रवार सुबह 8:15 से आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। तो भैया अब वहीं चलेंगे, हाँ हाँ, जहां फिल्मी फ्राइडे के पिछले हफ्ते के सुपरस्टार हैं।
1: स्टार है, सुपरस्टार है।
0: कार्यक्रम में हम अपने सुपरस्टार का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बधाई हो आपको।
2: जी जी,
0: नाम बता दीजिए।
2: जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम जख्मी, रेलवे रोड गंजनवारा।
0: कैसे हालचाल है जनाब के?
2: जी, मौसम बहुत बढ़िया है यहाँ।
0: हाय, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है
2: जी। आ, आ,
0: आ, तो सुबह का ये टाइम है और आज सुबह मुझे लग रहा है 4-5 बजे से ही बादलों ने आवाजाही शुरू कर दी थी, और हालांकि रात थी लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि आसमान में बादल छाए हुए हैं।
2: जी,
0: आपकी तरफ बारिश हुई क्या?
2: नहीं, बारिश तो नहीं हुई।
0: हमें लगता है कि हमारे बरेली के आसपास के जो जनपद हैं उनमें हल्की फुल्की कहीं बूंदाबांदी
2: हुई। हाँ, हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन बारिश उसे नहीं बोलते।
0: बारिश नहीं बोलते?
2: हाँ।
0: ओहो, इसे क्या कहेंगे?
2: बारिश तो वो होना चाहिए जो छमाछम बारिश हो।
0: हाय, वो अभी ना करवाओ, अभी बहुत सारे किसान साथियों के, किसान भाइयों के बहुत सारे काम बाकी हैं।
2: जी,
0: है ना। तो और बताइए, पिछले हफ्ते जवाब ढूंढने में कोई परेशानी तो ना हुई?
2: अरे क्या कह रहे हैं, दिमाग का दही बन गया।
0: दही ना, हम तो चकर घिंडी बनाते हैं, दही तो अपने आप बन गया होगा।
2: जी,
0: तो ढूंढ ही लिया वैसे आपने?
2: जी हाँ, बहुत टाइम लगा, रात को करीब 12 बजे के करीब पहले ढूंढ पाया मैं से।
0: अच्छा, एक बात बताइए, कितने दोस्त परेशान हुए आपके साथ इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए?
2: जी, मेरे दोस्त जो थे 3 लोग थे, बीपी गौतम, पवन गौड़ और डीएस बच्चन साहब, इन्होंने मेरी बहुत मदद की।
0: लेकिन जवाब तो आपका सबसे पहले मिला, फिर उसके बाद डॉक्टर डी एच बच्चन साहब का जवाब था, फिर उसके बाद पवन गौड़ जी का जवाब था उस दिन।
2: हाँ।
0: तो जवाब क्या था?
2: जी, मनहर उदास थे, उसके गायक कलाकार
0: मनहर उदास साहब थे। 1969 यानी 1969 के आसपास इनका आगाज हुआ बॉलीवुड में, और
2: जी,
0: जो हमने आपको गीत की कुछ लाइनें सुनवाई थी वो पैराडी सॉन्ग था फिल्म शरारत का, जो 1971-72 के आसपास की फिल्म थी।
2: आपने ये गीत जो था 20 से बजाया था,
0: तो यही तो है खासियत।
2: अगर शुरू से बजाते तो आपके पास जवाबों का ढेर लग जाता।
0: हाय, तो ये हमारी कमी रही या सही रहा?
2: जी,
0: पिछले हफ्ते तो उससे पिछले हफ्ते कोई भी जवाब ना मिला।
2: हाँ, बिल्कुल सही बात है, नहीं मिला।
0: तो ऐसे सवाल पूछने चाहिए हमें या नहीं पूछने चाहिए?
2: नहीं, पूछना चाहिए, क्यों नहीं पूछना चाहिए।
0: अच्छा, आज क्या उम्मीद करेंगे, आज कठिन सवाल पूछा जाए या फिर आसान सा पूछा जाए?
2: नहीं, आज भी कठिन ही पूछ ले तो अच्छा है,
0: फिर देखिए, फिर दिमाग की चक्कर खिंडी बन जाएगी।
2: कोई बात नहीं।
0: क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका है, हमारे सभी दोस्त बड़ा मायूस हुए होंगे और कहना चाह भी रहे होंगे कि इतना कठिन पूछने की जरूरत क्या है, यहाँ कुछ मिलता तो है नहीं। तो
2: नहीं, इतना कठिन नहीं, कुछ कम से कम मशक्कत तो करना पड़े श्रोताओं को।
0: हाँ, ये बात सही है आपकी।
2: हाँ।
0: तो ये बताइए कि मनहर उदास साहब के कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
2: जी, विश्वास फिल्म का एक गीत, हमको आपसे बिछड़े हुए एक जमाना,
0: एक जमाना बीत गया। हाय, क्या बात है, आपसे हमको बिछड़े हुए है। ये सुमन कल्याणपुर जी ने गाया है उनके साथ? है,
2: हाँ, उनके साथ सुमन कल्याणपुर है, जितेंद्र और अर्पणा सेन है,
0: गुलशन बाबरा के बोल है।
2: हाँ, हाँ।
0: बहुत बेहतरीन गाना आपने बताया, ये है ना।
2: अच्छा गीत।
0: अच्छा, आपकी पसंद का आज का कौन सा गाना है जो हम सुनवाए आपको?
2: जी, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज माधुरी दीक्षित जी का जन्मदिन है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद।
0: क्या बात है, क्या बात है, हमारी ओर से, पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाकी गाना बता दीजिए।
2: जी, ससुराल फिल्म का गीत है, 1961 में आई थी ये फिल्म।
0: हाँ हाँ,
2: राजेंद्र कुमार, बी सरोजा देवी पर फिल्म आ गया था। एक सवाल मैं करूँ, एक सवाल तुम करो,
0: मोहम्मद रफी साहब और लता जी की आवाजों में,
2: लता जी की आवाज में ये गीत,
0: शैलेंद्र,
2: अच्छा,
0: शैलेंद्र जी की बोल है, शंकर जयकिशन का म्यूजिक डायरेक्शन
2: का संगीत है।
0: चलिए, तो सवालों का सिलसिला जारी रहेगा और जिंदगी वैसे भी सवालों से भरी पड़ी है, कब, कहां, क्यों और कैसे, है ना। तो चलिए, आपका एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद फिल्मी फ्राइडे के सुपरस्टार बनने की, और आपकी पसंद ये रही, लीजिए सुनिए।

0: This is 100.4 FM.
1: ये आकाशवाणी बरेली है जिसे आप सुन रहे हैं इसमें न्यूज ऑन एयर ऐप और FM 100.4 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम चल रहा है फिल्मी फ्राइडे बातें फिल्मों की हो रही है। ये टोटल फिल्मी है, हमारे भी बस का तुम्हारे भी बस का, ये है टोटल फिल्मी चस्का। हाँ, सुनते रहो, बने रहो, बताते रहो, सवाल आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे, वादा है। सवालों के जवाब ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरह से हम अपने जीवन में कई सवालों के जवाब ढूंढते हैं, ऐसा होता तो कैसा होता, क्यों होता, कहाँ होता, कब होता, कितना होता है, कहाँ गए थे, कब गए थे, इतनी देर से क्यों आए, हैं जी, तो ये सब जरूरी है, लेकिन उन सवालों के जवाब भी ढूंढना बहुत बहुत जरूरी है। प्रोग्राम में बढ़ेंगे आगे और अब फिल्म को फ्राई करने की बारी है। बी रेडी, तैयार हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि फ्राई करें हम, सुन ना पाए आप, फिर नाराज हो जाएं, है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं और आज की जो फिल्म है वो, मैं एक्टर नहीं हूं, सच में मैं एक्टर नहीं हूं। ये फिल्म का नाम है, कलाकार है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, चित्रांगदा सतरूपा। ये एक ड्रामा टाइप की फिल्म है। आदित्य कृपलानी ने इसका डायरेक्शन किया है और 2 घंटे के आसपास की फिल्म है। डायरेक्टर आदित्य कृपलानी की फिल्म का शीर्षक भले ही मैं एक्टर नहीं हूं है, मगर इस फिल्म में कलाकार

0: कलाकारों के अभिनय और डायरेक्शन ने कई अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में पुरस्कार और प्रशंसा बटोरी। इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर मार्च 2025 में सैन जोस में आयोजित सिनेक्वेस्ट फेस्टिवल में हुआ था। 25वें न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2025 यानी NYIFF में फिल्म के अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला। वही DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल यानी DCSAFF 2025 में अभिनेत्री चित्रांगदा सतरूपा को बेस्ट एक्ट्रेस और आदित्य कृपलानी को बेस्ट डायरेक्टर जूरी चुना गया। इसके अलावा ब्रैडफोर्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी BRADIFF 2025 और ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क में भी इस फिल्म ने खूब सराहना बटोरी। और अब ये सिनेमा हॉल के जरिए हम सभी इंडियंस, हम सभी भारतीयों के लिए पर्दे पर है।
1: जरा पर्दा हटना दे,
0: फिर देख देख देख तमाशा, मुझे पर्दे पर आने दे। तमन्ना है ना दिल में, तो तैयार रहिए हमारे साथ, हम बना देंगे आपको स्टार या सुपर स्टार बनने का मौका मिल जाएगा। हाँ, फिल्म की कहानी अभिनय की दुनिया की नहीं बल्कि उन दो अकेले लोगों की दास्तान है जो एक दूसरे में जीने की वजह तलाशते हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही अलग अलग महाद्वीपियों में से ताल्लुक रखते हैं। मौनी रॉय यानी चित्रांगदा सतरूपा मुंबई में रहती हैं और वो एक ऐसी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हैं जो एक्टिंग को सिर्फ कैरियर नहीं इबादत मानती हैं। उसे उन लोगों से शिकायत है जिन्होंने कला को शोहरत और लाइक्स की दौड़ में खो दिया है और यही वजह है कि वो अपने आसपास के लोगों को लेकर उनके दिल में एक कड़वाहट है। दूसरी तरफ है अदनान बेग यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो फ्रैंकफर्ट का 50 की उम्र का पार रिटायर्ड बैंकर है। अदनान डिप्रेशन और अकेलेपन से जूझ रहा है। वो अपने जीवन में किसी एक आशा की किरण तलाश रहा है। एक फिल्म ऑडिशन के दौरान दोनों की मुलाकात वीडियो कॉल के दौरान होती है। अदनान जब मौनी की अभिनय क्षमता देखता है तो उसे इतना ज्यादा प्रभावित होता है कि उसे अभिनय में अपना गुरु बना लेता है। और इसके बाद दोनों किरदारों में एक्टिंग टेक्निक्स के लिए किए गए वीडियो कॉल्स का सिलसिला बढ़ता चला जाता है। उन परत दर परत चिड़चिड़े पलों और अपने गहरे डर के बारे में दिल दहला देने वाले खुलासों के बीच मौनी और अदनान के बीच गहरा रिश्ता बनता है। क्लाइमेक्स में दर्शक भी उस वक्त एक भावनात्मक झंझावात से गुजरते हैं जब ये दो किरदार एक दूसरे में आत्म खोज का रास्ता ढूंढ लेते हैं। होता है ना, कई बार हम में से कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। मैं एक्टर नहीं हूं, आदित्य कृपलानी की लिखी निर्देशित और निर्मित फिल्म है। ये भारत जर्मनी की संयुक्त प्रस्तुति मानवीय रिश्तों, अभिनय की कला और विडंबनाओं की एक सूक्ष्म पड़ताल है। इसे निर्देशक ने एक एक्सपेरिमेंटल अंदाज में पेश किया है जहां फिल्म के दोनों ही मुख्य कलाकार तकरीबन पूरी फिल्म में वीडियो कॉल के जरिए ही मिलते हैं। इसका ज्यादातर हिस्सा एक दिन में घटित होता है। हालांकि बढ़ते वीडियो कॉल्स की संख्या के साथ उनकी घनिष्ठता और भी बढ़ती जाती है और वो दोनों ही अपने अपराध बोध, दर्द, असुरक्षाओं, स्याह पहलुओं की परतें खोलते जाते हैं। आदित्य कृपलानी एक बेहद कम डायलॉग्स, लंबे पॉज और खामोशी का इस्तेमाल करके भावनात्मक माहौल तैयार करते हैं। फिल्म का लगभग 80% से ज्यादा हिस्सा फोन कॉल्स के जरिए चलता है। इसका पहला भाग थोड़ा सा धीमा लगता है लेकिन कहानी एक स्लो वर्न की तर्ज पर आगे बढ़ती चली जाती है। मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी और फ्रैंकफर्ट के शांत और सुकून भरे माहौल को भी उन्होंने किरदारों के साथ ऐसे पिरोया है मानो कहीं ना कहीं वो कहानी को फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। फिल्म की खूबी एक ये भी है कि अभिनय की तकनीकों, मनोवैज्ञानिक अप्रोच के जरिए ये डिप्रेशन के पहलुओं को खूबसूरती से दर्शाती है। ऋषिका बरुआ, सुमित सिंह और अजिंक्य पंडित जैसे सिनेमेटोग्राफर्स की तिकड़ी ने मुंबई और फ्रैंकफर्ट की भीड़ भाड़ और उदासी दोनों को ही पर्दे पर बखूबी उकेरा है। अदिति रमेश, अमलान रे और रब्बी शेरगिल का म्यूजिक विषय के मुताबिक है। हाँ, इस म्यूजिक की एडिटिंग थोड़ी बेहतर हो सकती थी। हो सकता है आज के दौर की तेज तर्रार एक्शन फिल्मों के शौकीनों को यह फिल्म रास ना आए, मगर एक्टिंग, राइटिंग और कैरेक्टर्स की जो भावनात्मक गहराई है उनके साथ मैं एक्टर नहीं हूं अपनी धीमी रफ्तार के बीच आपकी बेचैनी को अंत तक बनाए रखती है। ये कहीं ना कहीं आत्म मंथन का रास्ता भी सुझाती है। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे समर्थ अभिनेता हूँ तो हाँ।

कभी निराश नहीं होते। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब वो किरदार जीते हैं तो उसमें इतना खो जाते हैं कि रील और रियल लाइफ के बीच रेखा धूमिल सी लगने लगती है। वो सहज लेकिन साथ ही एक ऐसी जानदार परफॉर्मेंस के साथ प्रस्तुत होते हैं कि उनकी उदासी, घुटन और अकेलापन दर्शकों को भी कचोटने लगता है। मौनी राय के रूप में चित्रांगदा भी नवाज जैसे स्किल्ड और अनुभवी अभिनेता के सामने कहीं भी कमतर नहीं लगती हैं। एक टैलेंटेड मगर फ्रस्ट्रेटेड एक्ट्रेस को उन्होंने बखूबी निभाया है। नवाज को अभिनय की तकनीक सिखाने वाले सीन्स में वो शानदार रही हैं, जानदार रही हैं। अब इस शानदार या जानदार एक्टिंग के लिए आप फिल्म देखना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बाकी आपकी अपनी मर्जी से, देखो या ना देखो, हमारा काम फ्राई करना था वो हमने कर दिया। फ्राइंग पैन करते हैं बंद। हाँ हाँ, मगर चलते चलते बताना चाहेंगे आपको, एक्सपेरिमेंटल फिल्मों के अगर आप शौकीन हैं, आप कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो इस लीक से हटकर हो और खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक साथ रहे, तो मैं एक्टर नहीं हूं, आपके लिए हो सकती है। वैसे थोड़ी आपकी अपनी मर्जी, फिल्म को फ्राई करना हमारा काम था, फ्रैंक बैन कर दिया है बंद। मिलेंगे हफ्ते में अगले एक और फिल्म लेकर, है ना, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ।

0: This is 100.4 FM.
1: ये 100.4 FM बोले तो 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बरेली से फिल्मी फ्राइडे आप सुन रहे हैं। और अब बारी है सवाल की। सवाल वो जो आपको बना दे स्टार या सुपर स्टार। आप अपने सवाल आज रात 12 बजे से पहले हमें जवाब भेज दीजिए अपने। और सबसे पहले टाइप कीजिए जवाब भेजने के लिए तरीका। टाइप कीजिए BLYFM स्पेस दीजिए, फिर उसके बाद अपना जवाब, नाम, पता और अपना मोबाइल नंबर और इसे भेज दीजिए फिल्मी फ्राइडे एवरी फ्राइडे के पेज पर। मन्ने इंतजार से। हाँ हाँ, हमें गाना सुनवा रहे हैं, आपको गायक कलाकार का नाम बताना है। बहुत ही इजी सवाल है, आप जरा सी देर में ही सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे। गायक का नाम, सिंगर का नाम बताइएगा।

सभी गायकों के नाम बताने हैं जो इस गाने में है। हम चले, अब वक्त हुआ पूरा, पूरे से भी ज्यादा पूरा। भैया आपने वैल्यूएबल फीडबैक भेज दीजिएगा आपका पत्र मिला डॉट बरेली @gmail.com पर या फिर आकाशवाणी बरेली की

0: इस पर आपका पत्र मिला, कार्यक्रम संबंधित पोस्ट में कमेंट कर दीजिए, पता भी लिख सकते हैं आप पत्र लिखने के लिए। कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी बरेली, पिन कोड 243001। हम चलते हैं, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड फिल्मी भाव।
1: फिल्मी फ्राइडे, कट वन,
2: टेक वन,
3: 5, 6, 7, 8।
1: लाइट कैमरा एक्शन एक्शन।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, FM 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं लोकगीत। श्रोताओं, आज आप सुनेंगे कुमारी रोहिताश के स्वर में लोकगीत।

0: श्रोताओं, कुमारी रोहिदास के गाए इसी लोकगीत के साथ आज का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गाना भूल भुलैया 3 फिल्म से। आदित्य रिखारी और तुलसी कुमार की आवाजों में आदित्य रिखारी के बोल, संगीत है लियो जॉर्ज का, डीजे चेतस और आदित्य रिखारी का।

आज का वादा तो सब करते हैं, लेकिन जो खुशियां आज के बाद तक बरकरार रखे वही वादे सच्चे हैं। सत्य प्रेम की कथा फिल्म से सुनिए ये गाना मनन भरद्वाज और तुलसी कुमार की आवाजों में, मनन भरद्वाज के बोल और इन्हीं का संगीत।

और जब आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आज के बाद के वादों को भी संभाल के रखे, तो आपका दिल तो भर ही जाएगा बहारा से। आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से सुनिए श्रेया घोषाल, सोना मुहा

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार।
1: ये हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनको प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर
2: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना कार्तिक कॉलिंग कार्तिक फिल्म से शंकर महादेवन, लॉय मेंडोसा और क्लिंटन सेरेओ की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल शंकर एहसान लॉय का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गाना टू स्टेट्स फिल्म से, अरिजीत सिंह, चिन्मय श्रीपदा की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और म्यूजिक है शंकर एहसान लॉय का।

अगला गाना हमारे सभी बड़े दिल वालों के लिए, 30 मार्क हाँ फिल्म से सुखविंदर सिंह की आवाज में और इनके साथ दिया है श्रेया घोषाल ने, अन्विता दत्त के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

इस हाई नोट पे समाप्त करते हैं आज का चित्रलोक कार्यक्रम। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत, लेकिन जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि 9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार, जो आधारित होगा माधुरी दीक्षित पर, तो सुनना ना भूलिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के फनकार उस जगमगाती स्माइल के नाम जिसके जादू से बचना मुश्किल है।

0: कुछ अलग ही है उनका हर अंदाज।
1: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
0: तो आइए मिलते हैं द गॉर्जियस सुपर टैलेंटेड डांसिंग जीवा माधुरी दीक्षित से।

फैंस की लाडली और घर में सबसे छोटी सबके दुलारी माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ। नृत्य के प्रति जन्मजात रुझान का असर था जो नन्ही माधुरी संगीत सुनते ही ठुमकने लगती। 3 साल की उम्र से ही उन्होंने कथक सीखना आरंभ किया। कुछ ही वर्षों में कथक की बारीकियां उनके नृत्य में नजर आने लगी। जल्दी उनकी डांस परफॉर्मेंस सराही जाने लगी और बतौर कथक नृत्यांगना उन्हें स्कॉलरशिप मिली। उस वक्त वो सिर्फ 9 साल की थी।

पढ़ाई के साथ साथ माधुरी दीक्षित कल्चरल एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती। स्कूली शिक्षा के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के उद्देश्य से उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। कुछ ऐसे संयोग बने कि उन्होंने हिंदी फिल्मों के रुपहले संसार में किस्मत आजमाने का मन बना लिया। वो साल था 1984 जब राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, अबोध। इस फिल्म में उनके साथ थे बंगाल के अभिनेता तापस पॉल।

अबोध को दर्शकों का प्यार तो नहीं मिल सका, लेकिन माधुरी दीक्षित को मिली आलोचकों की प्रशंसा। आने वाले समय में माधुरी दीक्षित की कई फिल्में आईं। आवारा बाप 1985 में, स्वाति, हिफाजत और उत्तर दक्षिण 1987 में, 1988 में उनकी एक साथ चार फिल्में रिलीज हुईं, मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, दयावान और तेजाब। फिल्म तेजाब में फिल्म हिफाजत के बाद एक बार फिर उनके साथ नजर आए अनिल कपूर। तेजाब की मोहिनी ने माधुरी दीक्षित को रातों रात स्टार बना दिया।

1989 में कई सितारों से सजी फिल्म वर्दी में उनकी जोड़ी जैकी श्रॉफ के साथ जमी। इसी साल आई सुभाष घई की फिल्म राम लखन में एक बार फिर अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई।

वक्त के साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ती माधुरी दीक्षित अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदारों में फैंस के दिल में अपनी जगह बनाती गईं। मल्टी स्टारर फिल्म त्रिदेव की जया माथुर हो

या प्रेम प्रतिज्ञा की भोली भाली लक्ष्मी राव या फिर परिंदा की पारो, रोल छोटा हो या बड़ा, माधुरी दीक्षित के अभिनय की छाप गहरी होती गई।

90 के दशक में माधुरी दीक्षित के करियर का एक नया दौर शुरू हुआ। 1990 में आई फिल्म कृष्ण कन्हैया के बाद फिल्म दिल की जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। आमिर खान के साथ उनकी इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

अपनी फिल्मों के जरिए माधुरी दीक्षित उस नए जमाने की लड़की की पहचान बन गई, जो खूबसूरत और स्टाइलिश होने के साथ अकलमंद भी है, आजाद ख्याल है और उसूलों की पक्की है। थानेदार, 100 डेज, साजन जैसी फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि परफेक्ट डांसिंग मूव्स और खूबसूरती के अलावा माधुरी दीक्षित में कमाल की अभिनय

1992 में आई फिल्म बेटा, जिसमें एक बार फिर माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी नजर आई। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित को मिला दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

0: अपने अभिनय से हर किरदार को यादगार बनाने वाली माधुरी दीक्षित 90s की बॉक्स ऑफिस क्वीन बन गईं। फिल्म थिएटर से उतरने के बावजूद उनका रोल जहन में हमेशा ताजा रहा। भला कौन भूल सकता है फिल्म खलनायक की जाबाज पुलिस ऑफिसर गंगा को, या फिल्म अंजाम की सताई हुई शिवानी चोपड़ा को, या फिल्म मृत्युदंड की केतकी सिंह को, जो अपराध और अत्याचार के खिलाफ चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है।
1: हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे।
2: देखिए, जाने दीजिए हमको, दीदी का तबीयत ज्यादा खराब है।
1: हमको भी कुछ बात करना है।
2: वो हम बाद में भी कर सकते हैं।
1: बाद में नहीं, अब भी।
2: भगवान के लिए अभी ये बहस मत उठाइए, दीदी को जरूरत है हमारा।
3: देखिए श्रीमती जी, अपना औकात में रहिए, हमरा मरद बनने का कोशिश मत कीजिए।
2: औकात को ताकत का तराजू में तोड़ने का कोशिश मत कीजिए। आप हमारे पति हैं, परमेश्वर बनने का फूल मत कीजिए।
0: 1994 में माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म की हम आपके हैं कौन। सलमान खान के साथ ये उनकी एक और हिट मूवी थी, जिसके लिए उन्हें मिला तीसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

साल 1997 लेकर आया भावनात्मक उथल पुथल से जूझते तीन किरदारों की फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ शाहरुख खान और करिश्मा कपूर थे। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित ने जीता 4th फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

1999 में माथुरी दीक्षित अमेरिका के कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर श्रीराम माधव नेने के साथ विवाह बंधन में बंध गईं।

प्रेम त्रिकोण पर आधारित माधुरी दीक्षित की फिल्मों में सन 2000 की फिल्म पुकार का जिक्र भी आता है, जिसमें प्रेम में हारी ईर्ष्या दग्ध अंजलि के रूप में उनकी जमकर प्रशंसा हुई।

माधुरी दीक्षित एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो हर उम्र हर वर्ग के दर्शकों की फेवरेट रही हैं। 2001 में मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन साहब ने उन्हें लेकर फिल्म गजगामिनी का निर्माण किया। इसी साल रिलीज हुई राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा, जिसमें जानकी के रोल में उन्हें बहुत सराहा गया।

0: देश हो या विदेश, माधुरी दीक्षित की फिल्मों का जबरदस्त क्रेज रहा है। 2002 में फिल्म देवदास आई, जिसमें माधुरी दीक्षित ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई। इस फिल्म में कथक नृत्यांगना माधुरी दीक्षित के अभिनय को भी बहुत प्रशंसा मिली। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया।
1: ढाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, ढाई शाम रोक लई, और चक मुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई, गई, गई, सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक, सरक सरक।
0: फिल्म देवदास के बाद माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गईं। वहीं रहते हुए उन्होंने एक फिल्म साइन की। खबर मिलते ही एक बार फिर रुपेले पर्दे पर उन्हें देखने के लिए फैंस बेकरार हो गए और सन 2007 में उनकी बेकरारी को करार देते हुए रिलीज हुई फिल्म आजा नचले।

2012 में वो वापस भारत लौटी और 2014 में रिलीज हुई आलोचकों द्वारा प्रशंसित फिल्म डेढ़ इश्किया, जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और हुमा कुरैशी नजर आए।

0: साल अभिनेत्री जूही चावला के साथ माधुरी की फिल्म आई गुलाब गैंग, जिसमें वुमन एक्टिविस्ट के रोल में उनके सशक्त अभिनय की बहुत सराहना हुई।
1: जैसे तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साइन तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। जुर्म जुर्म होता है और इंसाफ इंसाफ होता है। हमारे यहाँ कहावत है, डंडा सबका पीर होता है।
0: 2018 में माधुरी दीक्षित पहली बार एक मराठी फिल्म में नजर आई। फिल्म का नाम था बकेट लिस्ट। इस फिल्म में एक बार फिर माधुरी दीक्षित के अभिनय की धाक जम गई।

2019 में एडवेंचर कॉमेडी टोटल धमाल में वो एक बार फिर अजय देवगन और अनिल कपूर के साथ नजर आईं। 2019 में ही रिलीज हुई फिल्म कलंक में माधुरी दीक्षित के अभिनय की सराहना हुई।

सक्रियता के अलावा माधुरी दीक्षित ने जज के रूप में रियलिटी डांस शोज किए हैं। साथ ही वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट्स में भी व्यस्त रहती हैं। अपने अभिनय और नृत्य के साथ निखरती मेस्मराइजिंग माधुरी दीक्षित हर रोल में सफल हों।

के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। शोध आलेख और स्वर राजुल का था। प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।

0: विविक भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, गाते गाते आप

0: दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारी विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हमने अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किया। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से न्यूज ऑन AIR ऐप और FM 100.4 MHz पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने। और आज के आकाशवाणी के दीवाने हैं सतीश अनेजा जी।
1: नमस्कार जी, मैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा आपसे मुखातिब हूँ। आकाशवाणी बरेली का मैं बिल्कुल नियमित श्रोता हूँ, और मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार ही आकाशवाणी बरेली का बहुत दीवाना है, प्रोग्राम सुनता है और बड़ी खुशी महसूस करता है। सुख की अनुभूति होती है जब हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम सुनते हैं, तो इसका श्रेय तो सब उद्घोषकों को जाता है जिनकी मधुर वाणी होती है और वो हमारे से इतनी मोहब्बत करते हैं। तो आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आज स्पेशल मैं आकाशवाणी की पूरी टीम को, स्टेशन डायरेक्टर जी को, जो भी आकाशवाणी पर कर्मचारी काम कर रहा है, अपनी सेवाएं दे रहा है, सबको मैं अनंत शुभकामनाएं दूंगा और परमात्मा से दुआ करूंगा भी ये हमारा जो मोहब्बत है, ये हमारा प्यार है और ये सफ़र जितना 90 साल किया है, तो ये सफ़र आगे भी बरकरार रहेगा, ये मुझे आशा है, क्योंकि आकाशवाणी ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर आज मैं आपके सामने कुछ अपनी बात भी कर रहा हूँ, तो ये भी मुझे आकाशवाणी ने सिखाया है, और हम आकाशवाणी के जरिए हमारे जो श्रोताओं में जो आपसे रिश्ते बने हैं, उसका श्रेय भी आकाशवाणी को जाता है, क्योंकि कोई श्रोता किसी का नाम कहीं से आता है, किसी का कहीं से आता है, हम सोशल मीडिया के दूसरे से एक दूसरे से संपर्क में हैं, तो हमारे ऐसे लगा लो रिश्ते बन चुके हैं, और रिश्ते भी इतने मजबूत हैं, जो खून के रिश्ते हैं वो पीछे रह गए हैं, और हमारे जो रेडियो के परिवार के रिश्ते हैं ये आगे आ गए। तो इन सबका जो क्रेडिट है, सबका जो श्रेय है, जो स्पेशल और स्पेशल आकाशवाणी को जाता है, और उसमें आकाशवाणी बरेली का बहुत बड़ा हाथ है, और यहाँ के जितने भी उद्घोषक हैं उनकी बहुत मीठी वाणी है, उनकी पेशकश प्रस्तुति बहुत अच्छी है, जिसकी हम कायल हैं, और बिल्कुल मैं उनको भी सलाम करूँगा, उनकी मेहनत को सलाम करूँगा और उनकी निष्ठा को सलाम करूँगा, जो हम हफ्ते बनाए हुए हैं और बड़े शिद्दत से वो प्रोग्राम पेश करते हैं और शिद्दत से हम सुनते हैं। परमात्मा हमारा ये साथ ऐसे बनाए रखे। और एक बार फिर से मैं सभी श्रोताओं को भी और आकाशवाणी बरेली की पूरी टीम को सलूट मार के सलाम दूंगा और सलूट मार के बधाई दूंगा भी ये सफ़र हमारा ऐसे चलता रहे और परमात्मा हमारे अंग संग रहे और हमारा आकाशवाणी का नाम और भी विदेशों में भी गूंजे। नमस्कार।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दीवाने। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से प्रसारित किया गया।

श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी एक सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शनिवार दिनांक 16 मई 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है, समय से पूर्व पैदा हुए अथवा प्रीटर्म बच्चों की गंभीर बीमारियों और उनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे शुक्रवार दिनांक 15 मई 2026 को शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें टेलीफोन नंबर

0584125172500 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लीजिएगा। विषय है समय से पूर्व पैदा हुए अथवा प्रीटर्म बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिए।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:05 हुए हैं। आइए अब शुरू करते हैं, यानी आइए सुनते हैं प्रोग्राम आपकी पसंद।

नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के आपकी पसंद के इस कार्यक्रम में। आपके ढेर सारे कमेंट्स लेकर हाजिर हो चुके हैं हम, तो आप भी तैयार हो जाइए। वही आकाशवाणी बरेली के पेज पर आइए और आपकी पसंद कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट में अपना कमेंट कर दीजिए। टेक्स्ट कमेंट ही कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे जो टेक्स्ट के साथ है। अगर आपने सिर्फ अपनी आईडी के साथ एक फोटो डाल दिया जिसमें आपके नाम लिखे हैं तो वो नहीं शामिल हो पाएंगे। सिर्फ आपको टेक्स्ट करना है, टाइप कीजिए और कमेंट सिर्फ एक बार कीजिए, बार बार नहीं, क्योंकि ये गारंटी है प्रत्येक कमेंट शामिल होगा। तो देर किस बात की, जल्दी से फोन उठाऊं और अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है तो कर दीजिए। धुआंधार कमेंट्स पर धुआंधार आपकी सुरीली ख्वाहिशें पूरी की जाएंगी। तो आइए हमारे साथ पूरे एक घंटे के सफर में लगातार होती रहेंगी सुरीली ख्वाहिशों की बरसात। आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं 205 यानी 205 कमेंट के साथ। कार्यक्रम का पहला गाना आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है बाबुल, शमशाद बेगम और तलत महमूद की आवाजें हैं, शकील बदायूं के बोल, नौशाद का म्यूजिक डायरेक्शन। इस गीत को पसंद किया है आप सबने। आप हैं सुरेंद्र खुराना न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से, और भी दोस्तों को साथ लेते हैं। आप हैं अहमदगढ़ मंडी पंजाब से, मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया, जावेद अख्तर, जैस्मीन, शकीला, सना, शमा, हिना, राजिया, सुल्ताना, सुराज अंसारी और इनके परिवारीजन। और शालू शर्मा जी ने भी कमेंट किया है, कहां से किया है, जगह का नाम वगैरह तो लिखाना है कुछ। कस्बा मीरगंज बिजली घर से आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, उमेंद्र पुरी गोस्वामी, कल्लू मिस्त्री भाई और इनके सभी साथी, गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा। और आप हैं नर्मदा पार्क मंगल बेड़ा से माशा आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल और इनके तमाम साथी। कमेंट करते हैं शेगांव से संतोष अशकालिम, मानेवाड़ा रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर जी, और ग्राम उमरा उटाली खामगांव से गजानन सालोकर, सुरेश भेटे पाटिल और इनके सभी साथी, और जलगांव जामोद खामगांव महाराष्ट्र से राजू माठे, गजानन माठे, संजय ज्ञानेश्वर और प्रकाश दाडंगे। ग्राम पजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया और इनका पूरा चंसौलिया परिवार। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद ईसा, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलो फरफातमा और इनका पूरा परिवार। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से कमेंट किए हैं। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना राजेंद्र सिंह ओबराय, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। और यह कमेंट मिला है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार और इनका पूरा परिवार। कस्बा गोहती बगदायूं से देवेंद्र गुप्ता, धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार, प्रशांत, कार्तिक और निर्भय गुप्ता। कमेंट करते हैं गुजरात गांधी गांव से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी, जगदीश जौहरी और इनका पूरा परिवार। एके राजपूत, अनिल कुमार, भगवान दास, मदन लाल, संतोष देवी, रवि वर्मा, प्रिया वर्मा, छोटी सी गुड़िया, चंचल कुमारी और इनका पूरा परिवार है। ग्राम ढकिया केसरपुर कलीनगर पीलीभीत उत्तर प्रदेश से। और आप हैं रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, गंज जुंडवारा यूपी से माशा खिलू, परवेज बेगम, इमरान अनाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और इनका पूरा परिवार। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, ईशु बाबा, सपना, शिवी सलोनी और पेंटर बाबू। चरडोगरी पिपरिया कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जयकिशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, इंद्राणी साहू, माया साहू और इनका पूरा साहू परिवार। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरडी से नानाजी लाम से, मीना लाम से, तेजस हर्षिता लाम से और इनका पूरा परिवार। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़,

और इनका पूरा परिवार। रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा, स्वीटी छावड़ा, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से कमेंट करते हैं। और कमेंट मिला है लाल कुर्ती रुड़की कांड से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आरके राजा का। रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर कमेंट करते हैं। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, रामगढ़ कैंट से निप्पी साहनी और इनके तमाम हमनव हैं। सद्दाम हुसैन सिद्दीकी, सितारा सिद्दीकी, साद समद और सादिक सिद्दीकी थाने के पास कस्बा उखेती जिला बदायूं से हैं। आमीन अली बदायूं रोड बेहतरी रेलवे फाटक चंदौसी संभल से कमेंट करते हैं। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्या अरब, एसके पप्पी और इनका सभी परिवारीजन और मित्रगण, गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम थांडी, वामिका और वाणी थांडी का कमेंट टोरोवाल नवाशहर पंजाब से मिला है। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और इनका पूरा डूडी परिवार। परभणी महाराष्ट्र के हमारे जय जिनेन्द्र श्रोता संघ के सभी साथी हैं, रूपेश संगई, महेश संगई, प्रत्येश संगई, प्रज्ञेश संगई और इनका संगई परिवार। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े कमेंट करते हैं। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और इनका पूरा परिवार। गांधीनगर गुजरात से आप हैं सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल, निशा और राठौर परिवार। भाकर पंजाब पाकिस्तान से मोहम्मद हफीजुर रहमान, हबीब मलिक, खलील मलिक, अली रहमान और इनके सभी साथी हैं। और ये कमेंट हमें ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां ने किया है। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से रजौनी महोबा बुंदेलखंड से आप हैं उदयपान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और इनका पूरा परिवार। रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर, विविधा वंडलकर और इनका पूरा परिवार। और ये जो कमेंट हमें मिला है सिद्धार्थ नगर दरियापुर बावली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप और अवंतिका येले। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डाबर, खुश नसीब, अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर, मोहम्मद उमर डाबर, राजेंद्र कटारे। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी कमेंट करते हैं। गांव कलाना राजस्थान से विक्रम कड़वाशरा, सचिन कड़वाशरा, सतीश, योगेश और उद्धव कड़वाशरा हमारे ये जो साथी हैं। बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, वंटी बबली वर्मा और इनका पूरा परिवार। पठीना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से ममना, हमीरपुर बुंदेलखंड यूपी से आप हैं राम शरण, विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा और इनका पूरा विश्वकर्मा परिवार। गांव खोखरावाली श्री गंगानगर से विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन बारासा। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का कमेंट मिला है। लसुड़िया, नरसिंगल, राजगढ़, मध्य प्रदेश से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी। जवानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक और स्वाति जायसवाल। गमहरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त, चेतन नाटा और इनका पूरा परिवार। राजापुर सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति। कालापारा से रामचंद्र गुप्ता पांडे, राम राजवाड़े जी और इनका पूरा परिवार। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानो पवार, छोटू पवार, हसनैन पवार और इनके सभी साथी। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू सिक्का और इनका पूरा सिक्का परिवार। वरली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान, अजीम खान और इनके तमाम साथी। नलेश्वर नगर नरबेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मरहेकर और इनका पूरा परिवार। पद्माटाकी नेपानगर से आप हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी और इनका पूरा सिद्दीकी परिवार। आप सबके नाम करते हैं फिल्म बाबुल से ये बेहतरीन नगमा, सुनिए आपकी पसंद में।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: का टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बदलो बदलो, आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओ, इस समय आकाशवाणी बरेली से आप सुन रहे हैं कौन सा कार्यक्रम, आपकी पसंद। हाँ, आपकी पसंद के गाने ही तो हम आपके सुनवाते हैं। तो भैया, आपको बता दें कि 205 कमेंट के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी हमने, मगर अभी तक बहनों भाइयों 221 कमेंट आ चुके हैं। तो कहां खोए हैं हम, तो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं क्या, आज कम से कम आप हमें 300 कमेंट के पार ले जाएंगे। देखते हैं आप हमारा साथ निभाएंगे या नहीं निभाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि धुआंधार आपके कमेंट हमें मिल भी रहे हैं, हम धुआंधार आपके कमेंट शामिल कर रहे हैं। यह गारंटी के साथ कहते हैं कोई भी कमेंट छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आप बार बार कमेंट क्यों करते हैं, सिर्फ एक बार ही कमेंट कीजिए ना। अरे इतना तो यकीन

हम पे कीजिए मेरे हुजूर। मगर एक जरूरी बात यह है कि आज जितनी भी पोस्ट हमारे पेज पर हुई है उनमें आपकी पसंद की पोस्ट के लिए तो 10:05 से 11 तक के कमेंट है। एक और कमेंट है, एक पोस्ट और है, वो पोस्ट है अनुरोध गीत कार्यक्रम के लिए। उसमें ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है नो कमेंट प्लीज, यानी कि कोई भी कमेंट न करें। वो पत्रों पर आधारित कार्यक्रम है ये, सिर्फ आपकी सूचना के लिए कि दिन में 1 से आप अनुरोध गीत कार्यक्रम सुन सकते हैं। और अनुरोध गीत कार्यक्रम में आपके वो पत्र शामिल किए जाते हैं जो आपने उस कार्यक्रम के लिए डाक से भेजे हैं। हाँ, तो उस पे कमेंट करने की कोई जरूरत ना है। हाँ, जबकि हम देख रहे हैं अभी 70 कमेंट आपने उधर कर दिए, ऐसा क्यों किया? यानी जबकि स्पष्ट कहा गया है कि नो कमेंट प्लीज, अगर कमेंट करना है तो दिल खोल के कमेंट करो आपकी पसंद कार्यक्रम के लिए। चलिए अगला गाना आपको सुनवा देते हैं। फिल्म का नाम है उस्ताद। उस्ताद फिल्म के इस गीत को अपनी आवाजों से सजाया है अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज ने। इंदिवर साहब के बोल हैं, धुन अनु मलिक की है। माकर जिन दोस्तों ने इस गीत को पसंद किया है उनका कमेंट तो मारी आंखण के सामने बस आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट हो गए हैं, हमें स्क्रॉल करना पड़ रहा है लगातार, बार बार, एक बार नहीं बल्कि कई बार। तो चलिए देखते हैं कितनी देर में हमारे उन दोस्त का कमेंट हम तक पहुंचता है, यानी जिस पर गाना सेट किया गया है फिल्म उस्ताद का। तो मेरे उस्ताद अभी हमारे साथ बने रहिए। चलिए कमेंट आ गया हमारी नजरों के सामने। आंखों में काजल, माथे पे पसीना, कितनी प्यारी है मेरी हसीना, पसीने वाले दिन आने वाले हैं। उस्ताद फिल्म का ये गाना सुनना चाहते हैं। गांव वाडी वाली फाजिल का पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया, अब आप सब हमारे साथ हैं। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा, और गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता लोखंडे, बड़ी गेबी चौराहा वाराणसी से आप हैं, अरुण कुमार मालवीय दर्द भी हैं, मारा दरवाजा ईटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवीद हसन, सोहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी, अनम और यशफ अब्बासी, एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, ग्राम शेठे, सांगली जिले से हनुमंत शिंदे, संगीता शिंदे, ऋषिकेश और वसुंधरा का भी कमेंट है। फाजिल का पंजाब से आप हैं, भूषण खेड़ा, विशु लाड़ी, शालिनी तिवानशी, वाणी खेड़ा, अरवी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और इनका पूरा खेड़ा परिवार, गुजरात पाटन से धीरज बी रवारी और इनका पूरा परिवार है, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा, हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से, राजपुर मध्य प्रदेश से आप हैं, घीसू दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली कुणाल दिलवारे और इनका पूरा परिवार, कमथरी फरुखाबाद से आप हैं, जुबैर खां, अमन, मोजिम, जुनैद और इनके सभी साथी, मौला हलवाईन शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद बकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, रश्मि परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सादर अली, हिना कौसर और इनके सभी साथी, मैं जबी अंसारी ग्राम पंचायत करेली से हैं, और आप हैं कौन कौन हैं, संत नगरी शेगांव से शुभम राउत, कुमार रुद्र राउत और इनके सभी साथी, दहीगांव नांदुरा से धुणु भातुरकर, मंगला भातुरकर, विवेक कुमार भारती, प्रतीक्षा कोमल, समाधान भातुरकर और इनका पूरा परिवार, पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रजिता और इनके सभी साथी हैं। ये नंबर बार बार आप कमेंट में वही नाम लिख रहे हैं, हम समझ जाते हैं। सागर लखनादौन से लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम चौबे और सक्षम चौबे, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, रिंगरी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और ये कमेंट, वटिंडा रोड मंडी डिब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तानिया नारंग, शीशगढ़ मोहल्ला घोड़ी से इलियास इदरीसी, नाजरा नईम, नदीम इदरीसी, असद बाबू और इनके सभी साथी, और टांडा शेरगढ़ से इकरार और सोनी इदरीसी, अनारकली बाजार जगराऊं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव, विनोदपुरी और इनके सभी साथी, चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल कदमा जमशेदपुर से हैं और आप हैं गांव जाखूद से, शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक और इनका पूरा परिवार,
कस्बा उसामा वार्ड नंबर एक जिला बदायूं से धर्मवीर कश्यप, उषा कश्यप, ध्यानपाल, संजय अनमोल, अंश, करिश्मा कश्यप और मुस्कान कश्यप।

मछली गोदाम कैदीमोड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू, रितु सिंह और इनके सभी साथी शिव मंदिर हकीकत पर मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से गोल्डन रेडियो और श्रोता संघ के सभी साथी राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक, आर्यन वर्मा, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष, शौर्य, दिनेश, महेश्वरी देवी, सोनू, मोनू, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह भी हैं साथ में, विष्णु मिस्किन, रितिका मिस्किन, वाणी अरब, चंद्रकला, गणेश, काशीनाथ, संगीता मिस्किन, आरोही, प्रियांशी, सोनू, दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर से, अलीगंज एटा से दीपक शाक्य, ज्योति शाक्य और सक्षम शाक्य, विनोद लखन पाल जी गांव रावर जिला करनाल से हैं, मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, काकांक्षा मलिक और माही मलिक, दूरापुर उत्तर प्रदेश से फरमान सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून, गंगानगर शिकोहाबाद फिरोजाबाद से बनबारी लाल कुशवाहा, मंजुलता, राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत कुमार, रामानंद कुशवाहा और इनके साथ ही बंडू लोहार पोपलघट, माया शिवांश, चंद्रकला, देवीदास पोपलघट, नेवासा खुपटी महाराष्ट्र से हैं और कमेंट करते हैं जानकी राम काठोके, ज्योतिबाई काठोके, प्रशांत शुभांगी, किशोर, राधिका, वेदिका, रिद्धि सिद्धि, ग्राम मन्नूर, खुर्द, तहसील बोदवड़, जिला जलगांव महाराष्ट्र से, हीरावाली फालीजिल का पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती और हिमांशु गोदारा, उत्तम कुमार बघेल, रुकमली बघेल, साहिल भारती बघेल, लगान पंधरिया छत्तीसगढ़ से, मास्टर सुनील बाबू, शिवम सिंह, अभयमीत, भगवान देई, स्वाति सिंह, तान्या और इनका पूरा परिवार, ग्राम पंचायत बाकरगंज, तहसील फरीदपुर से, बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतू का खोरवाल और भानु प्रकाश उत्तम नगर दिल्ली से हैं, किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन दास और आशा देवी, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, ओम सुरलकर और शाहजी बोर्ड के, नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के, हिंगोली महाराष्ट्र से, आम्बेडकर चौक बाकोड़ी से उत्तम जमदाड़े, स्वराज दमदाड़े और इनका पूरा परिवार, विनय मोहन, खारवन, मीनाक्षी, प्लोमा, डॉक्टर ईशानी हैं, सेक्टर 18 जगाधरी, यमुनानगर हरियाणा से, गंज डुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनबा मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी और आप हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मान, वीतन, वीलक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह, दूलापुर मुरादाबाद से, पटेल नगर मलूड से डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी जजौरिया, गगनदीप, आरजू जजौरिया और गुड्डू जी का भी कमेंट है, सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, वैदेही जोशी, हंसिका जोशी, अंकिता जोशी, आप सबका कमेंट भाटापारा छत्तीसगढ़ से, जयवंती केवट जी का कमेंट अनूपपुर मध्य प्रदेश से मिला है, गांव भोजपुर तगा चिलकाना सहारनपुर से मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हन्नान, जीनत जावेद, नाहिदा रानी, आयत, मोहम्मद इंतजार और इनके सभी साथी, कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश और जीविका दले, पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने कमेंट करते हैं, हजारीबाग झारखंड से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, राहुल और ऋषि, गाड़ी खाना चाईवासा झारखंड से जीवन विश्वकर्मा, मंजू विश्वकर्मा, नितिन विश्वकर्मा, सावन कुमार, सचिन और शक्ति, सिकलापुर बरेली से आप हैं रतनमाला मौर्य, मुकेश, प्रिंस, प्रियांशी, पुष्पा, गौरव और चंद्र प्रकाश मौर्य, पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविक ढींगरा और इनका पूरा परिवार, नाज रेडियो क्लब करेली से आप हैं निसार अहमद अंसारी, नुजत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, इस्लामुद्दीन, बन्ने भाई और पप्पू भाई अंसारी, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, सिंधौली बीरगंज बरेली से जिशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख का कमेंट है, डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी, मंदरकर कुमार, गौरव मंदरकर, सदानंद, आरब और अर्पिता, ये कमेंट हमें मिला है, गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नांद्रे, मारोतरा पांचाल का, शाही मार्केट सिवहारा, बिजनौर से आसिफ चौधरी, अराफात चौधरी और कदीर चौधरी, बक्कर पंजाब से रेहाना खान, मुकेश, अच्छा चलिए रेहाना खान जी का ये मैसेज भाकर पंजाब से मिला है और आप हैं कुलवंत मान, लखविंदर कौर, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर मान, हरविंदर मान, कुलविंदर कौर मान, अमरगढ़ सादुल शहर से, कटरा चांद खां, संजय संजय, ओहो एड्रेस एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं आप हमसे, कटरा चांद खां से आप हैं, गौरव गुप्ता, अनिकेत गुप्ता और इनके सभी साथी, आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, साउथ दिल्ली से गुरमीत सिंह बीता जी है, जगदीश धाकड़, नाइमा रंजू भाई धाकड़।

युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ का कमेंट हमें मालवा रेडियो श्रथा संघ हिंगड़ी आलोर रतलाम मध्य प्रदेश से मिला है। और आप हैं धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से, निसार सलमानी, नौशा सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू और इनका पूरा परिवार। मंसूरी रेडियो लिस्नर क्लब बाजार रोड मुगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक, लोबना और यश मंसूरी, अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा सदर बाजार कोरावली से। और ये जो कमेंट हमें मिला है वो है भोजपुर तगा सहारनपुर से, मोहम्मद इंतजार राणा, राहत अली और वकील अहमद, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से आप है रामचंद्र मखीजा, काफिर और इनके सभी साथी, अमरावती महाराष्ट्र से श्याम किटे, वंदना किटे और इनका पूरा परिवार, मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगना बरेली से आप है बेनी सिंह सागर, पनीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह हितेश सागर, बंटी राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता दिव्या, रचना भारती, ओमवती भारती, खनक शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथम से, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू का कमेंट है। और आप हैं अशोक सिंह, सुनीता सिंह, प्रीति सिंह, ऋतु सिंह, कृषभ सिंह और वेदा सिंह, जबलपुर मध्य प्रदेश धनवंतरी नगर से। आप सबके नाम करते हैं फिल्म उस्ताद से ये गाना।

0: चल दे तो हंसनी, चल दे तो हंसनी रे बोले तो बीना, चल दे तो हंसनी बोले तो बीना, कितनी प्यारी है मेरी हसीना, आंखों में काजल माथे पे पसीना।
1: बदलो बदलो आदत बदलो,
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जी हाँ दोस्तों, आपकी पसंद आप सुन रहे हैं आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी बरेली, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 229 कमेंट हो चुके हैं। चलिए अब अगला गाना फिल्म दयावान से आपको सुनवाते हैं। पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजें, अजीज कुरैशी की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत निर्देशन किया है। और सुनना चाहते हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया और इनका पूरा ढींगिया परिवार। शामिल करते हैं आप सबको नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टबुल और पीबी कुल थे। बीड शहर महाराष्ट्र से कमेंट किए हैं। मुतला महाराष्ट्र से विजय सुरालकर, रतनमाला सुरालकर, कुमकुम सुरालकर और इनका पूरा परिवार। आप हैं वीरमगांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रेमिला भावसार, भावेश, सनी भावसार और इनका पूरा परिवार। नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया अक्सर, अहमद नालापार रामपुर से हैं हमारे साथी। और आप हैं राजकोट से जमीन कुमार जैन, हेतल जैन, कृष्णा जैन और राकेश जैन। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश कुमार, राजेश्वरी उत्कर्ष चौहान, मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी और इनके सभी साथी। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनाज सरफराज, फरदीन सोहान, अरजान अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी साथी। चक 15PS गंगानगर राजस्थान से सर्वजीत सिंह जौसन, सर्वजीत कौर जौसन, गुरमन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्श पाल सिंह जोशन और वैंकूवर कनाडा से रॉबिन सिंह जोशन, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग तनुजा, ईशान देवांगन, पलारी छत्तीसगढ़ से कमेंट किए हैं। कटरा चांद का पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण दृष्टि और मानवी मौर्य। आप हैं बहेड़ी से इश्तियाक अहमद इदरीसी, इकरार अहमद इदरीसी और इनके सभी साथी। और ये कमेंट हमें लोहडडा बागपत से आपने भेजा है। जगमोहन सिंह प्रजापति, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, भुवनेश्वरी देवी, करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी और इनका पूरा परिवार। सरोज चौक अमरावती से आप हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आफिया और मुस्तफा खान। पैराडाइज कॉलोनी से आप हैं शाहिद भाई, आसिफा, परवीन, आफिया सदफ, सुफियान, फातिमा और आलिया सुफियान। नगरखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, मुनीश शर्मा।

शर्मा, राहुल शर्मा और उनका पूरा परिवार। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से आप हैं। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी कमेंट करते हैं। पुराना शहर बरेली कटरा चांद का मौर्य मंदिर से अनोखेलाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील मौर्य, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दीशानी, नीमित अहूजा और आप हैं। मजरा दौलतपुर आंवला बरेली से भगवान सिंह यादव और इनके सभी साथी। गंज डंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान अंसारी और इनके सभी साथी। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, सयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन, सरधना मेरठ से आदि जैन, अंश जैन और भव्य जैन कमेंट करते हैं। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता और ये कमेंट हमें मिला है। सरलाही सोनका सुकनाहा नेपाल से अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा, राहुल कुमार, वंदना कुमारी शर्मा, प्रियंका कुमारी शर्मा और उनके बहुत सारे साथी। उत्तम कुमार भगत, श्वेता किशुताशु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद पाकुड़ झारखंड से, बौड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, ये कमेंट हमें मिला है। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का। और आप हैं कस्बा गुन्नौर, यूपी से फारूख अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा। बिरडी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर और इनके सभी साथी। उच्च पट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु, आशीष शिवन्या और अनु गोस्वामी कमेंट करते हैं। मुरादगढ़ करनाल हरियाणा से रमेश कुमार कम्बोज, पिंकी वंश और भूपेश कुमार कम्बोज, शेख जियाउर रहमान, अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान, मानपुर साहब जिला मुरादाबाद से कमेंट किए हैं। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कबर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और इनका पूरा परिवार। रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित गर्वी और बाय हिमाक्ष का कमेंट है। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से। और आप हैं मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर, प्रदीप यमेकर और इनका पूरा यमेकर परिवार। और कमेंट किया है ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गोरी, हसन सिक्का और इनके तमाम साथी। पदमपुर गंगानगर राजस्थान से मेयर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। और धमधा सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि होशिका आदित्य और अंजलि जंगेल। आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरा सनेल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल कमेंट करते हैं। ग्राम बपोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शारूनूर अंसारी, फरियाद हुसैन, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और इनके सभी साथी। संगम अगरलोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हियांश कुमार चंदन और इनके सभी साथी। और आप हैं विजय सिंह लखेरा, महिंदरगढ़ हरियाणा से कमेंट किए हुए। पुराना तालाब डुमराव से बलीउल अंसारी, आसमान आज बक्सर से राज एस टी अंसारी, मोहम्मद सुल्तान अंसारी और इनके सभी साथी कमेंट करते हैं। केलोड़िया नबागवंज बरेली से राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल धर्मवीर, सचिन अनुज गंगवार, अनमोल कमलेश, तुलाराम गंगवार, अंकुश मौर्य, राजू चंद्रपाल, उल्फर शर्मा, बबलू गंगवार, वेदपाल, संजीव गंगवार और इनके सभी साथी। जिला बरेली ग्राम करेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, माहिनूर अंसारी, नसरीन समा अंसारी और डॉक्टर आर वी सिंह, अरजीत यादव, प्रशांत यादव, उदित यादव, अभय यादव। आप हैं आलागंज, आलागंज शाहजहांपुर से एयरपोर्ट रोड, वंदना नगर इंदौर से नारायण भाऊ खड़ से, संजना परी खड़ से, आराध्या गणेश, वैष्णवी कार्तिक खड़ से, देविका चौधरी, स्वाति प्रिया चौधरी और इनका पूरा परिवार। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतेक विरक, मीका विरक और इनका पूरा परिवार। गढ़ी कोटा पंचकूला से सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, शानिया अंसारी, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद हुसैन अक्सा अंसारी, आयशा उमर और समीना अंसारी का कमेंट है। गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से पूजा रघुवंशी, रेखा रघुवंशी, नंदिनी शोभा, बबीता रघुवंशी, ललिता और इनका पूरा परिवार। और आप हैं मदरसा गेट भाऊपुर मड़ियाहूं जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद अरमान, नवेद अजरा तबस्सुम, रायपुर अनई, बनारस से अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन, आफिया परवीन और इनका पूरा परिवार। पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक और राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, भरत कुमार और इनका पूरा परिवार। भीष्म राज जी कहाँ से हैं, जगह का नाम आपने लिखा नहीं है। और आप हैं विक्रम मालवीय, रचना मालवीय, कमलाबाई बंदेवी, आकाश माहेश्वरी, विनायक और इनका पूरा मालवीय परिवार। मालवा रेडियो श्रोता संघ गुल बालोद, तहसील आलोट, रतलाम मध्य प्रदेश से। और एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुन्निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और बेबी नुसरा खान, संजय नगर, यशबाग, लखनऊ से हमें कमेंट किए हैं। और आप हैं गंज डंडवारा से शमसुल कमर, राही, शाहीन, फातिमा और अनु। कोठा मक्खन बरेली से अफरोज अंसारी, फारूक अंसारी और ये कौन है, शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम, अजीम, नदीम बाकी, अब्दुल गनी और इनके सभी साथी। छबीलपुर गुन्नौर से हरबेश कश्यप, अर्जित कश्यप, दिव्यांश और गायत्री कश्यप। और आप हैं फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण,
हयात कॉलोनी।

अररिया बिहार से, और गांधीनगर गुजरात से जी के परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष और दीपल का कमेंट मिला है। और आप हैं पायल, सविता, पुनीत, सिद्धेश, अदिति, सृष्टि उदयपुर राजस्थान से, और प्रमिलागंज, आलूट, रतलाम मध्य प्रदेश से, बलवंत कुमार वर्मा, राजूभाई वर्मा, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश और ऋषि वर्मा, और प्रिंस राठौर हैं ग्राम बपोस नगरिया, विक्रम फरीदपुर बरेली से, अक्कलकोट रोड जिला सोलापुर महाराष्ट्र से, गणेश लोंढे, आम्रपाली लोंढे, आरव और इनका पूरा परिवार, धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से, चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार, विनीत कुमार पटवा और कृष्टि पटवा का कमेंट मिला है। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार और इनका पूरा परिवार, उन्नैल, उज्जैन मध्य प्रदेश से, भेरूलाल बाख्तरिया, धाकड़ भोला, प्रवीण, रियांश बाख्तरिया और प्रतीक बाख्तरिया, शाजीनगर देगलू जिला नांदेड़ से, संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे का कमेंट है। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, और आप हैं ग्राम बपोस्ट नगरिया, विक्रम फरीदपुर से, राज सिंह अनारकली, यश कुमारी, रूपेंद्र कुमार सिंह, पूजा प्रजापति, वंदना, दुष्यंत, प्रियंका प्रजापति, गार्गी और भोलू, और रज़ाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से हैं। कमेंट करते हैं नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश प्रताप साहू और इनका पूरा परिवार, अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा सोमनी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री मोहम्मद मुनाजिर, अबरार हुसैन, आशिक हुसैन अंसारी और अल्ताफ हुसैन का कमेंट है। और ये मैसेज आप बार बार दो नाम लिखकर भेजते हैं, दो तीन नाम हर मैसेज में लिख देंगे तो आपका मैसेज भी छूट जाएगा कमेंट। नई बस्ती गंज डोंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, तौसीफ हाशमी, तैमूर हाशमी और इनके सभी साथी, और आप हैं चक 5 MD पतरोड़ा से मंगल जनागल, राही रोशनी जनागल, अंकुर इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल, दीदार रेडियो श्रोता संघ बिल्लाम गेट कासगंज से अहमद असलम सैफी, जबुनिशा बेगम, सद्दाम सैफी और सोनी सैफी, और मुकेश कुमार जी जगह का नाम लिखाना है, मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना, मुन्नी कुमारी, चांदनी और नंदिनी कुमारी, और ये जो कमेंट मिला है वो कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। कमेंट करते हैं शमशाबाद फरुखाबाद से जुबैर भाई, अमन, मोजिम, जुनैद, अजीम, चमन, अल्तमश और पूरा शमशाबाद, जी हाँ ये हुई ना बात। राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी, जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन और इनके सभी साथी, दशरथ सागुते, अनुष्का सागुते, धोतर जोड़ा आष्टी से कमेंट करते हैं, और आप है श्रीरामपुर भोकर महाराष्ट्र से हरिभाऊ बिडबे, अनिकेत सोनवणे, शुभांगी श्रावण और अनिता बिडबे, और ये जो कमेंट मिला है वो सुरेश कुमार साहू, कमलेश, देवेंद्र, गजेंद्र, रवि साहू और इनका पूरा साहू परिवार, आप कहाँ से हैं, माँ भारती रेडियो श्रोता संघ अक्टोहा तहसील लवकुशनगर छतरपुर मध्य प्रदेश से, साथ में सोनू साहू, धर्मेंद्र साहू, राघवेंद्र, भावना, यशदीप साहू और इनका पूरा साहू परिवार, रिजवान खान, ऐराज राजा खान, असद राजा खान और फैजा नाज का कमेंट है जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से। और यहां तक हमने 222 से भी ज्यादा कमेंट शामिल कर लिए। फिलहाल दयावान फिल्म का गाना आपके नाम करते हैं।

जी हाँ दोस्तों, आपके बेहद और बेहिसाब कमेंट्स के मुंतजर हैं हम। आप कमेंट भेजिए, हम शामिल करने की गारंटी लेते हैं। खैर आगे बढ़ेंगे और आज का आखिरी गाना प्ले करेंगे, मगर आपको बता दें कि जैसा कि ये जो हमारे श्रोता है जिन्होंने कमेंट किया है, माधुरी दीक्षित जी को जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए साजन फिल्म का ये गीत आप सब सुनना चाहते हैं। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमराज, दिव्या भारती, बेताब रेडियो लिसनर क्लब बिहार से वसीम अकरम जोई और गुड़िया खातून, और शामिल करते हैं आप सबको मौलागढ़ नई बस्ती भोजीपुरा से आप हैं तरन्नुम अंसारी, तराना अंसारी, नाजिस अंसारी, तबस्सुम अंसारी, अजरुद्दीन, मोहम्मद हसन अंसारी और इनका पूरा परिवार, और गांव डाकखाना कोटविला पंचकूला से अब्दुल हमीद, अब्दुल रशीद, बंतो, रुलदी, खदीजा, सुहाना, रिजवाना, जावेद परवेज, जाहिदा और रिजवान खान, और नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत, लखनलाल देवांगन, सावित्री बाई देवांगन, पाहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से कमेंट किए हैं, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर, राही सरिता गवहाणकर, प्रणीता सिद्धांत गवहाणकर, अर्जुन गवहाणकर, टुक टुक, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से आप

वैशाली, शैलेश गौहाणकर, एकांश सुमित, कुमारी ध्वनि गौहाणकर, परियो और इनका पूरा परिवार। यहां तक 235 कमेंट हमने शामिल किए, यानी टेक्स्ट के जितने भी कमेंट हैं वो सभी शामिल हुए हैं। बस पिक्चर कमेंट हमने पहले ही बोल दिया था कि शामिल नहीं करेंगे, तो आप टेक्स्ट के साथ आइए, जरूर शामिल होगा। फिलहाल ये आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश है फिल्म साजन से, लेकिन 10:58 तक भी अगर आपका कमेंट आएगा तो हम शामिल कर देंगे।

दोस्तों यहीं पर शामिल करते हैं पटियाली रोड गंज डंडवारा यूपी से एम खलील कुरैशी, आकिल कुरैशी, आजाद कुरैशी, अरीबा हबीबा और इनका पूरा परिवार। और आप हैं विराट नगर नेपाल से डॉक्टर अरुण शर्मा, डॉक्टर रेणु शर्मा और उनके साथी। आप हैं तिगड़ी कस्बा शीशगढ़ से शाहरुख खान, शोएब खान, हाशिम खान, अरम बाबू, किश्वनूर और इनके साथ सभी साथी। बड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा हैं। तहसील रोड गंज डंडवारा से के अचराही, गुड़िया बेगम, वकील प्रेमी हम्माद जमील और इनके सभी साथी। यहां पर 240 कमेंट पूरे हुए।

दोस्तों, अभी अभी हमें दो कमेंट मिले हैं और ये जो कमेंट हैं वो आप सबके हैं। आप हैं रतन, ये तो हमने आपका कमेंट शामिल कर लिया है, मगर सोनाली दुबे, मोनिका तिवारी, रानू और इनका पूरा परिवार, महाकौशल जबलपुर मध्य प्रदेश से, नई मस्जिद करेली से इंतजार अंसारी और हिफ्जा नूर और इनका पूरा परिवार, तो आप सबके नाम चल रहे हैं और हमें भी चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा? क्योंकि वक्त हुआ आज के आपकी पसंद का पूरा और हमने अपनी क्षमता के अनुसार आप सबके कमेंट शामिल किए और वादा पूरा किया, लेकिन आपसे जो उम्मीद थी 300 कमेंट के पार जाएंगे वो नहीं हमारी पूरी हुई। चलिए किसी और मोड़ पर आपसे मुलाकात होगी, उम्मीद करते हैं तब आप हमारा ढेर सारा साथ निभाएंगे। फिलहाल सबके चेहरे पर खुशी छलकती रहे, आप गुनगुनाते रहें, गाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। आज के आपकी पसंद प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, हमें दीजिए इजाजत।

श्रोताओं, वो भी आप सुन रहे थे आपकी पसंद, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, FM 100.4 MHz पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जिनकी स्थापना सन 1954 में हुई थी। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज कार्य, विज्ञान और तकनीक, लोक कल्याण और नागरिक सेवा, उद्योग और व्यापार इत्यादि के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं असाधारण योगदान पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी निर्जातीय समूह, पेशे, पद और लिंग के हों, इन पुरस्कारों के योग्य हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://award.gov.in पर किया जा सकता है। इसमें मांगी गई जानकारियों को भरकर व्यक्ति पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकित हो सकते हैं। इन पुरस्कारों के संबंध में जारी नियम और दिशा निर्देश https://padmaawards.gov.in पर वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस 2027 के अवसर पर की जाएगी। पद्म पुरस्कार 2027 के नामांकन के संबंध में ये सूचना यहीं पर संपन्न होती है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से FM 100.4 MHz पर।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, FM 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं सबरंग। सबरंग के आरंभ में आइए सुनते हैं एक बेहतरीन गीत। एल्बम का नाम है तुम याद ना आया करो और आवाज है राम शंकर की। लीजिए सुनिए।

गांव के खत्म हुई चौपाल, पनघट उजड़े गांव के खत्म हुई चौपाल, तहजीबें मिटने लगी चला वक्त

खलियान की हमसे पूछो बात, खेत कुएं खलियान की हमसे पूछो बात, लगी हवा जो शहर की बदल

दोस्तों आपके साथ आकाशवाणी बरेली FM 100.4 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से है। सबरंग इस समय आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं लेस्ली लेविस की आवाज में। एल्बम का नाम है, क्या नाम है? हाँ, एल्बम का नाम है अल्टीमेट इंडी पॉप।

जी हाँ सुनो, दिलजीत दोसांझ, सुखवीर ध्वनि भानुशाली की आवाजों में। हाँ ये तो फिल्मी गाना हो गया, लेकिन हमें एल्बम का गाना प्ले करना था, तो हम करते हैं पगला कहीं का। फिल्म से ये गाना लखवीर सिंह लखा और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। और थोड़ा डांस कर लिया जाए, हाँ क्या कहते हो? करिए ना डांस, रोका किसने? परांदे विच दिल अटका, अटका तो अटका, ये है टोटल म्यूजिकल आपका झटका। सब रंग झूमे अंग अंग,

0: पलक।
1: जी हाँ दोस्तों, गीत संगीत के विविध रंग आप सुन रहे हैं सब रंग। सब रंग में आइए अब सुनते हैं अगली प्रस्तुति कैलाश खेर के स्वर में। एल्बम का नाम है झूमो रे।

और अब दोस्तों अगला गीत आपको सुनवाते हैं आरजू बानो की आवाज में। एल्बम का नाम है दिल अपना किसको दें। तो एक पिया की बावरी क्या सोचती है और क्या विचार रखती है, कुछ इसी स्थिति को बयां करता है ये गाना।

श्रोताओं, इसी प्रस्तुति के साथ आज का सब रंग का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे सब रंग। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से FM 100.4 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश
0: और मैं अजीत। नमस्कार, राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
0: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं,
0: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
0: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
2: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
0: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
2: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें, तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
0: बिल्कुल।
2: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
2: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए, तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
2: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
0: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
2: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
0: जी, और हाँ श्रोताओं, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है, तो आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहां NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
2: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं, जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें, तो बोल बोलकर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
0: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
2: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है।
0: जैसे
2: प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
0: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें, तो छुट्टियां खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
2: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियां भी कर सकते हैं,
0: जैसे
2: कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
0: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
2: तो श्रोताओ, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
0: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-440-559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
2: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके

0: राधा जी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
2: अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थातू बुलाती हूँ। कभी कभी थातू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियां और गायें दूर हट जाती हैं। थातू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाता के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
3: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
2: थातू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थातू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थातू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थाथू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
3: अब सो जाओ।
2: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थातू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
0: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
2: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारीगण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
2: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
3: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या बॉल शुरू हो गई? हाँ
2: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
1: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
2: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
1: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।

0: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
1: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
2: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
3: जी सुबेदार साहब।
2: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
3: जी सुबेदार साहब।
2: बोले सोनिहाल।
3: सत श्री अकाल।
0: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
4: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
5: साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल सत्रे का।
0: तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थीं। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल

0: होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
0: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
1: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह। आज सुनते हैं कार्यक्रम लिटिल बुली।
3: वंस अपॉन अ टाइम, नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो, देयर वाज अ स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी। ऑल्दो ही वाजंट वेरी बिग, ही वाज स्ट्रॉन्ग एंड he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. What he loved to do most was to pinch. He could make a big bruise appear in half a second. Another trick he played was pricking people with a pin.
4: So you can guess how all the children hated him. They tried pinching him back, but that was no good, because he could always pinch harder. They didn't like telling their teacher, because that was telling tales. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited.
3: On that day, the sun shone bright and all the children were wild with excitement. They crowded into the train and sat down. But nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. Down to the sands, they raced hand in hand, but nobody took Hari's hand. Nobody went near him.
4: Hari was angry. He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. He took out his lunch and looked at it. It was a good lunch. They were too hard.

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं एफएम रेनबो लखनऊ के कार्यक्रम।
1: नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं, सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद नीट यूजी 2026 की 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है। कल देर रात शिक्षा मंत्री के आवास पर नीट परीक्षा को लेकर

एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी परीक्षा की तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा संचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में आगामी परीक्षा की तिथि को अंतिम रूप दिया गया। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल कहा कि घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही है और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे सभी रिटेल आउटलेट और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल गाजियाबाद स्थित 8वीं एनडीआरएफ बटालियन में राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान अपने संबोधन में गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से न केवल जोखिम को न्यूनतम करने के लिए कार्य किया गया, बल्कि प्राकृतिक आपदा को कम करके उससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि एनडीआरएफ ने बीते 2 दशक के कम समय में ही देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। प्रदेश में स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में कल स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम थीम पर डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि निराश्रित गोवंश सरकार की प्राथमिकता है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है। मौसम विभाग ने आज से 18 मई तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। विभाग ने इस अवधि में दिन के समय कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही अगले एक सप्ताह के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की जबकि न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो घंटे तरन्नुम के साथ।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: चलिया चलिया चलिया, रूह चुरा लूं मैं हूं ऐसी चलिया।
4: और 2:12:03 हो चुके हैं, प्रोग्राम स्वयं सदा लेकर हाजिर है तरन्नुम। बहुत सारी बातें आज होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे हम शेयर करने वाले हैं। कुछ ऐसी खास शख्सियतें हैं जो आप तक पहुंचेंगी और बताएंगी अपने कुछ ऐसे अनुभव जिन्होंने अपनी जिंदगी में शामिल किए हैं। बहुत सारी बातें जब होती हैं जब हम फैमिली के साथ बैठते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं। यस एग्जैक्टली, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विश्व परिवार दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। हर साल 15 मई को दुनिया में यह दिन मनाया जाता है ताकि हमें परिवार की अहमियत और उसकी ताकत का एहसास हो। फिलहाल ये ट्रैक आप तक।

जी हाँ बिल्कुल, अगर मीठे मीठे बोल हम बोलेंगे और प्यार से बात करेंगे, तो कहते हैं ना कि अगर कोई आपसे दुश्मनी भी रखे है और अगर आप प्यार से उससे बात करते हैं तो फिर वो भी आपका दोस्त बन जाता है। और आज की जो इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इतनी फास्ट लाइफ है, जिसमें लोग अपने काम, मोबाइल और सोशल मीडिया में इतने बिजी हो गए हैं कि कभी कभी एक ही घर में रहकर भी दूरियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन छोटी सी फैमिली डिनर, एक साथ चाय के टाइम पर बैठना, या सिर्फ आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, ये पूछ लेना भी रिश्तों को मजबूत बना देता है। और ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो फैमिली होती है, जो परिवार होता है, वो सिर्फ खून के रिश्तों का नाम नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसा एहसास होता है जहाँ हमें बिना किसी शर्त के अपनापन मिलता है। जब हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो मम्मी का प्यार मिलता है, पापा की हिम्मत होती है, भाई बहन की शरारतें और दादा दादी की बातें, ये हमारी साथ जब रहती हैं तो फिर से हमें मुस्कुराना सिखा देती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों, कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं जो हमें एक नई सीख दे के जाते हैं, जो एक नया तजुर्बा दे के जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी और आपकी ज़िंदगी में आती हैं। कभी कभी किसी की कही हुई बात, कभी कभी किसी से एक छोटी सी मुलाकात हमारी जो सक्सेस होती है उसमें एक बहुत ही मजबूत सीढ़ी बनकर उभरती है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम ऐसी दो महिलाओं का भी जिक्र करेंगे जिन्होंने अपने वक्त में बहुत सारा योगदान दिया है। योगदान कहाँ दिया है, इस आकाशवाणी के इतने बड़े से परिवार में, और वो खुद स्वयं सिद्ध कर उन्होंने किया अपने आप को और साबित कर दिया कि महिलाएं किसी से भी पीछे नहीं हैं। और इसमें श्रीमती शारदा लाल हैं, श्रीमती नीना श्रीवास्तव हैं, इनसे जो भेंट वार्ता है, जो मुलाकात है, वो की है ममता उपाध्याय ने। ये सारी बातें हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी फैमिली की बातें हो रही हैं, हमारी और आपकी भी बातें हो रही हैं, तो ऐसे में बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर से निकल चुकी हैं काम के लिए, या ऑफिस में हैं, या घर में हैं, खाना बना रही हैं, या कोई भी हुनर है जो वो कर रही हैं, और साथ ही साथ सुन रही हैं स्वयं सिद्धा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों लाइफ में, अगर कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जो आपको नागवार गुजरती है, तो उनको जाने दीजिए, उनको गांठ बांध के अपने दिल में, अपने दिमाग में मत रखिए, क्योंकि जब आप चीज़ों को जाने देते हैं तभी कोई अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें आपके पास आना शुरू हो जाती हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में

0: 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दिल दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
4: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
5: हैंगओवर
4: Only 100.7 FM Rainbow.

और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज वर्ल्ड फैमिली डे है और विश्व परिवार दिवस की जब बात होती है, परिवार की जब बात होती है, तो अक्सर ये होता है कि आप देखिए कि पहले क्या होता था, संयुक्त तो परिवार हुआ करते थे, लोग एक दूसरे के घर जाते थे, बैठ के बातचीत होती थी, सब होता था, लेकिन अब वो जो माहौल है वो नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि अब लोग जो हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज को बढ़ावा दे रहे हैं। ये जो ट्रेंड है ये बढ़ता जा रहा है, लोग अलग शहरों में काम करते हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए दूर चले जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि रिश्तों को वक्त देना और भी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि परिवार वही जगह है जहाँ हम बिना किसी डर के अपनी बात कह सकते हैं। तो बस अपने परिवार को जितना हो सके मजबूती से बांध के रखिए, जितना अच्छे बुरे में साथ आप दे सकते हैं वो दीजिए, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि आपकी जो जिंदगी है उसमें जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको भी आपको बना कर रखना है।

0: और 12:28 हो गए हैं दोस्तों। जैसे कि हमने आपसे कहा था, वादा किया था कि आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसमें एक प्रोग्राम बनाया है ममता उपाध्याय ने, कुछ यादें कुछ बातें। जी हाँ बिल्कुल, आप समझ गए होंगे कि कुछ ऐसी यादें और कुछ ऐसी बातें जो इस आकाशवाणी के परिवार में उन महिलाओं से की गई हैं जिन्होंने काफी योगदान दिया है यहाँ पर, जिन्होंने सिद्ध किया है अपने आप को, उसमें से हैं एक श्रीमती शारदा लाल और श्रीमती नीना श्रीवास्तव। आइए सुनते हैं इसकी पहली कड़ी।
1: आकाशवाणी 90 वर्ष का कारवां। इस सुरमई यात्रा में जुड़े असंख्य कलाकार, वार्ताकार और प्रसारणकर्ता, जिनके पास आकाशवाणी से जुड़ी यादों और बातों का खजाना है, और ये खजाना अनमोल है। अनमोल यादों और बातों को लेकर हमारे साथ हैं आकाशवाणी लखनऊ से जुड़ी हमारी दो वरिष्ठ प्रसारण साथी, श्रीमती शारदा लाल और श्रीमती नीना श्रीवास्तव। आज सुनिए इस बातचीत की पहली कड़ी।

0: याद करो।
1: अरे नीना, ये ममता जी किसको याद कर रही हैं?
2: ममता जो है वो गुजरा हुआ जमाना, आता नहीं दोबारा, याद कर रही, लेकिन हम लोग आ गए।
1: याद कर रही थी और बुलाया, ये बुलाए हम ना आए, ऐसी तो कोई बात नहीं।
0: बिल्कुल ऐसे हालात बिल्कुल नहीं है, और मैं याद भी आप लोग को ही कर रही थी, क्योंकि आप लोगों की रेडियो से जुड़ी जो बातें हैं ना, वो हमें साझा करनी है अपने श्रोताओं के साथ में। प्रसारण की दुनिया से बहुत लंबे समय से जुड़ी रही और आज भी वो कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ी हुई है, और माइक्रोफोन के सामने भी आप लोगों ने कमाल दिखाया था, और माइक्रोफोन के पीछे भी जो कार्यक्रमों का नियोजन था, संयोजन था, उसमें भी आप लोगों दक्षता दिखाई थी। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद, धन्यवाद तुम्हें, और तुमने याद किया, बुलाया, हालांकि बुलाया क्या, हम तो यहाँ से कभी अलग ही नहीं हुए।
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई, जो यादें हैं ना हमारी पुरानी रेडियो जुड़ी हुई, वो कभी हमसे दूर नहीं
1: होती है ना।
2: पुराने दिन की बात कर रही हूँ ममता, यहाँ पर आके ऐसे लगता है जैसे हम अपने घर आ गए, अपने मायके में आ गए।
0: तो ये बताइए कि जो ये रेडियो से प्रेम है ना, ये तो बहुत पुराना होगा आप दोनों का ही,

0: तो पहला प्रेम कब
1: तुम
0: जागा?
1: बार बार ये कह रही, बहुत पुराना होगा, मतलब प्रेम तो हमारा उतना ही ताजा आज भी है जितना पहले दिन था।
0: प्रेम पुराना नहीं होता ना, कहीं ना कहीं ताजगी बने
2: पुराना नहीं। प्रेम कभी पुराना नहीं होता है, प्रेम हमेशा साथ बना रहता है और इस प्रेम को लेकर ही जीवन जो है आगे चलता है।
0: पर कभी ना कभी वो पहला अंकुर जो था रेडियो के प्रति प्रेम का, वो जागा होगा, तो वो बताइए हमारी सखियों को।
1: पहले शारदा जी बताएंगी।
2: आप कह रही तो मैं बताती हूँ।
1: नहीं बिल्कुल,
2: ये बहुत पुराना समय है, 63-64 के बीच की बात है
0: जी।
2: कानपुर का आकाशवाणी केंद्र, वहां मेरी नियुक्ति हुई। पहली उद्घोषणा जो मुझे करनी थी उसके लिए मैं सोच रही थी मैं ठीक ठाक कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, इतने मन में संदेह थे कि ममता जी मैं आपको क्या बताऊं। और नवंबर के महीने में जब पहला अनाउंसमेंट मैंने वहां किया
0: जी,
2: तो मैं भीतर तक पसीने से भीगी हुई थी।
0: भाई कहते हैं कि बड़े बड़ों को पसीना आ जाता है माइक्रोफोन के सामने,
2: माइक्रोफोन के सामने। और वही ये माइक्रोफोन है जो हमारा इतना अच्छा दोस्त बन गया कि हमें लगता है कि बस इससे बात करना सबसे अच्छी बात है,
0: बस और खेल के समान हो गया था।
2: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वही वाली बात है ना, वो पहला मौका था और उसके बाद गाड़ी चल पड़ी थी, गाड़ी चली तो रफ्तार इतनी पकड़ी कि क्या बताओ
0: जी। तो आपकी रफ्तार के बारे में हम और जानेंगे। नीना जी के पास चलते हैं कि जब आपने प्रवेश किया होगा पहली बार आकाशवाणी के परिसर में और जब उद्घोषणा जैसे ने कहा, तो वो क्या क्षण था, क्या अनुभूतियां थी, क्या रोमांच था?
1: ममता, हमें तो आज तक वो दिन याद है जब पहली बार हम आकाशवाणी में आए थे ऑडिशन देने।
0: अच्छा।
1: ये 1972 की बात है।
0: तो दिल दिल और धुक धुक धुक धुक कर रहा होगा।
1: लग रहा था डरे डरे सहमे सहमे अंदर कदम रख रहे हैं। और ये थोड़ी सी आज की भी बात करें कि जहाँ पे आजकल कैंटीन है उस जगह पे एक छत सी हुआ करती थी, उसके पहले न्यूज रूम होता था, तो सारे कैंडिडेट्स वहीं पर बैठे हुए थे। तो हम लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, अरे बाबा रे कब आएगी, कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे।
0: और जो पिछला बोल के आते उससे पूछते हैं, उससे पूछते थे क्या।
1: तो खैर काफी कुछ हुआ, उसके बाद हमारा नंबर आया। हमारा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भाई हम लखनऊ में पैदा हुए और लखनऊ में ही है।
0: हाँ, हाँ।
1: तो लखनऊ में हम बोलते हैं,
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: मैं हमारा ही हमें आदत है।
0: हाँ।
1: तो जब हमारा नंबर आया और हम गए यहाँ का, अभी तो ये नया स्टूडियो है, पुराने स्टूडियो में एक नंबर स्टूडियो की, तो उसमें गए। अब इतना बड़ा सा वो स्टूडियो था एक नंबर वाला, और उसमें से चारों तरफ घूम के देखा, कहीं कोई भी नहीं है, बस एक आवाज आई, हाँ जी शुरू हो जाइए। स्क्रिप्ट हाथ में थी, शुरू हो गए, सब बोला। उसके बाद आया, धन्यवाद, आप बाहर बैठकर प्रतीक्षा करिए
0: जी।
1: बाहर निकले, आए, बैठ गए, सबने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, तो हमने कहा कि वो बोला है धन्यवाद, आप बैठकर बाहर प्रतीक्षा करें। तब तक एक लड़का था, आज तक नहीं भूला मुझे वो, कि उसने कहा पर हमसे तो उन्होंने कहा है कि धन्यवाद आप जा सकते। तो हमारे बगल में एक दूसरी लड़की बैठी, उन्होंने आपको समझ नहीं आता, इसका मतलब ये है कि आप फूटी है। आज तक हमें वो किस्सा मतलब भूलता ही नहीं है कभी
0: जी, जी।
1: कि ये था पहला दिन। फिर उसके बाद तो खैर आगे के प्रोसेस चलते रहे, इंटरव्यू और ये सब होकर सिलेक्शन वगैरह। फिर दो चार दिन पहले कैजुअल रखे जाते थे कि कैजुअल आए, फिर किसी के साथ में बैठकर अनाउंसमेंट किया
0: जी।
1: फिर उसके बाद फिर आपको स्वतंत्र रूप से ट्रांसमिशन सौंपा जाता था।
0: तो जो पहला था स्वतंत्र रूप से किया गया ट्रांसमिशन आपका, वो कुछ याद है आपकी?
1: अब इतना तो नहीं याद है, लेकिन हाँ ये याद है कि पूरे विश्वास के साथ हमने किया था और तारीफ पाई यहाँ पर
0: जी।
1: क्योंकि उस समय हमारे स्टेशन डायरेक्टर थे पी माथुर जी
0: जी।
1: कुछ ही दिनों की बात है कि 12 बजे सुगम संगीत हुआ करता था, उसमें कहीं पर कोई गजल बजानी थी, उसके पहले हमने एक शेर बोला, शेर तो उसी गजल का ही बोलते थे हम लोग, तो बोला हमने। उसके बाद जब बाहर निकले तो हमें याद है कि ड्यूटी ऑफिसर खरे साहब हुआ करते थे, SB खरे, तो उन्होंने कहा क्या बोल दिया आज तुमने भाई, तुम्हारे बड़े फोन आ गए। पता चला स्टेशन डायरेक्टर ने कहा कौन अनाउंसर ड्यूटी पर है, उसने बहुत अच्छे से बोला वो। और SG ने भी फोन किया, दोनों ने फोन किया, बहुत अच्छा अनाउंसमेंट किया।
0: वो शेर तो याद नहीं होगा ना?
1: शेर अब याद नहीं, क्योंकि इतने सारे शेर बोले कि
0: तो कोई एक शेर याद है
2: शेर होगा।
0: जी
1: कोई एक शेर याद है।
0: हाँ।
1: पहले गीत सुमन प्रोग्राम हुआ करता था, तो उसमें एक गाना बजाया था, अभिमान नाम था फिल्म का।
0: हाँ।
1: और उसका गाना था रे मीत ना मिला रे मन का। तो गाना बजाने के पहले
0: हाँ।
1: ने एक शेर बोला, शिकवे की बात है ना शिकायत की बात है,

0: और क्या कहूँ, मेरी किस्मत की बात है, और प्ले कर दिया वो गाना रेमी रेमन का।
1: हाँ
0: उसके बाद हम लोगों की शिफ्ट ड्यूटी हुआ करती थी, तो हमारी बहुत सीनियर थी श्रीमती कांति गुप्ता, कांति दी, हम लोग दी बोलते थे पहले, कभी एक दूसरे का नाम वाम नहीं लिया जाता था, दी इस तरह से करके बोलते। तो कांति दी आई, अरे नीना आज तो तुमने बहुत उम्दा शेर बोला, इतना उस पर चस्पा हो गया, ये वर्ड थे
1: हाँ
0: उनके,
1: हाँ हाँ
0: इतना चस्पा हो गया। हमने कहा क्या हुआ कांति? कहले अरे तुमने जो शेर बोला था बहुत अच्छा लगा।
1: हम अपनी बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि बातचीत आप लोगों से हो रही है और माइक्रोफोन्स जुड़े लोगों से हो रही है, तो गीत संगीत की बात तो होनी ही चाहिए। तो नीना जी, आपकी पसंद का कोई गीत हम अपने श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे।
0: तो एक तो अभी हमने बताया रिमीत ना मिला रे मन का, हालांकि ऐसा है नहीं कुछ गलतफहमी मत
1: जी, आपको अपने पसंद का ही मीत मिला है
0: रहिएगा
1: ना
0: हाँ, इसीलिए हमने कहा गलतफहमी मत रहिएगा
1: जी, तो हम सुनते हैं इस गीत को, उसके बाद फिर अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।

0: की प्रोग्राम प्रेजेंटेशन की वो बहुत सुपर फास्ट ढंग से चल पड़ी और बहुत सक्सेसफुल भी रही। तो ये बताइए कि जैसा कि आपने बताया कि पहला ही कार्यक्रम आपका बहुत अच्छा हुआ, शारदा जी आपका वो कार्यक्रम जिससे आपको बहुत प्रशंसा मिली, लोगों ने कहा कि भाई क्या कमाल किया आपने।
1: देखिए ममता जी, नीना जी ने जो कमाल दिखाया वो स्टूडियो में बैठ के दिखाया
0: जी जी,
1: और मैंने
2: और
1: जो कुछ
2: कमाल स्टूडियो के
1: नहीं,
2: बाहर के होता
1: कमाल नहीं, जो कुछ मैंने किया हाँ। वो स्टूडियो से निकल के किया
0: जी।
1: मैं एक वाकया आपको बताना चाहती हूँ। बछरावा में हम लोग गए थे, कवि सम्मेलन और मुशायरा दोनों एक साथ होने थे
0: जी।
1: बहुत से सब लोग कवि और शायर लोग आए थे, उनमें से एक खुमार साहब भी थे, खुमार बाराबंकी
0: जी।
1: आप ये समझिए, मैं बहुत कम शब्दों में बात बता रही हूँ कि कार्यक्रम चल रहा है, एक के बाद एक कवि और शायर अपना कलाम पढ़ रहे हैं, पर मुझे खुमार साहब नहीं दिखाई दे रहे हैं।
0: अरे और आपके तो...
1: और सारे कार्यक्रम का दायित्व मुझ पर था, तो मेरे तो प्राण सूख रहे थे कि खुमार साहब गए कहाँ, और बाकी जो सामने जनता बैठी थी वो खुमार साहब को सुनने के लिए बेताब हो रही थी। अब मेरे तो पसीने छूटे जा रहे थे, मैं कहाँ जाऊँ, किससे पूछूं, इतनी भीड़ कि हम वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते।
0: उस वक्त मोबाइल तो हुआ नहीं करता था,
1: उस जमाने में क्या था ये तो आप अच्छी तरह से सोच सकते हैं। अब लास्ट बट वन शायर स्टेज पर था और खुमार साहब हमको तब भी नहीं दिखे।
0: आपके दिल की धड़कन कितनी तेज रही होगी,
1: हमारा क्या हाल हुआ होगा। बहरहाल कुछ ईश्वर की कृपा या खुमार साहब की कृपा कहिए कि वो झूमते झामते चले आ रहे हैं
0: जी।
1: और उनके कुर्ते पर उनके पान की छींटे बाकायदा पड़ी हुई
0: हाँ।
1: शोभायमान थी
0: जी।
1: खैर उनको देख के मुझे तो लगा कि मैं शायद बच गई हूँ, मन्नत डूबने ही वाली थी। बहरहाल उन्होंने जो फिर माइक्रोफोन संभाला और जो उन्होंने अपने कलाम पढ़ने शुरू किए, तो बछरावा की जनता पागल हो गई, तालियां और वाह वाह और सुनाइए। तो वो एक ऐसी घटना थी जो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था
0: जी।
1: एक सफल कार्यक्रम हुआ, लेकिन उससे पहले मेरी जो हालत हुई वो उस समय मैं ही बता सकती हूँ
0: जी जी। तो
2: शारदा जी एक चीज बीच में इंटरप्ट
1: हाँ, बिल्कुल
2: पहले आपको याद है कि वो भी रिकॉर्डिंग होती थी, इंजीनियर साथ में जाते थे, वो
1: उसका भी हाल सुन लीजिए, वो भी रिकॉर्डिंग का भी हाल सुन लीजिए
0: हाँ जी।
1: हम लोग एक बार और गए बाहर, तो हमारे समय तक टेप रिकॉर्डर ऐसे आ गए थे कि हम लोग अपने आप उसको उठा लेकर के जा सकते थे, उसको ऑपरेट करते थे। शाहजहांपुर हम पहुंचे, वहां के चीफ मेडिकल ऑफिसर, उन्होंने हमको सीधा जवाब दे दिया कि हम यहाँ कोई रिकॉर्डिंग नहीं करा सकते हैं। पहले से उन्होंने हमारे यहाँ चिट्ठी भेज दी थी, हमारी चिट्ठी उनके यहाँ पहुंच गई थी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब मुझे बालू में से तेल निकालना था।
0: बापरे मुहावरा आ गया, बालू में से तेल निकालना। कैसे निकाला आपने?
1: आप समझिए, वहां पर एक अध्यापिका थी इंटर कॉलेज की, कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ करके उन्होंने हमसे बातचीत की, और उनसे बातचीत करने के बाद, ममता जी क्या बढ़िया प्रोग्राम हमने वहाँ रिकॉर्ड किया है जो हम कभी भूल नहीं सकते।
0: वो कैसे?
1: वो इसलिए कि उन्होंने कहा कि आप शाहजहांपुर आए हैं, हमारा भी शाहजहांपुर है हाँ। चलिए हमारे विद्यालय में चलिए, हम आपका सारा काम होगा, आप निश्चिंत रहिए। हम गए उनके साथ, उन्होंने बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग कराई, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से हमको मिलवाया, और इतने अच्छे कार्यक्रम हमने प्रस्तुत किए, यहाँ आकर के प्रोग्राम बनाए, प्रसारित किए, प्रशंसा भी बटोरी
0: जी।
1: उस समय आप सोचिए कि मेरी हालत क्या हुई। इसी संदर्भ में एक छोटी सी बात और संक्षेप में कहना चाहती हूँ कि कभी कभी हम इतने अभिभूत हो जाते हैं रेडियो में आने के बाद, अपने आप को बहुत कुछ समझते समझते भी हम अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं
0: जी जी।
1: हमारा जाना हुआ राजभवन में, उस समय विष्णुकांत शास्त्री जी जो थे राज्यपाल थे
0: जी जी,
1: बहुत विनम्र, बहुत उदार, बहुत सक्षम, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। अगर ये कहा जाए कि वो गवर्नर हैं वो बात छोड़ दीजिए, मगर वो व्यक्ति बहुत अच्छे थे। तो उनके कमरे में हम लोगों ने रिकॉर्डिंग की, उसके बाद चाय आई, हम लोगों ने चाय पी
0: जी।
1: उन्होंने उठ करके एक प्लेट उठाई, उसमें समोसा रखा था, कहा आप भी लीजिए बिटिया, आप भी लीजिए
0: जी।
1: अब हम तो बिल्कुल घबरा गए, अब हम खड़े हो गए, हमने कहा नहीं नहीं आप बैठिए, हम अपने आप ले लेंगे। खैर हमने समोसा तो ले लिया, मगर आपको हम ये बताएं कि हम बहुत वर्षों से जब शास्त्री जी ने कहा था कि सोमवार का व्रत रखिए,
0: अच्छा
1: तब से मैं सोमवार का व्रत रखती थी, और उस दिन मैंने उस सोमवार के व्रत को उस समय समोसे से तोड़
0: दिया।
1: शास्त्री जी के व्यक्तित्व से हम इतने प्रभावित हुए

0: इतना अच्छा
1: तो
0: लगा
1: एक
0: हमको।
1: शास्त्री जी ने कहा था व्रत रखने को और एक
0: एक
1: शास्त्री
0: शास्त्री
1: जी
0: जी
1: ने
0: ने
1: आपके व्रत को
0: तोड़वा
1: दिया।
0: तो ये सब कुछ ऐसी घटनाएं हैं
1: हाँ।
0: जो कभी हमारी जिंदगी से जुदा नहीं हो सकती।
1: शारदा जी, अब जो बातचीत हम आगे करेंगे आप दोनों से, उससे पहले आप भी तो अपने महिला प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में गीत संगीत तो बजाती रही होंगी ना?
0: गीत संगीत की बात जब चलती तो ऐसा नहीं कि जब कार्यक्रम में बजाएं तभी कुछ याद रहे।
1: हाँ।
0: हमें वैसे भी बहुत याद रहा। मुझे महल का कोई भी गाना, हर गाना मुझे महल का बहुत अच्छा
1: तो आएगा आने वाला।
0: बिल्कुल,
1: बिल्कुल है ना,
0: बिल्कुल,
1: तो हम वही सुनते हैं।

0: नीना जी, जैसे कि बात करी शारदा जी ने कि कई बार हमारा वो कार्यक्रम बहुत सफल हो जाता है कि उससे पीछे की कठिनाइयां लोगों को पता नहीं होती है, पर कई बार हम अनजाने में ही माइक्रोफोन के सामने कुछ गड़बड़ कर जाते हैं और फिर उसको बैलेंस करने के लिए भी कुछ कुछ हमें करना पड़ता है। तो कभी कुछ ऐसी घटना हुई कि कुछ ऐसे मुंह से निकला और फिर आपने उसको ठीक करके ऐसा पेश किया कि लोगों को लगा अरे वाह क्या कार्यक्रम था?
1: कोशिश करते कोई ऐसी याद आ जाए, लेकिन फिलहाल
0: याद नहीं आ रही है।
1: बहुत अच्छे अनाउंसर में माने जाते हैं।
0: गड़बड़िया आपसे नहीं हुई,
1: अपनी तारीफ अपने आप से कर।
0: नहीं, नहीं। पर मेरे साथ हुआ था कि मुझे भी एक प्रोग्राम पेश करना था, तो मैंने सोचा कि मैं सारे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के गीत सुनाऊंगी और उसमें मैंने एक गाना चुन लिया, मन की बात मेरे मन से ना निकली ऐसे तड़पू की जैसे जलबिन मछली। और जब तक कि वो गाना प्ले नहीं हुआ मुझे याद ही नहीं आया कि वो कलर्ड फिल्म थी। जैसे ही गाना प्ले होना शुरू हुआ मुझे याद आया कि अरे उसमें तो नारंगी रंग की मछली नृत्य करती है और वो जो हीरोइन है संध्या जी वो भी नारंगी ड्रेस पहनती है। तो बहुत ही मुश्किल से उसको संभाला था। तो ये बताइए कि आप लोगों के सामने कभी ऐसी कुछ गड़बड़ियां नहीं होती थी?
1: तुम ये बात बता रही तो याद आ रहा है, बहुत पहले की बात है जब आए थे 72।

0: उनकी बात बता रहे हैं। पहले यहाँ पे टीएस रिकॉर्ड हुआ करते थे, टीएस रिकॉर्ड जानती हूँ? नहीं, हम जितना जानते हैं उतना ही बता रहे हैं कि आकाशवाणी में ही शायद वो उनकी रिकॉर्डिंग करी जाती थी। और टीएस रिकॉर्ड बड़े बड़े होते थे, जैसे बड़े वाले वो एलपी पहले एलपी आते थे ना, उस तरह के होते थे। और उनमें खासियत थे, कुछ रिकॉर्ड जो थे इनसाइड आउट होते थे, कुछ आउटसाइड इन होते थे। तो वो हम लोगों का एक प्रोग्राम होता था, सबरंग कहलाता था। सबरंग में इस तरह, क्योंकि उसमें सुगम संगीत वगैरह या फोक इस तरह के बहुत से रिकॉर्डेड होते थे, तो वो आते थे। पहले तो तुम्हें याद होगा टर्न टेबल होती जी, थी। हाँ, और हाँ, उस पर पिकअप रखो। हाँ, फिर पिकअप भागता था तो
1: आगे पीछे,
0: हाँ, आगे पीछे भागता था। तो अठन्नी चौन्नी भी कभी कभी हम लोग रखा करते थे उस पर भेज देने के लिए कि भाई वो पिकअप जो है भागे ना, दौड़े ना, कायदे से चले। तो उसमें आप जितनी बार रख रहे हैं उतनी बार वो फिर धर से बाहर आ जा रहा है, फिर बाहर से आ जा रहा है पिकअप। समझ ही ना आए कि ये हुआ क्या। तब तक हमारे ड्यूटी ऑफिसर थे, शायद जोशी जी थे, जयंत जोशी थे, वो आए। उन्होंने कहा देखो आउटसाइड इन इनसाइड आउट जरूर देख लिया करो इसमें। तब देखा अरे ये तो इनसाइड आउट था, तो अब हम बाहरी उस पर रखी जाती ना पिकअप, तो वो रख रहे हैं तो वो तो बाहर के बाहर ही हो जा रहा है, उसको अंदर रखना था मुझे।
1: ऐसा ही तो अक्सर टेप में भी होता था ना, कई बार लोग उल्टे टेप को लगा देते थे। और जब प्ले होना शुरू हुआ तो वो किस स्पीड में चलता था।
0: अरे उस वक्त तो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें होती थी, टेप रिकॉर्डर वो बड़े वाले भारी भरकम, और उसमें वो इधर से टेप जा रहा उधर, और साथ में हम लोग सेलो टेप जरूर, मतलब कोई चीज भूल जाए, खाना पीना सब कुछ भूल जाए, लेकिन सेलो टेप और ब्लेड नहीं भूलते थे। यार कहीं भी टूटा अगर बीच में ये टेप तो उसको चिपका देना किसी तरीके से।
1: तकनीकी की बात कर रहे हैं हम लोग की, हम लोग मेल्टन मशीन, स्पूल, और फिर उसके बाद रिकॉर्ड प्लेयर था, फिर लॉन्ग प्लेयर जैसा था आपका। हाँ, उसके बाद अब कंप्यूटर पे आ गया है। तुम तकनीक बहुत बदल गई,
0: बहुत बदल गई,
1: कंटेंट भी बदल रहा है।
0: हालांकि जाते जाते आ गया था थोड़ा सा ये हम लोगों
1: में भी आ गया,
0: लेकिन जितना अब है, अब तो पूरी तौर पे है, तो उतना नहीं था, थोड़ा बहुत
1: तो बदलाव अब है।
0: लेकिन हो सकता है कि आज के लोगों को अच्छा लगता हो, पर जो मजा उसमें था
1: जी,
0: हम लोगों को जो मजा आता था, वो मजा ऐसे बजाने में नहीं आता।
1: शारदा जी ने जो बनाए होंगे फीचर या नाटक, तो वो एक नाटक बनाने में तीन तीन चार चार मेल्ट्रॉन की जरूरत पड़ती थी।
2: सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
1: हमने भी बनाए थे
2: उसके साथ, जो हम लोग जूझे हैं वो हम ही लोग जानते हैं, बाकी लोग जान ही नहीं सकते।
1: बिल्कुल सही कहा शारदा जी आपने कि जो अनुभव आपको अपने समय में हुए वो हमारे आज के प्रसारण कर्मी भी शायद ना समझ पाए और हमारे सुनने वाले भी। लेकिन नीना जी तो इसकी साक्षी रही है, और आप दोनों का कार्य काल इतना लंबा रहा है और अनुभव भी बहुत ढेर सारे रहे हैं। और सखियों, आप सोच रही होंगी कि क्या हमारी बातचीत यहीं पे समाप्त हो रही है? आज हमने यहीं पर विराम लिया है। हमने शारदा जी से और नीना जी से बहुत लंबी बातचीत की है, इसे हम आपको सुनवाएंगे जरूर, बस इंतजार करिए। इन बातों में बहुत रोमांच है, रस है, रहस्य है, कुछ हास्य है, बहुत सारी जानकारियां हैं, खुशियां हैं। तो आप लोग बस हमारे कार्यक्रमों को निरंतर सुनते रहिए, और शारदा लाल जी और नीना श्रीवास्तव जी से की गई हमारी जो बातचीत आगे जारी रहेगी उसका लाभ, उसका आनंद जरूर लीजिएगा। और आज के लिए हम शारदा जी को और नीना जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने अनुभवों को हमसे साझा किया। अगले शुक्रवार को स्वयं सिद्धा कार्यक्रम में इस बातचीत की दूसरी कड़ी सुनना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और 12:55 हो चुके हैं, प्रोग्राम स्वयं सदा को वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाजत। तरन्नुम को मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, जिसका नाम है होठों पे तेरी बात। और आज का सवाल ये है कि वो कौन

कौन सी ऐसी आदत है जो हम सबको छोड़नी चाहिए, कौन सी ऐसी आदत है जो हम सबको छोड़नी चाहिए। आप मेल कर सकते हैं एफ एम आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर। सुनते रहिए द हार्ट बीट ऑफ लखनऊ।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे FM रेनबो लखनऊ के कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से FM 100.4 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आइए अब सुनते हैं अनुरोध गीत। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के अनुरोध गीत में।

0: दोस्तों, हम हाजिर हो चुके हैं आपके अनुरोध भरे पत्र लेकर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनुरोध गीत कार्यक्रम आपके द्वारा भेजे गए फरमाइशी फिल्मी गीतों के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम रहता है। और आपकी जानकारी के लिए आज के कार्यक्रम में कुछ पोस्ट भी हमारे पेज पर आई, तो आपको उस पर कमेंट नहीं करना है, क्योंकि पहले ही लिख दिया गया है कि प्लीज नो कमेंट, नो कमेंट प्लीज। और इस कार्यक्रम में सिर्फ चिट्ठियां शामिल होती हैं, तो चिट्ठियों को अगर आप शामिल करवाना चाहते हैं, पत्र भेजना चाहते हैं, हमारा पता है कार्यक्रम अनुरोध गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन कोड 2430001। इस पते पर आप अपने पत्र हमें भेजिए और अनुरोध गीत कार्यक्रम में हम आपकी वो सुरीली ख्वाहिश का गाना सुनवाएंगे। चलिए आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं और पहला पत्र शामिल करते हैं। आप हैं मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगना बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर, बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह। इसी गीत में शामिल करते हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा का यह पत्र, आपने भेजा है चंडीगढ़ से। और हमारे ये जो साथी हैं वो पाकिजा रेडियो श्रोतासंघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से हैं, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश कौर, मोहम्मद शादाब खत्री और इनके सभी साथी। तो आइए सुनते हैं फिल्म गंगा की सौगंध से यह गीत किशोर कुमार साहब की आवाज में, और अनजान के बोलों को संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने। आपका पसंद का गाना आप सबके नजर।
1: अरे मिस्री जैसी तोरी सूरतिया,

और दोस्तों अगली पेशकश फिल्म दादा से मोहम्मद रफी, शैलेंद्र सिंह और साथियों की आवाजें, बोल लिखे हैं असद भोपाली ने, म्यूजिक डायरेक्शन उषा खन्ना का। सुनने के ख्वाहिशमंद आप सभी साथी हैं जिनके पत्र मिले हैं। परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा, आफरीन खान, जमीर खान और इनके सभी साथी। और आप हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा, सालिया, शोएब खान, मुज्ताबा खान, रऊब भाई, शहीद भाई। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और इनका पूरा परिवार। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा हमारे ये साथी हैं। उसैद बदायूं से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज खान बबलू, विकास सक्सेना, कर्मवीर गोटवाल, प्रवीण रावत, अनिल नागर, सागर बख्शी, भारत यादव और इनके तमाम साथी। तो ये पेशकश फिल्म दादा से है और आप सबके नाम है।

दो शत्रु का ये गीत है आशा भोसले और नरेंद्र चंचल की आवाजों में। वर्मा मलिक साहब ने बोल लिखे हैं और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। नाम आपके करते हैं। दौलत बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी और इनके सभी साथी। लच्छनपुर से आप हैं रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू और इनके सभी साथी। मौला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, रसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर और इनके सभी साथी। तो आप सबके नाम दो शत्रु फिल्म से ये बेहतरीन पेशकश।

अनुरोध गीत आप आकाशवाणी बरेली से सुन रहे हैं। अगला गीत आपको सुनवाते हैं दीदार फिल्म से। इस गीत को गाया है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी साहब ने। वर्मा मलिक ने बोल लिखे हैं, उषा खन्ना का म्यूजिक डायरेक्शन है और पत्र मिले हैं आप सबके। आप हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से, तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा और इनके सभी साथी। डोंगरगांव से आप हैं, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी, अनिष्का और तन्मय गजभिये। ये पत्र हमें मिला है महादेवगढ़ अमलेश्वर से। डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हमें पत्र भेजा है। आप हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयबीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से आप हैं शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। तो आइए सुनते हैं फिल्म दीदार से ये गीत।

ये जो गीत आप सुनेंगे खानदान फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल, रवि का म्यूजिक डायरेक्शन, और सुनना चाहते हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दिव्या निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। ये मैसेज आपका भी मिला है। आदर्श नगर मलोड से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ, साइना शर्मा और निवान शर्मा। जसपुर उत्तराखंड से आप हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन और इनका पूरा परिवार। तो आइए सुनते हैं फिल्म खानदान से ये गाना।

आकाशवाणी बरेली FM 14.4 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर इस समय आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत, द ग्रेट गैम्बलर फिल्म के ये गाना, आशा भोसले और अमिताभ बच्चन की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, RD वर्मन साहब का म्यूजिक डायरेक्शन। पसंद करने वाले आप सब हैं राम प्रसाद शर्मा, वंदना शर्मा, मनोरमा देवी, अजय रीता, विनोद वंश।

0: आप हैं छावनी अशरफ खान, पानी की टंकी के पास, होली चौक बरेली से। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गोगलानी, सुनीता शर्मा, जगमोहन प्रजापति और इनके सभी साथी। लेवई से गुलाब दास मणिकपुरी, विश्वनाथ साहू लचनपुर से, रेंगली से दिनेश वर्मा, भिलाई से मुकेश वर्मा, दतरंगी से भागवत वर्मा। आशा भोसले, अमिताभ बच्चन और शरद की आवाजों में फिल्म द ग्रेट गैम्बलर का यह गाना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से।
1: अमोरे मियो तो वैसाई तू, क्या गा रहा है?
2: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
1: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ।
2: गा

गीत की ओपनिंग की धुन सुनकर अंदाजा तो आपने लगा ही लिया होगा। फिल्म का नाम है इजाजत। आशा भोसले और साथियों की आवाजों में गीत गुलजार के बोल हैं, धुन बनाई है राहुल देव वर्मन ने, और इस गीत को सुनना चाहते हैं कटरा चांद का मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखेलाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, आरोही मौर्य और स्वाति मौर्य, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तनवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह जी दूलापुर मुरादाबाद से हैं, कस्बा बराना, जिला अम्बाला, हरियाणा तो आप हैं, रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल और इनके सभी साथी। तो आइए सुनते हैं फिल्म इजाजत से ये गाना।

जी दोस्तों, ये जो गीत आप सुन रहे हैं, आप तो ऐसे न थे, फिल्म से है। आशा भोसले की आवाज़, इंदिवर के बोल, उषा खन्ना ने संगीत निर्देशन किया है। और इस गीत को सुनना चाहते हैं इंदिरा बिहार रायगढ़ से, वसीम अकरम, डब्लू अकरम, उल्लाह अकरम, राजनांद गांव से याकूब आसमा, यूसुफ इमरान, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम अदीवा और इनका पूरा परिवार।

और इसी गीत में आप सबको साथ लेते हैं, धनोरी तेली वाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशा सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू और इनका पूरा परिवार। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बम्लेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और आप हैं खुदा बख्श खलीफा, खलीफों की बावड़ी से हमें आपने भी पत्र भेजा है। आप हैं चरडोगरी पिपरिया कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, किशन कुमारी साहू, इंद्राणी माया साहू और इनका पूरा परिवार, जगदीश धाकड़, नाइमा रंजुबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़, हिंगड़ी आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से हैं और आप सबके नाम करते हैं ये गीत।

दोस्तों अनुरोध गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। आइए अगला गाना फिल्म जिगर से आपको सुनवाते हैं, जिसे गाया है उदित नारायण और साधना सरगम ने। समीर ने बोल लिखे, आनंद मिलिंद ने संगीत निर्देशन किया है। सुनना चाहते हैं ग्राम शंकरपुर पोस्ट ओसावा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र आनंद, सनोज यादव, अमन सोनी, अंकिता यादव, विनीता, अनीता, सुनीता, सूरत श्री और प्रीति यादव। इसी गीत में आप सबको साथ लेते हैं। आप हैं शनि बाजार कस्बा उघेती से प्रभाकर गुप्ता, अवधेश, सचिन देव और इनके सभी साथी यहीं से यानी कस्बा उघेती से हैं। डॉक्टर देवेंद्र कुमार गुप्ता, डीके हिटलर, धीरज गुप्ता, पंकज बजाज और इनके सभी साथी। और हमारे ये साथी हैं नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादी अक्सा और हम्माद रामपुर से हमें पत्र भेजे हैं, और मेरठ कैंट से बाबूदीन और इनके सभी साथियों का पत्र हमें मिला है। तो आइए आप सबके नाम करते हैं फिल्म जिगर से ये गीत।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो स्टेशन आकाशवाणी बरेली न्यूज ऑन AIR ऐप और FM 100.4 MHz पर आप हमारा प्रसारण सुन रहे हो और अभी प्रोग्राम चल रहा है अनुरोध गीत। ये जो गाना अब आप सुनेंगे फिल्म का नाम है छोटा सा घर, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजें हैं और इस गीत को आप सबके नाम करते हैं। आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साहब राही मेरा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से हो और भी दोस्तों के पत्र हमें मिले हैं और आप हैं बिट्टू कुमार, राजू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी चांदनी और नंदिनी कुमारी मुजफ्फरपुर बिहार से कमेंट करते हैं और पत्र भी आपके हम शामिल कर रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि कार्यक्रम में आप अधिक से अधिक पत्र हमें भेजें और पत्र भेजने के लिए वैसे तो हमारी पोस्ट पर आपको पता मिल ही गया होगा, अगर नहीं मिला है तो हम बताए देते हैं, आप नोट कर लीजिए। कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन कोड 243001। इस पते पर आप अपने पत्र हमें भेजिए और अनुरोध गीत कार्यक्रम में अपनी सहभागिता बढ़ाइए। यकीन मानिए हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए कुछ और दोस्तों को साथ लेते हैं। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। तो आप सबके नाम छोटा सा घर फिल्म से ये गाना।

भाई कितनों से तो नहीं, मगर आपसे तो यही कहते हैं कि अगर आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो आप अपनी बेबाक राय, बिंदास राय और अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव और खासतौर पर अपनी शिकायतें आप हमें जरूर भेजिएगा, है ना। मुझे इंतजार रहेगा। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपका पत्र मिला कार्यक्रम के लिए आप पत्र लिख सकते हैं और इसके अतिरिक्त आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और आकाशवाणी बरेली की पेज पर आइए और जो पोस्ट रहेगी उसमें आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कार्यक्रम अच्छा लगा या क्या खराबी लगी आपको, जरूर बताइएगा। मुझे इंतजार रहेगा। मगर इंतजार में अब बैठे हैं शीशपाल राजपूत जी भी, क्योंकि उन्हें भी अब आपके साथ वक्त बिताना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का आपका यहां तक का ये सुरीला सफर खूबसूरत गुजरा होगा। जरूर बताइएगा अपने वैल्यूएबल फीडबैक के साथ हमें। फिलहाल अपने रेडियो हम सफर गजेंद्र को दीजिए इजाजत, कीजिए स्वीकार, सप्रेम नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत गजेंद्र सिंह के साथ। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रसरंग। श्रोताओं, कार्यक्रम रसरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रामशंकर की गाई इस गजल के साथ।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, अपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM और सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंग। श्रोताओं, कार्यक्रम रसरंग में आइए अब आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह की गाई ये गजल।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM और सुन रहे हैं कार्यक्रम रस रंग। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये लोकगीत जिसको स्वर दिया है सोनिका अमित कुमार ने।

0: श्रोताओं, महेंद्र कपूर और कविता पौडवाल की गाई इसी कव्वाली के साथ कार्यक्रम रसरंग यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। आइए अब आपको जोड़ते हैं विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार,
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

सदाबहार गीतों की बहार लिए कार्यक्रम के सदाबहार गीतों में हम आज सदाबहार नगमे कार्यक्रम के साथ हम हाजिर हैं। आजाद फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे आप सुन सकते हैं गीतों भरी कहानी में श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी जीवन एक सरल रेखा। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में बारादरी फिल्म का गीत आपने सुना। खुमार बाराबंकवे ने इसे लिखा। शौकत दहलवी नौशाद का संगीत इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत फिल्म उड़न खटोला के इस गीत में।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गीत आपने सुना मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर की तर्ज आवाज गीता दत्त मोहम्मद रफी की। और अगर आपको पुराने गाने सुनते सुनते नए गाने सुनने का मन करता है और नए गाने सुनते सुनते आप पुराने गाने सुनना चाहते हैं तो आपके लिए भी है एक कार्यक्रम हमारे पास। शाम 5:30 पर रोजाना आप सुन सकते हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने, जिनमें पुराने और नए गानों को मिलाकर ही तैयार की जाती है लिस्ट गानों की। तो आप सुनिएगा ये कार्यक्रम आज भी और रोजाना। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये अगला गाना।

0: गोपी नैयर के संगीत से सजा ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा जानिसार अख्तर ने। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपने सुना सीआईडी फिल्म का ये गीत। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कौन सा कार्यक्रम कब आएगा विविध भारती पर, इसके लिए आपको सीआईडी की तरह पड़ताल करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल भी नहीं, आप सुबह और शाम 6:30 से सुन सकते हैं कार्यक्रम विवरण झरोखा के अंतर्गत। सुबह के झरोखा में बताए जाते हैं दिन भर के प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। वहीं शाम के झरोखा में आप सुन सकते हैं शेष कार्यक्रमों के साथ साथ अगले दिन के सभी मुख्य कार्यक्रमों का विवरण भी। और अब हम दे देते हैं आपको विवरण अगले गीत का, जो है बारिश फिल्म से आशा भोसले और सी रामचंद्र की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत।
1: जो सीने में दिल होता तो फिर हम तुम पे क्यों मरते, हाँ?

रोजी है राफेरी, ये किसने सिखा दी, कलकत्ता तुमसे यहाँ खड़ा और बम्बई।

राजा मेहदी खां का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। नाशाद का संगीत, आशा भोसले की आवाज, बड़ा भाई फिल्म का ये गीत आपने सुना। रोजाना शाम को 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सजते हैं अलग अलग कार्यक्रम के रंग, और आज आप सुन सकते हैं गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता इस श्रृंखला के अंतर्गत 7:45 से।

और इस वक्त सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का की तर्ज है। न्यू दिल्ली फिल्म से सुनिए ये गीत।

0: इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा, मुझे दीजिए इजाजत।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: संगीत बन जाते हैं, है ना। अपने परिजनों से दिल की बात साझा करना मानो बंद खिड़की से ताजी हवा का भीतर आना है। और विविध भारती भी अपना एक बड़ा पूरा परिवार है, तो आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद है मैं आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक। और इस चिलचिलाती गर्मी में आपके फोन कॉल्स देंगे हमें सुखद एहसास, तो जल्दी से फोन घुमाइए, देखते हैं कौन सी सखी का पहला फोन आता है। और ये बजी घंटी और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सहेली बात कर रही हैं आप?
1: मैं विनीता पाठक बोल रही हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से। सोनाली जी, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी और अब जाके मेरा नंबर लगा है।
0: बहुत बहुत बधाई। और पहली बार आपका कॉल लगा है?
1: जी जी जी, पहली बार मेरा कॉल लगा है
0: जी। तो विनीता जी बताइए, अपने बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मैं यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ जैसा कि मैंने बताया, और यहाँ पर मैं मिलेट्स से रिलेटेड बेकरी आइटम बनाती हूँ। बेकरी में सभी लोग कुकीज पे तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम डेली रूटीन में काम आने वाली ब्रेड, पाव, पिज्जा बेस, बर्गर, हम ये बना रहे हैं ताकि जो 3,000 बच्चे हैं वो अपने चॉइस का पिज्जा और ये सब खाएं, तो हेल्दी बेस के साथ खाएं, तो हम इस पे काम कर रहे हैं।
0: क्या बात है। मिलेट्स यानी फिर रागी है, ज्वार है, बाजरा है, इनसे बनी बेकरी आइटम्स आप बनाते हैं ना?
1: जी।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को चटपटा खाना पसंद होता है, पर हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि उसमें मैदा होगा या वनस्पति घी होगा तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। पर आप जो इस तरह से मिलेट्स का इस्तेमाल करके बेकरी आइटम बना रहे थे, ये तो बहुत अच्छी बात है। विनीता जी, आज 15 तारीख है, 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि परिवार की क्या अहमियत है आपके जीवन में?
1: परिवार सभी के लिए बहुत अहमियत रखता है। हम आजकल जो छोटी फैमिली हो गई है उसके बहुत सारे लॉसेज हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा बहुत कम एज में डेथ हो गई थी, तो हम भाई बहन एक साथ हो गए और हम बड़े से बड़ी मुसीबत को आसानी से निकाल ले जाते हैं, और कोई छोटा सा भी पर्व हो उसमें हम लोग सब इकट्ठा होकर बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, और हमारे साथ साथ हमारी जो अगली पीढ़ी है, हमारे बच्चे आपस में मिल के मतलब चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, वो वहां तक जा रही है, तो वो लोग भी अब इतना समझ में आने लगा है कि नहीं, फैमिली तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप अकेले पड़ जाओगे। तो हर खुशी के मौके में बहुत ही अच्छा लगता है जब हम सब एक साथ होते हैं।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। और साथ में जो वर्किंग महिलाएं होती हैं, जैसे आप कुछ काम कर रही हैं, तो उस वक्त जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं उस वक्त दादा दादी नाना नानी का उन्हें सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो हम बाहर हैं तो घर में तो कोई है हमारे बच्चों को संभालने के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बहुत निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर मैं काम पे निकल जाती थी, क्योंकि घर में दादा दादी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे देवर हैं, हम लोग सब भी साथ में रहते थे, तो बच्चा कब बड़ा हो गया, कैसे बड़ा हो गया और इतनी अच्छी परवरिश के साथ बड़ा हुआ, तो वो सभी संभव है जबकि हम परिवार के साथ होते हैं। जी
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। विनीता जी बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये 1973 की एक मूवी है, यादों की बारात। हाँ जी, तो ये मुझे गाना बहुत पसंद है, इसे आशा जी और मोहम्मद रफी सर ने गाया है और जीनत अमान और विजय अरोड़ा पे फिल्माया है, तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है, तो अगर ये सुना देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: जी विनीता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

सखियों, भावनाएं जब शब्दों का हाथ थामती हैं, तब रिश्तों में अपनापन खिल उठता है। जब दिल बोलता है, तो शब्द केवल आवाज नहीं, आत्मा

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: बताइए कौन सहेली बात कर रही हैं?
1: जी, मेरा नाम वर्षा धगट है। जी, मैं वैसे तो मुंबई की हूँ, पर अभी फिलहाल छुट्टियों पर जबलपुर आई हुई हूँ, मध्य प्रदेश में।
0: क्या बात है, यानी आप मायके गई हुई हैं।
1: बिल्कुल सही पहचाना आपने, मायके आई हुई हूँ।
0: यानी मायके का लुत्फ उठा रही है माँ के साथ में ना।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अच्छा वर्षा जी, बताइए आपके बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मेरे बारे में बस क्या बताऊं, मैं वैसे एक्ट्रेस हूँ, टीवी टेलीविजन करती हूँ, और हाल ही में मेरी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, और इसके अलावा मैं प्रोफेशनल एंकर भी हूँ, म्यूजिकल शोज होस्ट करती हूँ, और थोड़ी सिंगिंग भी कर लेती हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: थैंक
0: और
1: यू।
0: आज 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं वर्षा जी
1: जी
0: आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि परिवार की आपके जीवन में क्या अहमियत है?
1: ओ, सवाल वाकई बहुत अच्छा सवाल किया सोनाली जी आपने। और परिवार की अहमियत, मेरे ख्याल से परिवार के बिना तो हर कोई अधूरा है, और शादी जैसे ही होती है और हमारी एक अलग दुनिया बस जाती है, और परिवार हमारे ख्याल से हमारे लिए सबसे जरूरी होता है, और परिवार के लिए मेरे ख्याल से हर स्त्री अपना पूरा जीवन दे देती है।
0: चाहे फिर वो ससुराल हो या मायका हो, है ना।
1: बिल्कुल, ससुराल वालों के साथ भी रहते हुए और मायके वालों के साथ भी, वो दोनों ही तरफ बड़े अच्छे से एडजस्ट करती है।
0: और
1: ये हर
0: सचमुच
1: महिला, मेरे ख्याल से भारत की हर महिला का यही किरदार होता है। जी
0: और परिवार का अगर हमें साथ मिलता है ना, तो
1: जी
0: हम यानी हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि हमें डर नहीं होता है कि अरे हमारा क्या होगा, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कोई तो है ना।
1: ये आपने 100% सही बात कही कि जैसे हम अपने लेडीज जो भी कर पाती हैं, जैसे शायद आप ये जॉब कर पा रही हैं, ये भी आपके परिवार की स्वेच्छा से ही आप और उनके मोटिवेशन से ही शायद आप इधर तक पहुंची। एम आई राइट?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, उनके बिना ये कल्पना ही नहीं हो सकती कि उनके सपोर्ट के बिना हम महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत संबल
1: जी
0: मिलता
1: जी
0: है जब परिवार का साथ होता है हमें।
1: बिल्कुल, हर महिला को और खास तौर पर पति का सपोर्ट मिल जाए तो पत्नियां बहुत कुछ कर सकती हैं। जी
0: जी बहुत सही बात आपने कही, और आपकी बात सुनकर बहुत सारे लोग प्रेरित भी होंगे कि अगर हम अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट करेंगे तो हमारी महिलाएं भी, हमारे घर की जो परिवार की महिलाएं हैं, वो बहुत आगे बढ़ेगी।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली जी आपने। जी
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और वर्षा जी बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी पसंद के गीत तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: क्या नाम है सहेली जी आपका?
1: प्रगति मुड़े।
0: प्रगति मुड़े जी। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: नांदेड़ से।
0: नांदेड़ से फोन लगाया। प्रगति जी, आपके बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं घर पे हूँ अभी।
0: हाउसवाइफ हूँ।
1: हाँ।
0: मैं हाउसवाइफ को प्रगति जी हाउस क्वीन कहूंगी, है ना, क्योंकि वे घर परिवार की जिम्मेदारी कितनी खूबसूरती के साथ निभाती हैं। आपके कारण घर के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, काम पे जाते हैं, घर पे आते हैं तो सुकून की सांस लेते हैं कि देखिए कोई तो है घर में हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना।
1: हाँ।
0: और आज है परिवार दिवस, तो प्रगति जी आपके जहन में परिवार की क्या महत्ता है, यानी आपके लिए परिवार का कितना महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का महत्व तो बहुत रहता है, परिवार के बिना तो कुछ नहीं होता।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि परिवार अगर साथ है तो हम महिलाएं हर काम बड़ी आसानी के साथ, खूबसूरती के साथ कर सकते हैं। तो बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: हाँ, मैं काम चोर मूवी का तुझे संग प्रीत लगाई करेगा।
0: बहुत सुंदर गाना है। और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: हाँ।
0: कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
1: मैं तो न्यूज सुनती हूँ, न्यूज चैनल।
0: अरे वाह। और सखी सहेली सुनती है?
1: सखी सहेली सुनती हूँ
0: और हेलो सहेली भी सुनती है?
1: और हेलो सहेली
0: जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। तो चलिए, धन्यवाद।

0: हेलो सहेली। कौन
1: हेलो सहेली,
0: सहेली बात कर रही है?
1: मैं साक्षी खिरवड़कर बोल रही हूँ
0: साक्षी जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: जी। मैंने भोपाल से फोन लगाया है, मध्य प्रदेश
0: साक्षी जी, जरा अपने बारे में बताइए।
1: जी। मैं गृहिणी हूँ, अपना घर संभालती हूँ अच्छे से और बस अपने आप में खुश रहती हूँ, बढ़िया रहती हूँ,
0: क्या बात है, बहुत
1: अपने लिए
0: अच्छी
1: समय
0: बात।
1: निकालती हूँ बहुत अच्छे से।
0: साक्षी जी, आज है परिवार दिवस, 15 मई को हम परिवार दिवस मनाते हैं, तो मैं
1: जी।
0: आपसे जानना चाहूंगी कि परिवार का क्या महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। परिवार है तो हम सुरक्षित रहते हैं, खुश रहते हैं, उनके बिना तो फिर कुछ है ही नहीं, उन्हीं
0: जी
1: के आसपास हमारी पूरी दुनिया घूमती है।
0: जी
1: बहुत महत्व है सभी के लिए। जी
0: सचमुच, यानी परिवार ही हमारे जीवन का आधार है ना।
1: जी
0: और हम महिलाओं को खासकर बहुत संबल मिलता है जब परिवार का सपोर्ट मिलता है ना।
1: जी जी बहुत
0: और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: जी बिल्कुल, शुरू से सुनती हूँ, सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है
0: कौन सा कार्यक्रम आपको पसंद है?
1: मुझे। हेलो सहेली, सखी सहेली, बहुत अच्छा लगता है सुनना।
0: तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ लग जा गले।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है,
1: जी
0: तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: क्या नाम है आपका?
1: अंबिका विजय मारवाड़ी
0: जी। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: शिरपुर से।
0: शिरपुर से फोन लगाया जी।
1: हाँ,
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं मेस चलाती है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके कारण कितने सारे लोग जो हैं उन्हें पेट भर खाना मिलता है ना। जी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। और इसमें मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें आपको बहुत खुशी मिलती है जब कोई आपके?
1: हाँ, खुशी मिलती, खाने को आते जाते वो अच्छा खाना बनाया बोलते सभी, कम ज्यादा हो जाता।
0: और सचमुच जब कोई हमारे खाने की तारीफ करता है ना तो हमारी जो थकान है ना वो छूमंतर हो जाती है ना।
1: खाने की तो अच्छे से अपनी थकान जाती, सब अच्छे बोलते खाने का।
0: हाँ, यानी अगर किसी ने तारीफ कर दी कि अरे कितना अच्छा खाना बनाया तो हम सचमुच खुश हो जाते हैं और हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं इतनी थक गई थी, है ना।
1: मेहनत मेहनत से फल मिलता ऐसा हो जाता।
0: हाँ बिल्कुल, मेहनत का फल तो मीठा होता ही है। और रेडियो सुनती हैं आप?
1: हाँ।
0: कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है आपको?
1: तो हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश।
1: गाने सुनते हो? क्यों रहता रेडियो दिन भर?
0: दिन भर रेडियो चालू रहता है। बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: अनाड़ी पिक्चर, मतलब
0: अनाड़ी फिल्म का कौन सा गीत?
1: फूलों का चेहरा।
0: ओके, अनाड़ी फिल्म का आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो
1: हाँ,
0: सहेली, क्या
1: आलो सायली,
0: नाम है आपका?
1: राजबाई, राजबाई धाकड़, बड़े
0: राजबाई धाकड़। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: गांव से। हाँ,
0: बड़े गांव
1: गुना जिले।
0: जी। तो क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए।
1: अपन घर के काम करती हैं, गेहूं बोते हैं, धना बोते हैं, चना बोते हैं,
0: क्या बात है,
1: खेती बाड़ी काम करे हैं अपन।
0: बहुत अच्छी बात है। जो किसान बड़ी मेहनत से खेती बाड़ी करते हैं, फसल उगाते हैं, तभी तो सारे
1: बहुत
0: लोगों को
1: अच्छा।
0: इतने सारे अनाज मिलते हैं और हम लोग स्वस्थ रहते हैं।
1: तीन बहने हैं, तीन बच्ची है अपने, और दो दो बच्चा है, पांच बहन भाई है।
0: क्या बात है, सचमुच यानी
1: हाँ
0: परिवार के साथ रह के अच्छा लगता है ना।
1: अच्छा लगे। देवर है, देवरानी है, देवर के मोड़ा मोड़ी है।
0: चलिए,
1: और
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें सुन के। और रेडियो सुनती हैं कि नहीं आप?
1: हाँ, रेडियो सुनते हैं,
0: अच्छा लगता है रेडियो सुनना।
1: बहुत अच्छे लगे हैं।
0: और बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आपके पसंद का?
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर लो घड़ी दो घड़ी।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है। और विविध भारती हेलो सहेली कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली, क्या
1: नमस्ते। मेरा
0: नाम है आपका?
1: नाम सुनंदा है। हाँ,
0: सुनंदा जी, कहाँ से फोन लगाया?
1: हम यवतमाल महाराष्ट्र से है। हाँ
0: यवतमाल से फोन लगाया। अपने बारे में
1: हाँ
0: बताइए
1: हाँ
0: सुनंदा जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं तो घर में रहती हूँ मैडम, खाना बनाती।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ
0: घर में रहना यानी बहुत सी आम जो महिलाएं होती है ना, गृहणियां होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हम तो घर में रहते, पर घर में रह के भी बहुत अच्छा काम करती है। आपके बदौलत आपके परिवार के लोग जो है ना, आराम से बाहर जाते हैं, काम करके आते हैं। घर में आने के बाद उन्हें एक सुकून का एहसास होता है कि चलो घर में कोई तो है हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना?
1: हाँ
0: और रेडियो सुनना पसंद है आपको?
1: बहुत बहुत पसंद है हमको।
0: कौन सा कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: सच्ची सहेली है, बहुत सारे कार्यक्रम पसंद है।
0: अच्छा, और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम वो आपके ऐसे नाते का गीत सुनना चाहते हैं मैडम। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
0: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: अपना नाम बताइए।
1: हाँ, लक्ष्मी विलास भोले, खामगांव
0: जी कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: से।
0: खामगांव से लगाया, खामगांव महाराष्ट्र से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: कुछ नहीं करती, घर घर का काम खाली।
0: घर का काम करती हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आप कहती हैं कुछ नहीं करती, ये सब कुछ करती हैं आप। आपकी बदौलत ही
1: हाँ
0: जो ना घर वाले खुश रहते हैं ना, कि

0: खुश है कि चलो कोई तो है घर संभालने वाला, ताकि हम जब बाहर से घर आए तो हमें कितना अच्छा लगता है, घर साफ सुथरा होता है, खाना बना होता है ना, सारे काम किए होते हैं। तो हमें, हम गृहिणियों को खुश रहना चाहिए या कहना चाहिए कि हाँ हम हाउस क्वीन है घर की, है ना। और खुद के लिए जीती हैं आप कभी, खुद की खुशी का काम करती हैं आप, यानी खुद के लिए जब ऐसा होता है ना कभी कभी कि अरे हमारी पसंद का काम हम कर ही नहीं पाते, तो आप करती हैं अपनी पसंद का कोई काम?
1: नहीं, वो तो टाइम नहीं मिलता, ऐसे ही दिन में बच्चे का करते करते टाइम हो जाता है।
0: टाइम निकालना जरूरी है।
1: खेत है, हमारा खेत में जाना पड़ता।
0: खेत में जाना पड़ता है, वो सब ठीक है, पर आप अपने लिए वक्त निकालिए। आपको जो काम अच्छा लगता है, जैसे कि अपनी पसंद का खाना बनाना या फिर गाना सुनना, तो चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम आपके कौन, मतलब माई माई गाना है।
0: हम आपके हैं कौन फिल्म का, माए ने माए मुंडेर पे तेरी, बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: मुखर्जी वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद छाटुई से बोल रहे हैं।
1: क्या बात है, बताइए रेखा जी अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं जिंदगी में?
0: हम हाउसवाइफ हैं और रेडियो का गाना सुनते हैं, प्रोग्राम जितना होता है सुनते हैं, जो हेलो साहिल है वो भी सुनते हैं, लाइव फोन में सुबह सकाल में फोन में बात करते हैं रेडियो में। आकाशवाणी मुर्शिदाबाद में हम मैसेज भेजते हैं, गीतांजलि में लिखा भेजते हैं, शांति निकेतन में भी भेजते हैं और मुर्शिदाबाद में भी लिखा भेजते हैं। हम पोएम लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं और घर का काम लपेट लेते हैं, गान सुनते हैं रेडियो का, साथ जुड़े रहता है।
1: जी बहुत अच्छा लगा कि आप रेडियो भी सुनती हैं, कविताएं भी लिखती हैं और फिर
0: हाँ
1: घर में भी रहती हैं, पूरी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
0: हाँ हम चाहे सिलाई सिलाई उलाई भी करते हैं
1: क्या बात है, आप ऑलराउंडर
0: मशीन से।
1: हैं, है
0: हाँ
1: ना?
0: हम अकेले सब सीमेंट लेते हैं।
1: ये बात बहुत अच्छी बात है। बस मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी रेखा जी, कि
0: हाँ कही
1: खुद के लिए आप जीते हैं क्या? ऐसे कुछ पल होते हैं जब हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, यानी कि सारे काम निपटाने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि ये पल सिर्फ मेरे लिए है, ये 1 घंटा मैं मेरे लिए जीना चाहती हूँ, तो ऐसा कुछ करती हैं आप?
0: हाँ करते हैं, 1 घंटे के लिए हम सिलाई उलाई करते हैं
1: और उसमें आपको
0: और
1: खुशी
0: जब
1: मिलती है?
0: खुशी मिलते हैं। हाँ अपना हाथ से सिलाई करने के बाद हमको खुशी मिलता है।
1: बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम महिलाएं खुश रहती है ना, तो परिवार भी
0: हाँ
1: खुश रहता है और पूरा परिवार खिला खिला सा रहता है, सभी लोग स्वस्थ
0: हाँ
1: जीवन
0: हाँ
1: जीते हैं।
0: हाँ जी
1: तो बस खुश रहिए,
0: हाँ
1: मुस्कुराते रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। और
0: हाँ
1: आप
0: भी सुनते हैं जी,
1: जी, और आपने पसंद कर,
0: 2 महीना से छटपटाया रहे थे। हाँ जी कब 2 महीना पूरा होगा।
1: अच्छा चलो बहुत खुशी की बात है। और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
0: सत्यम शिवम सुंदरम,
1: सत्यम शिवम सुंदरम,
0: जसमती मैया तेरे बोले नंद लाला।
1: सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, क्या
1: हेलो सहेली दीदी, मैं सातारा महाराष्ट्र से बोल रही हूँ।
0: नाम है आपका?
1: मेरा उषा नाइक नाम है दीदी।
0: उषा नाइक सातारा से बात कर रही है जी। बताइए
1: हाँ,
0: अपने बारे में बताइए।
1: सातारा ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक किला है, अजिंक्य तारा है, प्रतापगढ़ है, ताज तालाब है, महाबलेश्वर है जी,
0: जी, सातारा घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है।
1: बहुत ही अच्छा जगह है, नटराज
0: जी।
1: मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। आप आइए, कभी शूटिंग भी होती है इधर।
0: जी, हम जरूर आएंगे। आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं जिंदगी में?
1: दीदी मैम, तो मैं जॉब में हूँ, मैं साड़ी सेंटर में हूँ, सिटी साड़ी सेंटर में हूँ, मैं जॉब करती हूँ। मैंने आज छुट्टी लिए, खास आपके लिए फोन करने के लिए।
0: क्या बात है, क्या बात है। और बहुत खुश होंगी
1: हाँ,
0: ना आज
1: बहुत
0: कि फोन लग गया है।
1: ही खुश हूँ, मेरा फोन लग गया।

0: मैं इसके वास्ते आज रूम में घर रही हूँ। चार
1: क्या
0: महीने बाद मेरा फोन लगा है।
1: क्या बात है, बहुत
0: मैं
1: अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई हमें। और आपसे एक सवाल है कि आप नौकरी भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, तो आप खुद के
0: जी।
1: लिए जीती हैं क्या? अगर खुद के लिए जीती हैं तो आपकी पसंदीदा कौन सा काम है जो आपको करने से आपको बहुत खुशी मिलती है?
0: जी मेरा 57 एज है दीदी,
1: अच्छा।
0: 57। मैं घर में नहीं रहती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ घर में। मेरा बेटा है, बहू है, जमाई है, सब अपने अपने संसार में व्यस्त है। फिर घर में क्या करने का, इसी वास्ते मैं 10 साल से मैं सेल्समैन का काम करती हूँ साड़ी
1: क्या बात है।
0: सेंटर में। हाँ, सिटी साड़ी सेंटर में।
1: यानी आप व्यस्त और
0: हाँ
1: स्वस्थ रहती है, यानी आपका ये मानना है कि जब हम व्यस्त रहते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं, है ना?
0: हाँ और मेरा यही है कि मेरा सभी गाना सुनने में बहुत ही मेरा दिल पे है। मेरा पूरा दिन आनंद आनंद में ही जाता है, 11:30 बजे तक। हाँ, गाना ही सुनती हूँ मैं रेडियो का।
1: क्या बात है, रेडियो सुनना अपने आप में बहुत खुशी देता है ना, हम खुश हो जाते हैं
0: हाँ,
1: प्यारे प्यारे गीत सुन के।
0: बहुत ही खुश। और मैं टीवी भी नहीं देखती हूँ, और मेरा छोटा सा नोकियो का फोन है, बड़ा भी एंड्रॉइड नहीं है, मेरा छोटा ही है।
1: क्या
0: उससे
1: बात
0: काम
1: है,
0: मेरा चल जाता हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ।
1: ये बात है। नहीं तो देखिए, लोग हमेशा परेशान रहते हैं जिंदगी में कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पर सचमुच
0: नहीं
1: आपसे सीखने लायक बात है कि छोटा सा फोन है फिर भी आप रेडियो सुन के खुश रहती है, तो खुश
0: सुनती
1: रहना बहुत जरूरी है ना।
0: जरूरी है, बराबर है दीदी।
1: जी बताइए, कौन सा गीत आप आज सुनना चाहती हैं?
0: बहुत ही धूप है बाहर, धूप में निकला ना करो रूपों की रानी।
1: बहुत प्यारा गीत आपने चुना है, ये गाना आप गुनगुना के सुना सकती हैं?
0: धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोला रंग का।

0: को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस तरह है 4002466 2, यानी 4002. दूसरा नंबर है 2867028 2867028. और मुंबई का STD कोड है 022, यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिले हमसे जुड़ने का। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल न लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारी सखियों के फोन लग नहीं पाते। तो सखियों, हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं समृद्धि नाइक, संपादन योगिता जाधव का, हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार से जुड़े रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 4 बजे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने। साथियों, आपको बता दें, ये कार्यक्रम है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने। और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे विमल वर्मा जी के विचार।
1: मैं विमल वर्मा, मोहल्ला दुर्गा प्रसाद, ईश्वरपुर, जिला पीलीभीत से आकाशवाणी परिवार के 90 वर्ष पूर्ण होने पर सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है, नित नई जानकारियां प्राप्त होती हैं। यूं तो आकाशवाणी के कई केंद्र भारतवर्ष में मौजूद हैं, लेकिन जो बात आकाशवाणी बरेली में है वह किसी अन्य केंद्र में नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम उम्दा और लाजवाब किस्म के होते हैं। अगर मैं आकाशवाणी से अपने लगाव या जुड़ाव की बात करूं, तो मैं लगभग सन 2008 से जुड़ा हुआ हूं, और आकाशवाणी बरेली से जो मुझे प्यार मिला वो बहुत ही मेरे लिए सुखद पल के बराबर है। आकाशवाणी बरेली का जो प्रातः की सभा में कार्यक्रम आता है भक्ति संगीत, उससे हमें अपने अंदर ऊर्जा महसूस होती है। इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों की बात करें तो युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवाणी पेश किया जाता है, जिसमें युवाओं को अपने करियर संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम अंकुर, जो बच्चों के लिए बेहद मनोरंजन से भरपूर होता है, साथ ही साथ कहानियाँ, चुटकुले आदि भी इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को सुनने को मिलते हैं। और हमारी माँ बहनों के लिए, माताओं के लिए, या यूं कहें गृहणियों के लिए जो कार्यक्रम नारी संसार पेश किया जाता है वो एकदम लाजवाब होता है, क्योंकि घर में रहने के कारण हमारी महिलाएं हैं या बहनें हैं, अपना घरेलू काम भी करती हैं और साथ ही साथ उनका स्वस्थ मनोरंजन भी होता रहता है। स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद अच्छा रहता है। इसमें हमें अपने स्वास्थ्य के रख रखाव से संबंधित जानकारियां प्राप्त होती हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है।

0: जो आज के समय में हमें स्वस्थ मनोरंजन भी दे रहा है, साथ ही साथ हमें बहुत कुछ सीखने को भी दे रहा है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, आकाशवाणी परिवार से हमें हमेशा प्यार और स्नेह मिलता रहे, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना विमल वर्मा जी के विचार को, कार्यक्रम था आकाशवाणी के दीवाने। साथियों, आपको एक बार फिर से बता दें, ये कार्यक्रम हम प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर।
2: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें, हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए, airbareli@cbs.gmail.com।
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या की 4:05 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस विषय पर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं वो है, आपकी कौन सी आदत है जो आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूटती नहीं। इस विषय पर आपसे बात करेंगे फोन पर और जानेंगे आपके विचार। जी, हमारे कौन से श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं?
3: जिला बरेली थाना मीरगंज ग्राम रसूपुर इमामबाड़ी के पास से अल्ताफ हुसैन अंसारी बात कर रहा हूँ।
1: जी अल्ताफ हुसैन अंसारी जी, कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत स्वागत है। और ये बताइए अल्ताफ हुसैन अंसारी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी ऐसी कौन सी आदत है जो आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूटती नहीं?
3: आदत ये है खासतौर से, जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ
1: जी,
3: और पढ़ाई करने के बाद करीब मुझे 25 हो गए छोड़ने का, पर वो मैं भुलाना चाहता हूँ कि मैं छोड़ दूँ, अब याद ना करूँ, मगर वो आदत मेरी छोटी नहीं, हमेशा कोई ना कोई किताब उठाकर मैं देखता रहता हूँ।
1: नहीं तो ये तो आपकी बहुत अच्छी आदत है, पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है और हम तो ये कहेंगे कि हर किसी को पढ़ना चाहिए, तो ये आदत आप छोड़ना क्यों चाहते हैं? ये तो बहुत अच्छी आदत है।
3: क्योंकि ऐसा मजबूर हूँ, मैं लाचार हूँ, किताबें मुझसे होती नहीं।
1: अच्छा जी, खैर
3: इसीलिए मैं वो आदत छोड़ना चाहता हूँ कि दूसरे का सहारा नहीं लेना चाहता, पर क्या करूँ, मेरी आदत ऐसी है।
1: अच्छा,
3: छोड़ने के बावजूद भी वो मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है और मुझे छोड़ने नहीं देती।
1: जी बहुत अच्छी बात है अल्ताफ हुसैन जी, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जैसे भी हो इस आदत को बनाए रखिए, ये आदत छोड़ने की नहीं है, ये तो बहुत काम की आदत है और ये आदत सभी को होनी चाहिए पढ़ने की, है ना। और आज आपका फोन कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में लगाए, तो बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए आज?
3: मैं आज एक मूवी है ऐसा प्यार कहां, चल मुसाफिर चल सरहद के उस पार तेरी मंजिल।
1: ठीक है अल्ताफ हुसैन जी, हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं?
1: सर, मैं आपके नियमित श्रोता जिला शाहजहानपुर से दीक्षा पाठक बात कर रही हूँ।
0: दीक्षा पाठक जी, कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में बहुत स्वागत है। और दीक्षा जी, आज का जो विषय है वो है आपकी कौन सी आदत है जो आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूटती नहीं, तो बताइए ऐसी कौन सी आदत है आपकी जो आप छोड़ना चाहती हैं?
1: जी सर, मैं तो यही कहना चाहती हूँ सर, मैं मोबाइल ज्यादा चलाती हूँ
0: अच्छा,
1: जी, तो मैं बहुत बहुत सोचती हूँ कि छोड़ दूँ वो सर, आदत हमारी छूटती ही नहीं है।
0: अच्छा हाँ, तो ये है कि मोबाइल चलाना अपने आप में अच्छी बात है, बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, है ना, लेकिन जब यही एक आदत बन जाए कि हर समय बहुत ज़्यादा समय आपका मोबाइल पर बीतने लगे, तब ये परेशानी का कारण भी बन सकता है। तो ये आदत है आपकी जिसको आप छोड़ना चाहती हैं, अपना एक टाइम टेबल बना लेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हमें किस समय से किस समय तक मोबाइल चलाना है, तो आपको आसानी होगी इस आदत को छोड़ने में। और दीक्षा जी, आपने हमें फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए आज?
1: सर, मैं गीत सुनूंगी आपका सुरूर फिल्म का, गाने के बोले झूठ नहीं बोलना, हिमेश रेशमिया साहब की आवाज।
0: ठीक है दीक्षा जी, हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता हमारे साथ लाइन पर हैं, अपना नाम बताइए।
1: मैं ग्राम बड़ावा हूँ, जिला गुना प्रदेश से मांगीलाल धाकड़ बोल रहा हूँ।
0: मांगीलाल धाकड़ जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। और धाकड़ जी, हम जानना चाहते हैं कि आपकी कौन सी आदत है जो आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूटती नहीं।
1: सर जी, जो ये नशा पत्ती वाली बात है, ज्यादा सुपारी है अपन, मतलब ये उपयोग में लेते हैं,
0: जी
1: इसे छोड़ना चाहते हैं जी। नशा है ये ज्यादा सुपारी तमाम।
0: अच्छा, जर्दा सुपारी, ये तंबाकू वगैरह का सेवन आप करते हैं, इसको छोड़ना चाहते हैं और ये छूटते हैं, क्यों नहीं छूटती मांगीलाल जी?
1: जी सर जी, जो ऐसी रफ्तार पड़ी है 2-3 साल से, खाने को तो मन करता है
0: जी, अच्छा
1: जी, अपन मतलब छोड़ना चाहते हैं, जब भी नहीं
0: जी,
1: छूटती है,
0: लेकिन
1: क्या
0: ये
1: बात
0: छोड़ना
1: है।
0: बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है ना?
1: जी जी सर जी,
0: तो कोशिश
1: हानिकारक
0: करिए
1: भी है,
0: कि
1: सारा
0: जितने
1: ही
0: आप
1: खिलाफ है।
0: जितनी मात्रा में सेवन करते हैं उसकी मात्रा को कम करते जाइए थोड़े थोड़े समय अंतराल पे। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी आदत छूट सकती है ना? और
1: हाँ
0: थोड़ी
1: जी
0: अपनी
1: सर
0: विल
1: जी,
0: पावर, अपनी इच्छा शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि हमें ये चीज़ छोड़नी है। तो ऐसा कोई काम नहीं है कि जो आप ठान लें और वो पूरा ना कर पाएं, है ना?
1: जी
0: तो आपको इस
1: जी
0: आदत को छुड़ाना आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और ये बताइए, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: सूर्या पिक्चर का सुनवा लेना,
0: कौन सा गीत?
1: मैंने तुमसे प्यार किया है, इसमें मेरी खता तो नहीं।
0: ठीक है, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत स्वागत है। हमारे कौन से श्रोता हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए।
1: जी सर, मैं जिला बताने पशुपत आसाराम से मोहम्मद आशिक बात कर रहा हूँ।
0: आशिक जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। और आशिक जी, जैसा कि सभी जानते हैं कि हर किसी व्यक्ति की कोई ना कोई आदत होती है, कुछ आदतें अच्छी होती हैं, कुछ आदतें बुरी भी होती हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी ऐसी कौन सी आदत है जो आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूटती नहीं।
1: सर, हमारी एक आदत ऐसी है जो हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो छूटती नहीं है।
0: बताइए।
1: मतलब हम जब भी कभी आते हैं घर पे तो हम बहुत जल्दी सो जाते हैं और हमें ये आदत हमें बहुत बुरी लगती है।
0: अच्छा, तो सोना तो स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा देर तक अगर सो रहे हैं तो चिंता का विषय हो सकता है। तो ये आदत आपको कब से लगी हुई है?
1: ये आदत जब से लगी हुई है, एक बार मतलब जब भी हम कभी मेहनत कर लेते हैं तब से हमें ये आदत लगी हुई है। एक बार हमने बहुत मेहनत की थी तो उसी समय से हमें ये आदत लगी हुई है।
0: तो मेहनत के बाद तो नींद अच्छी आती है, और ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आप हमें ये बताइए, आप कितनी देर तक सोते रहते हैं?
1: कभी जब कभी भी आते हैं तब हम सो ही जाते हैं, लेटते लेटते ही सो जाते हैं। जब कभी भी आते हैं, चाहे वो मतलब सोने का टाइम हो या ना हो, फिर भी सो जाते हैं।
0: अच्छा, तो कितने घंटे सोते हैं आप?
1: रात में तो ऐसे सोते हैं 11 से 4 बजे तक।
0: अच्छा, 11 से 4 बजे तक सोते। तो ये तो आदत अच्छी है, और सोना जो है मतलब शरीर के लिए बहुत जरूरी है। और आप, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको आते ही या बिस्तर पे लेटते ही नींद आ जाती है। और 11 से 4 बजे तक बहुत ऐसा समय भी नहीं है कि बहुत देर तक सो रहे हो आप। तो ये तो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है, तो इसको क्यों छोड़ना
1: एक
0: चाहते
1: आदत
0: हैं?
1: और एक मतलब एक सोने की आदत और है, क्योंकि अगर हम कभी भी आते हैं, जैसे हमारे उसमें एक सोने का टाइम ऐसा नहीं है कि सो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: जब
0: मतलब
1: हम
0: कभी भी आप बाहर
1: जाते
0: से
1: हैं।
0: घर आते हैं तो आपको तुरंत नींद आ जाती है?
1: जी।
0: अच्छा, और कहीं जाते हैं तब भी ऐसा होता है क्या? कहीं बाहर, मान लीजिए आप अपनी रिश्तेदारी में गए, कहीं किसी जगह पे गए, तब
1: जैसे
0: भी?
1: कि हम कभी रिश्तेदारी में गए या कभी गाड़ी सवारी में गए, अगर हवा लगी तो हम फौरन सो जाते हैं।
0: अच्छा, मतलब कहीं आप सफर कर रहे हैं, किसी सवारी में जा रहे हैं, तो जरा सी हवा लगने पे ही आपको नींद आ जाती है?
1: जी।
0: जी हाँ, तो ये सही बात है। इसको कई बार ऐसे है कि परेशानी हो सकती है कि मान लीजिए आप जा रहे हैं कहीं सफर में, आप सो गए, ट्रेन में जा रहे हैं, आपका स्टेशन निकल गया, तब ये चिंता का विषय हो सकता है। और वैसे तो सोना शरीर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आदत हमको छोड़नी है या इसको

0: कम करना है कैसे भी, तो आप कोशिश करिए थोड़ा सा, और किसी चिकित्सक से भी परामर्श ले सकते हैं अगर ज़्यादा समस्या है तो, है ना। तो आपसे
1: जी
0: बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और बताइए आशिक जी, आज कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए?
1: मेरे लिए आज एक कव्वाली सुनवाया जाए, उसका नाम है भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली।
0: ठीक है आशिक जी, हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद की ये कव्वाली।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए, हमारे कौन से श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं?
1: मैं सना खान बोल रही हूँ रामपुर से।
0: सना खान जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। कुछ बताइए अपने बारे में, क्या करती हैं आप?
1: मैं अभी तो पढ़ाई करती हूँ।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है, पढ़िए, पढ़ना बहुत जरूरी है और आगे बढ़िए। सना खान जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे हर किसी की कोई ना कोई आदत होती है, बहुत सारी आदतें आपकी भी होंगी, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी भी हो सकती हैं, है ना? तो आपकी ऐसी कौन सी आदत है जो आपको लगता है कि आप छोड़ना चाहती हैं लेकिन छूटती नहीं, उस आदत के बारे में बताइए आज।
1: मेरी बुरी आदत बस यही है कि मैं सोन जाती हूँ, बस छूटती नहीं। मेरी बिग सिस्टर है, मेरी बड़ी, मुझसे बड़ी सिस्टर है, मैं उनसे लड़ती रहती हूँ बस समय।
0: जी, तो ये
1: नहीं,
0: आपके मतलब आदतन आप मतलब लड़ जाती हैं बिना किसी बात के?
1: कोई बात होती है तो लड़ जाती हूँ, लेकिन वो मुझे समझाती, फिर मेरी समझ में आती है, फिर मैं उनके पास जाती हूँ, अपनी सॉरी कुछ गलती से हो गई, फिर वो
0: अच्छा
1: मान जाती है।
0: अच्छा तो मतलब कहने का मतलब ये है, आपको एकदम से किसी बात पे गुस्सा आ जाता है ना? अच्छा,
1: जी जी
0: तो इस आदत को आप छोड़ना चाहती हैं और ये छूट नहीं रही है।
1: जी जी इसमें मजा भी आता है दोनों।

0: बहुत मजेदार आदत है आपकी, और लेकिन यह है कि बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाएगी तो समस्या हो सकती है, तो इसलिए आप छोड़ना चाहती हैं ना। तो
1: जी
0: थोड़ी नोकझोंक तो चलती है, लेकिन ये इस आदत को आप समय के साथ छूट जाएगी, ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगी तो ये आदत समय के साथ छूट जाएगी, बहुत अच्छी बात है। और
1: खुद ही कंट्रोल करती हूँ कि इससे ज्यादा आगे लड़ाई ना बढ़े, क्योंकि मेरी सिस्टर बहुत प्यारी है, वो ज्यादा लड़ाई को आगे बढ़ने ही नहीं देती है।
0: हाँ, वो समझदार हैं बहुत ज्यादा, और बहुत अच्छी बात है ना। लड़ाई ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, एक लेवल तक नोकझोंक थोड़ी चलती है, सब में होता है, भाई बहनों में होता है, उस वो प्यार में भी होता है, कई बार हम जिससे ज्यादा प्यार करते हैं तो उससे थोड़ी नोकझोंक चलती रहती है ना। तो सना खान
1: जी,
0: जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये बताइए आज कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए।
1: मैं सीता मूवी का सुनना चाहूंगी, इश्क है तो इश्क का इजहार कर।
0: ठीक है सना खान जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए, हमारे कौन से श्रोता हमारे साथ हैं?
1: मैं रिफा बात कर रही हूँ शाहजहांपुर से।
0: रिफा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहते हैं कि रिफा जी, अपनी ऐसी आदत के बारे में बताइए जो आप छोड़ना चाहती हैं, लेकिन वो आपकी आदत छूट नहीं रही है।
1: मैं स्कूल जाती हूँ, पढ़ाई करती हूँ और इंस्टाग्राम चलाती हूँ, सोशल मीडिया, इसलिए मुझे ये आदत, मेरे नुकसान होता है मेरे पढ़ाई में, इसलिए मैं इसे छोड़ना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल, कि आप जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे, मोबाइल का उपयोग करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके समय का, आपके पढ़ाई का नुकसान होगा।
1: जी,
0: ये अच्छी बात है कि आप इस विषय में सोच रही हैं, और इस आदत को छोड़ना भी जरूरी है पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए, है ना? तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करिए, आप अपना टाइम टेबल बनाइए और उसके हिसाब से अपना पढ़ाई करिए, और मोबाइल चलाने का भी अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए कि हमें इस समय से इस समय तक चलाना है, या सोशल मीडिया का उपयोग किस समय से किस समय तक करना है। तो आपका जो है समय एक सीमित हो जाएगा, तो आपकी आदत छोड़ने में आपको मदद मिलेगी।
1: तो पढ़ाई में भी दिल लगेगा।
0: हाँ, तो ऐसा करके आप इस आदत को आप छोड़ सकती हैं। और बताइए, आज आपका फोन कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में लगा है, तो कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए?
1: जी, मैं बेवफा मूवी की गजल सुनना चाहूंगी, याद बस याद रह जाती है।
0: ठीक है रिफा जी, आपको सुनवा रहे हैं आपके पसंद की ये गजल।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 एफएम और सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। साथियों, आपने ये फोन लाइन पर हमारे श्रोताओं के विचार सुने और अब बारी है उन श्रोताओं की जिन्होंने हमारे फेसबुक पेज पर अपने विचार लिख भेजे हैं हमको।

विषय पर। यह हमारे श्रोता हैं अंकुश अरोड़ा जी, लिखते हैं कि चाय हम बहुत ही ज्यादा पीते हैं, सुबह हो या शाम, गर्मी हो या सर्दी, हर समय चाय पीने की तलब रहती है। चाय पीना हम कम करना चाहते हैं, कम तो क्या होनी है और ज्यादा ही हो जाती है। बिल्कुल, कोई भी चीज जो है आवश्यकता से अधिक जो है नुकसान देती है उसको छोड़ना बहुत आवश्यक है। और हमारे एक और साथी हैं भैरूलाल वाकतरिया धाकड़ जी, उन्हें जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से लिखते हैं, आदतें तो सबको होती हैं किसी न किसी की, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, बुरी आदतें तो हमको छोड़नी ज़रूरी है, पर अच्छी आदतें हम कायम रखना चाहते हैं। जैसे लिखते हैं कि जैसे मेरी आदत रेडियो सुनने की है और इस आदत को मैं कभी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप इस आदत को कभी मत छोड़िए और बने रहिए हमारे साथ 100.4 आकाशवाणी बरेली के साथ। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, सुबह देर तक सोने की, देर से ब्रश करने की और देर से नहाने की आदत को मैं छोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल, ज़्यादा देर तक सोना भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता, इन आदतों को आप जल्द से जल्द छोड़ेंगे तो आपके लिए जरूर फायदेमंद होगी। तिगड़ी कस्बा शीशगढ़ से हमारे श्रोता शाहरुख खान, हाशिम रहम बाबू, आप लोग लिखते हैं कि सच बोलना और लोगों की मदद करना, दूसरे के गम में शरीक होना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इस आदत को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आदत है आपकी, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, इसको इस आदत को कभी ना छोड़िए। और अपने काम टाइम पर करना, किसी को इंतजार करवाना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, अपने टाइम पर काम करना अच्छा लगता है और किसी को इंतजार करवाना अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल, सुबह नाश्ते में देसी घी, लगे हुए ब्रेड और एक कप कड़क चाय के साथ मुझे बहुत पसंद है, वो भी मम्मी के साथ में। बिल्कुल, ये तो बहुत प्यारी आदत है भाई, आप चाय के साथ लीजिए ब्रेड और देसी घी लगा के मम्मी के साथ, इस आदत को बनाए रखिए, ये आपकी बहुत प्यारी आदतें हैं। और हमारे एक और श्रोता हैं सादुल शहर राजस्थान से, राम कुमार रेवाड़ जी लिखते हैं, आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम पेशकर्ता को सादर नमस्कार। नमस्कार रेवाड़ जी, लिखते हैं गर्मी के मौसम में दोपहर को खाना खाने के बाद सोने की आदत है जो मैं छोड़ना चाहता हूँ और छूटती नहीं। दूसरी आदत है आपकी सच बोलने की आदत, किसी की झूठी तारीफ करनी नहीं आती जिससे मैं उनकी नज़रों में बुरा बन जाता हूँ, इसे मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छूटती नहीं आदत। नहीं, इस आदत को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सच बोलने की आदत बहुत अच्छी होती है, आप सच बोलिए, इससे किसी को परेशानी नहीं होगी। और आप हैं हमारे श्रोता लाल मोहम्मद अंसारी जी, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से, लिखते हैं कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब। आदाब लाल मोहम्मद जी, आगे लिख रहे हैं, हमें ये सब बहुत अच्छा लगता है, रोज ही हम इस कार्यक्रम को सुनते हैं। आज जो विषय है, आपकी कौन सी आदत जिसको आप छोड़ना चाहते हैं मगर छूटती नहीं? हम रोज दोपहर को खाना खाने के बाद सोने की आदत है जिसको हम छोड़ना चाहते हैं मगर छूटती नहीं। देखिए लाल मोहम्मद जी, खाना खाने के बाद नींद तो आती ही है, तो ये आदत ही क्या कहिए, ये सभी के साथ होता है, थोड़ा बहुत देर अगर आप सो भी लेते हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी लिखते हैं कि मेरी आदत है घंटों की उपासना करना, योग ध्यान करना, कई बार मन की इच्छा पूरी ना होने पर इस आदत को छोड़ने का मन करता है, परंतु चाहकर भी मैं इस आदत को नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये आदत मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी आदत है, उपासना करना, योग करना, ये आपके शरीर के लिए भी मन के लिए भी बहुत अच्छी आदत है, इस आदत को आप बनाए रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार जो आप चाहते हैं आपकी इच्छा जो है पूरी हो, कुछ इच्छाएँ पूरी नहीं भी होती हैं, तो ऐसा विचार मन में मत लाइए, आदत अपनी बनाए रखिए। ये हमारे श्रोता हैं माधुरी कश्यप जी, लिखते हैं बुरी आदतें जीवन को बर्बाद कर देती हैं, दीमक की तरह खोखला कर देती हैं और इनको जितनी जल्दी हो सके छोड़ देने चाहिए। मैंने अपनी बहुत सी बुरी आदतों का गुरु कृपा से त्याग कर दिया है, अब लोगों को मुझमें कुछ बुरा दिखता हो तो सबके अनुसार तो हम खुद को बना नहीं सकते। बिल्कुल, किसी के हिसाब से किसी के अनुसार हम नहीं चल सकते हैं, और लेकिन आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे इतनी कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए। बहुत सुंदर बात आपने लिख भेजी है कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, इस चीज़ का ध्यान हम सभी को रखना चाहिए। और आगे लिखते हैं कि इसीलिए मुझे वैसे कोई आदत बुरी नहीं लगती मुझमें, वैसे नियम की बहुत पक्की हूँ, क्या बात है, लेकिन कभी कभी मैं मशक्कत से कोई नियम का पालन कर रही होती हूँ, फिर अगर किसी भी वजह से वो नियम टूट जाए तो दोबारा उस नियम का पालन करने में बहुत समय लग जाता है, फिर चाहे वो जल्दी सोना हो या जल्दी उठना या
फिर काम को कल पर टाल देना, बस इन्हीं पर कंट्रोल करना चाहती हूँ, प्रभु कृपा से कर रही हूँ। सभी को बुरी आदतों का जल्दी से जल्दी त्याग कर देना चाहिए और अपने जीवन की

को सुंदर बनाना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात लिखी है माधुरी जी कि बुरी आदतें हम सभी को जल्द से जल्द छोड़ ही देनी चाहिए और अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। अगर कोई बुरी आदत है हमारे साथ तो धीरे धीरे करके ही उसको छोड़ने की पूरी कोशिश करते रहना चाहिए, और अच्छी आदतों को अपनाएंगे तो बुरी आदतें कई बार अपने आप छूटने लगती हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग कार्यक्रम से जुड़े, और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये भजन।

श्रोताओं, इसी वचन के साथ कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बज चुके हैं। आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित बरेली होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की।

लकी थ्री श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 5:30 पर। 5:45 का समय रहेगा सामयिक वार्ता का, जिसमें आज का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विविध आयाम। वार्ताकार होंगी डॉक्टर रूबी शर्मा। हमारे युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युवाणी प्रसारित किया जाएगा 6:00, जिसमें होगा आज चर्चा इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज पर और नजराना शाम। कार्यक्रम ग्राम जगत लेकर आएंगे हरिद्वारी लाल वर्मा 6:30 पर, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा संतुलित आहार। इसके साथ ही सुनवाएंगे क्षेत्र संकलित कार्यक्रम कृषि पाठशाला, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 7:00, जिसमें भेंट वार्ता होगी डॉक्टर शुभम गंगवार से। विषय है गर्मी के मौसम में बिना कोल्ड स्टोर के फसल बचाएं, देशी और वैज्ञानिक व्यवस्था। कार्यक्रम अनुरोध गीत का समय रहेगा 7:31 का।

श्रोताओं, ये थे हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रम। आइए एक नजर डालते हैं कल की सभा में प्रसारित व रिले होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल प्रातः 8:15 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम नमस्ते बरेली। लोकगीत आप सुन सकेंगे 8:45 पर। कल प्रातः 9:00 आपको जोड़ेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है आप सुन सकेंगे कल प्रातः 9:30 पर। आपकी पसंद सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी गीतों का यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा कल प्रातः 10:05 पर। 11:00 का समय रहेगा कार्यक्रम सबरंग का। 11:30 पर आपको सुनवाएंगे लोकगीत। 11:00 ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे कल दोपहर 1:00 से। कार्यक्रम जनमंच प्रसारित किया जाएगा कल दोपहर 2:00, जिसमें विषय रहेगा उच्च शिक्षा में युवाओं की भूमिका और चुनौतियां। प्रतिभागी होंगे आदर्श कुमार और काजल गंगवार।

आपकी बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल शाम 4:05 पर। भजन संध्या आपको सुनवाएंगे कल शाम 5:05 पर। कल शाम 5:30 का समय रहेगा कार्यक्रम हेलो बरेली का। युववाणी, हमारे युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी प्रसारित किया जाएगा कल शाम 6:00, जिसमें चर्चा हुई इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट पर। हमारे किसान साथियों का मनपसंद कार्यक्रम किसानवाणी प्रसारित किया जाएगा कल शाम 6:30 पर, जिसमें चर्चा की जाएगी एकीकृत कृषि प्रणाली पर। इसके साथ ही सुनवाएंगे आपको आकाशवाणी गांव में किसान के साथ। ग्राम जगत, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल शाम 7:00, जिसमें चर्चा का विषय रहेगा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर। इसके साथ ही होगा क्षेत्र संकलित कार्यक्रम। कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन का समय रहेगा कल शाम 7:31 का, जिसमें विषय रहेगा समय से पूर्व पैदा हुए अथवा प्रीटर्म बच्चों को गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। कार्यक्रम में विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कुलदीप गंगवार।

श्रोताओं, ये था विवरण हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित बार रिले होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। आइए आप सुनते हैं भजन संध्या। श्रोताओं, कार्यक्रम भजन संध्या में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह के गाए इस भजन के साथ।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM और सुन रहे हैं भजन संध्या। आइए अब आपको सुनवाते हैं अनूप जलोटा के स्वर में ये सुंदर सा भजन।

ईश्वर की कृपा से यह शरीर प्राप्त हुआ है। अब इस शरीर को गुण रूपी रत्नों से सजाना हमारा कर्तव्य है। ज्ञान, ध्यान, तपस्या, प्रेम, सेवा, ये वो रत्न हैं जिन्हें एक बार प्राप्त कर लिया जाए तो सदैव साथ रहते हैं। दुनिया के अन्य रत्न शरीर छूटते ही हमें छोड़ देते हैं, तो क्यों ना उन रत्नों को प्राप्त करें जो जन्म जन्मांतर हमारे साथ रहेंगे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भजन संध्या 100.4 FM पर। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:30 हो चुके हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लकी 3। कार्यक्रम लकी 3 सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये कार्यक्रम है जिसमें हम अपने 3 लकी श्रोताओं के पत्रों को शामिल करते हैं, उनकी पसंद का एक एक गीत सुनवाते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि ये गीत उन्हें क्यों पसंद है। अधिक समय ना लेते हुए कार्यक्रम को शुरू करते हैं और ये हमारे पहले लकी श्रोता जो हैं वो हैं मसरूर खान जी, वार्ड नंबर 16 ककराला बदायूं से। इन्होंने अपनी पसंद का गीत लिख भेजा है हमें। गीत है चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। इस गीत के बारे में लिखते हैं कि इस गीत की विशेषता है कि यह गीत देवी माता पर आधारित है और इस भजन को सुनने से मेरे मस्तिष्क को बहुत शांति मिलती है, इसलिए ये गीत इनको बहुत पसंद है और इसीलिए ये इस गीत को सुनना चाहते हैं। तो आइए मसरूर खान जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM और सुन रहे हैं कार्यक्रम लकी 3। इस कार्यक्रम में हमारे दूसरे लकी श्रोता हैं छावनी अशरफ खां पानी की टंकी के पास होली चौक बरेली से राम प्रसाद शर्मा जी। इन्होंने अपने पत्र में एक गीत लिख भेजा है फिल्म याराना का। गीत के बोल हैं, तेरे जैसा यार कहां, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा याराना। लिखते हैं कि ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में है और दोस्तों, सच्चा दोस्त वो होता है कि वो भाई से भी बढ़कर होता है, आपका दुख में साथ दे और दोस्ती मिसाल कर दे, दोस्त के आंसुओं को अपने आंसू समझे, ऐसा दोस्त जो होता है वही खास होता है। और आगे लिखते हैं कि ये गीत मैं अपने सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को डेडिकेट करना चाहता हूँ, उनके लिए सुनवाना चाहता हूँ। तो ठीक है राम प्रसाद शर्मा जी, सुनवाते हैं आपको ये गीत, आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए इसको।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 FM, सुन रहे हैं कार्यक्रम लकी थ्री। दो लकी थ्री इस कार्यक्रम लकी थ्री कार्यक्रम के दो श्रोताओं के नाम और उनके पत्र हम शामिल कर चुके हैं और ये हमारे तीसरे लकी श्रोता हैं। आप हैं मोहल्ला तलैया उल्ला जागीर से मोहम्मद फजलुद्दीन भाई, हमारे बहुत ही पुराने और नियमित श्रोता हैं। इन्होंने अपनी पसंद का एक गीत लिख भेजा है। गीत है चलो इश्क लड़ाएं फिल्म का और गीत के बोल हैं तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा। इस गीत के बारे में लिखते हैं कि ये गीत इन्हें इसलिए पसंद है क्योंकि गीत में प्यार, समर्पण और जीवन साथी बनाने की भावना दिखाई देती है। इसकी धुन शांत और दिल को छूने वाली है, इसलिए ये शादी और प्रेम से जुड़े मौकों पर बहुत पसंद किया जाता है। इसके बोल बहुत सरल हैं जिससे लोग जल्दी ही गुनगुना लेते हैं और गायक की आवाज़ में प्यार और अपनापन महसूस होता है जो गीत को और असरदार बनाता है। ये गीत अक्सर विवाह, सगाई में इस्तेमाल होता है, ऐसे मौक़ों पर बजाया जाता है। और लिखते हैं जब ये शादियों में ये गीत बजता है तो मुझे अपनी शादी की याद आ जाती है। क्या बात है फजलुद्दीन भाई, अब सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम लकी थ्री यहीं संपन्न होता है। साथियों, अगर आप भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो इसके लिए हम अपना पता बताए देते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम लकी थ्री द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, और हमारा पिन कोड है 243001। आप अपनी पसंद का कोई गीत लिख भेजिए हमें, और साथ ही ये लिखना ना भूलें कि ये गीत आपको क्यों पसंद है। तो अब कार्यक्रम से मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लकी 3, 100.4 FM पर। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सामयिक वार्ता डॉक्टर रूबी शर्मा से। विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विविध आयाम।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर रूबी शर्मा और आज का हमारा जो विषय है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विविध आयाम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी। यह नीति लगभग 34 वर्षों के बाद लाई गई, क्योंकि इससे पहले 1986 की शिक्षा नीति लागू थी। पुरानी शिक्षा व्यवस्था में रटने की प्रवृत्ति अधिक थी और कौशल आधारित शिक्षा की कमी महसूस की जा रही थी। बदलती तकनीकी, डिजिटल शिक्षा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पड़ी। इसी उद्देश्य से सरकार ने एक समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता के कस्तूरी रंगन ने की। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर नई शिक्षा नीति 2020 तैयार की गई। इस नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को अधिक लचीला, व्यवहारिक, कौशल आधारित और छात्र केंद्रित बनाना है, ताकि विद्यार्थियों का समग्र विकास हो सके और भारत को वैश्विक ज्ञान शक्ति बनाया जा सके। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पारंपरिक 10+2 सिस्टम, जिसमें कक्षा 10 के बाद 2 वर्ष शामिल थे, को बदलकर 5+3+3+4 का नया ढांचा लागू किया, जिसके तहत 5 वर्ष का फाउंडेशनल स्टेज, 3 साल की प्रिपेटरी स्टेज और 3 साल की मिडिल स्टेज तथा 4 साल का सेकेंडरी स्टेज को सम्मिलित किया गया। NEP में MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना की मांग की गई है। राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय भाषाओं जैसे मातृभाषा और स्थानीय भाषा को कक्षा 5 तक की पढ़ाई का माध्यम बनाने पर विशेष बल दिया है। साथ ही ये सुझाव भी दिया गया है कि इसे कक्षा 8 और आगे तक जारी रखा जा सकता है। नीति के अनुसार सभी छात्रों को स्कूल में 3 भाषाएं सीखनी होंगी। इन 3 भाषाओं का चुनाव राज्य, क्षेत्र और छात्रों की पसंद के अनुसार किया जाएगा। हालांकि इन 3 भाषाओं में से कम 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए। इनमें से 1 भाषा आम तौर पर स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा होगी। यह नियम सरकारी और निजी स्कूलों दोनों पर लागू होगा। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। बधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा इंडियन साइन लैंग्वेज को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक ऐसे पाठ्यक्रम

और अध्यापन प्रणाली विधि के विकास पर बल दिया गया है, जिसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्रों के सीखने की प्रगति की बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही इसमें विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। छात्र कक्षा 3, 5 और 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे, जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12वीं की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर लिए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% तक रखने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत MPhil कार्यक्रम को समाप्त किया गया है। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, जिससे अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। NEP 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किए गए। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उन्हीं के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जैसे 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा और 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्ष के बाद शोध के साथ स्नातक। चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है कि 2030 तक प्री स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल किया जाए। यह लक्ष्य भारत के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 2018 के 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% तक पहुंचाना है। यह लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा छात्रों को उच्च और व्यावसायिक शिक्षा का अवसर देने पर जोर देता है, ताकि एक कुशल और जानकार कार्यबल तैयार हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने पर जोर देती है, ताकि छात्रों को ऐसे व्यावहारिक कौशल सिखाए जाएं जो उन्हें रोजगार योग्य बनाए और उद्योग

0: की जरूरतों के अनुरूप हों। यह एकीकरण शैक्षणिक ज्ञान और वास्तविक जीवन में उसके उपयोग के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास है और भारत को एक वैश्विक ज्ञान शक्ति बनाने की दिशा में सहायक है। शिक्षकों की अहम भूमिका को समझते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन शुरू करने का प्रस्ताव देती है, ताकि शिक्षण के तरीकों और सीखने के परिणामों में सुधार किया जा सके। साथ ही एक स्वतंत्र संस्था नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बनाई जाएगी, जो तकनीकी के उपयोग से सीखने, मूल्यांकन, योजना और प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए विचारों के आदान प्रदान का मंच प्रदान करेगी। इन पहलों का उद्देश्य शिक्षकों को जरूरी उपकरण और ज्ञान देकर उन्हें सक्षम बनाना है, ताकि वे बेहतर शिक्षण माहौल बना सकें। सो इन्हीं सब विचारों के साथ हम कह सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक अहम शिक्षा नीति है और ये आने वाले समय में भारत में जो आवश्यकताएं हैं, जो वर्तमान में जो आवश्यकताएं हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर इस शिक्षा नीति को लागू किया गया है। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुनी डॉक्टर रूबी शर्मा से सामयिक वार्ता, विषय था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विविध आयाम। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर।

0: मैं अविनाश सिंह, जिलाधिकारी बरेली, आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे देश में जो जनगणना हो रही है वह दो चरणों में होनी है। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण, जिसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं, का कार्य चल रहा है, तथा द्वितीय चरण माह फरवरी 2027 में होगी। यह पूर्तियां डिजिटल मोड में होगी। प्रथम चरण की जो अवधि है वो 22 मई 2026 से 20 जून 2026 तक तय की गई है, तथा इसके पहले 7 मई 2026 से 21 मई 2026 तक स्वगणना हेतु तिथि निर्धारित है, जिसमें आमजन स्वगणना से संबंधित पोर्टल पर जाकर स्वयं ही अपनी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा देश में पहली बार स्वगणना की विधि लाई गई है। इसमें कोई भी व्यक्ति सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल पर जाकर बड़ी आसानी से भारत सरकार द्वारा तय किए गए प्रश्नों के संबंध में जानकारी प्रदान कर सकता है। इस प्रक्रिया के अंत में एक ऐसी आईडी जनरेट होगी जिसे दिनांक 22 मई 2026 से दिनांक 20 जून 2026 के मध्य प्रागणक को प्रदान कर जनगणना की प्रक्रिया चंद मिनटों में ही पूरी की जा सकती है। इस प्रक्रिया में प्रागणक द्वारा उन्हें आवंटित हर उस मकान भवन को सूचीबद्ध करना है जिसमें कोई व्यक्ति रहता है या भविष्य में रह सकता है। साथ ही कुल 33 अधिसूचित प्रश्नों की जानकारी भी उसे प्रत्येक परिवार से लेनी है। प्रथम चरण में केवल परिवार से संबंधित जानकारियां ली जाएंगी, जबकि द्वितीय चरण में प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग जानकारी एकत्र की जाएगी। मकान सूचीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा कुल 33 प्रश्न अधिसूचित किए गए हैं, जिनके उत्तर प्रागणक प्रत्येक घर से प्राप्त करेंगे। इस जनगणना के कई फायदे हैं। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही सरकार आम जन मानस को लाभान्वित करने के लिए योजनाओं का निर्माण करती है। इसके आंकड़े क्षेत्र विशेष के लिए भी योजनाएं तय करने में सहायक सिद्ध होते हैं। विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के सीमा निर्धारण, लोकसभा विधानसभा आदि क्षेत्रों के परिसीमन, शहरीकरण, साक्षरता इत्यादि कई पहलुओं में जनगणना के आंकड़े आधार का कार्य करते हैं। मेरा जनपद बरेली के सभी सम्मानित निवासियों से यह अपील अनुरोध है कि अपनी जनगणना स्वगणना के माध्यम से अधिक संख्या में करें, तथा जब प्रागणक आपके घर जाएं तो उन्हें पूर्ण सहयोग एवं बिल्कुल सही सही जानकारी प्रदान करें। आपके द्वारा जनगणना में दिए गए चंद मिनटों का समय आगामी योजनाओं का निर्धारण करेगा। अतः अपना बहुमूल्य समय देकर सभी जानकारियां प्रागणक को दें, जिसके आधार पर सरकार आपके लिए आवश्यक एवं कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण कर सके। जय हिंद, जय भारत।
1: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत आपकी पसंद।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6 बजे हैं। अब हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना प्रिय कार्यक्रम युववाणी।

हेलो हाय नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल आदाब बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आभार आप सभी का स्वागत करते हैं हम आपके फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में और पेश कर रही है आपकी दोस्त प्रज्ञा पाठक। दोस्तों आज का दिन बहुत खास है, खास इसलिए कि आज का दिन सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं, ये दिन है उस बुनियाद को सलाम करने का जिसे हम परिवार कहते हैं, क्योंकि आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल डेज ऑफ फैमिलीज। और युवक वो ताकत है जो भविष्य लिखते हैं, लेकिन याद उस पर भविष्य की सिहाई हमारे परिवार के संस्कार होते हैं। आज का युवा करियर एम्बिशन सक्सेस के पीछे दौड़ रहा है, आगे निकल रहा है, ये एक गर्व की बात है, लेकिन इस दौड़ में कभी कभी हम अपनों को पीछे छोड़ जाते हैं। कामयाबी का मज़ा तब तक नहीं आता जब तक ताली बजाने के पीछे हमारा पूरा परिवार ना हो। जब पूरी दुनिया आप पर शक करती है तब उस वक्त आपके माता पिता ही ये कहते हैं हमें तुम पर भरोसा है, आगे बढ़ो। परिवार वो सेफ्टी सेट है जो आपको गिरने नहीं देता, आपकी जड़ों को मजबूत रखता है ताकि आप आसमान छू सकें। तो सो घर में साथ बैठकर रोटी खाना परिवार नहीं, बल्कि एक साथ सुख दुख में खड़े रहना परिवार है। मेरे जो साथ अपनों का तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, जिसके पास परिवार का साथ हो असल में वही अमीर है जहां है। दोस्तों इस भागती हुई जिंदगी में परिवार को पीछे छोड़ देते हैं हम और एक एक करके जैसे घर में रह रहे हैं तो कई बार क्या होता है सोशल मीडिया पर ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं। हर बच्चे के हाथ में आप फ़ोन देख लीजिए, माता पिता से हम बात कम करते हैं। युवाओं में अक्सर लगता है कि परिवार उन्हें समझता नहीं है, उनकी आज़ादी में रुकावट बनता है। असली सच्चाई ये नहीं है, जब दुनिया पीठ दिखाती है तो सिर्फ परिवार ही बिना किसी स्वार्थ के साथ में खड़ा होता है। खास रिश्तों की यही खूबसूरती होती है दोस्तों कि ये बदले में कुछ नहीं मांगते। जब थक कर हार जाता है तो पूरा जहां तो परिवार के आंचल में ही सुकून मिलता है। मेरे दोस्तों आने वाले समय में हमारी फैमिली वैल्यू ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। अपने परिवार के लिए समय निकालिए, उनसे बात करिए, सबसे बड़ी बात है उनकी बात का भी सम्मान करिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपना पक्ष ना रखें, पर उनके पक्ष का भी सम्मान करें और जिम्मेदारियां उठाएं। सिर्फ सुविधाएं नहीं बल्कि घर के कामों और मुश्किलों में आगे बढ़कर जिम्मेदारियां लें। आज इस दिन पर हम सभी युवा एक संकल्प लेते हैं साथ मिलकर कि हम एक ऐसा भविष्य बनाएंगे जहां हमारी कामयाबी के साथ साथ हमारे परिवार की खुशी भी जुड़ी होगी। मिलने का तो दुनिया में बहुत से रिश्ते हैं मिलते हैं, पर हजारों खताएं माफ करे वो परिवार ही होता है। खुदा से क्या मांगे उस जन्नत को, खुदा से क्या मांगे उस जन्नत को, दोस्तों माँ बाप के चरणों में ही तो सारा संसार होता है। दोस्तों हमारे एक श्रोता थे, हमें पोस्ट में उन्होंने कमेंट किया था, जिनका नाम पारस कुशवाहा है। उन्होंने बोला था कि आप ऐसा ही कोई टॉपिक प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करिएगा, उम्मीद करती हूँ उन्हें पसंद आया होगा। और आज इसीलिए हमने थोड़ी ज़्यादा बातें कर ली हैं इस टॉपिक पर, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं भूले हैं कि आज प्यारी सी शाम में हम लाए हैं नजराना है शाम में। दिल जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज़ मगर रखती है। लाए हैं ये प्यारी सी गज़ल, आइए सुनते हैं आपके साथ।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत।

0: शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: दोस्तों अब चलते हैं हमारे श्रोताओं की फरमाइश पर। नजराना शाम में ढेर सारी फरमाइश हमारे पास आई है। सागर शहर राजस्थान से राम कुमारी और चंद्रकला की अगली फरमाइश आई है। आर्य नगर कुल

0: वेलकम बैक दोस्तों। देखिए, बात जब सपनों और हौसलों की होती है तो हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण आते हैं हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट। दिन रात एक कमरे में बंद रहकर हर त्योहार हर शादी छोड़कर जो देश को बदलने का सपना देख रहे हैं, उनके संघर्ष में उनका परिवार उनका सबसे बड़ा संबल बनता है। उन जावाज युवाओं के हौसले को भाई हम सलाम करते हैं। कहते हैं ना कि सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। तो दोस्तों देखिए, रात भर जाग के पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकते हैं जब रातों की नींद अधूरी और सपनों की तड़प पूरी होती है। तो इसीलिए हमेशा अपने सपनों के लिए अग्रसर रहिए, और हम आपके इस सफर में ऐसे ही खास खास लोगों को लेकर आते हैं। आज हमारे बीच में जुड़ी है एक खास युवा साथी, हम इसीलिए आपके बीच में जोड़ रहे हैं ताकि हमारे जितने भी युवा साथी हैं उनको उनसे सीख मिल पाए, उनके सफर के बारे में जानकर उनसे जान पाए वो कि हर युवा का जीवन कितने संघर्षों से भरा होता है। अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो उन संघर्षों के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ता है। अपनी मंजिल को पूरा करने के लिए आपको सफर में जो कठिनाइयां देखनी पड़ती हैं वो देखिए सभी के साथ आती हैं, और इसी सफर में आप किस तरीके से सफर को पूरा करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए हम आपके लिए ऐसे ही खास व्यक्तियों की रिकॉर्डिंग और खास लोगों की, खास युवा साथियों की रिकॉर्डिंग लेकर आते हैं ताकि आपको उनकी जर्नी के बारे में जानकर, उनके बारे में सुनकर, उनके संघर्ष के बारे में पता चले और नई दिशा मिल पाए आपको अपने सपनों को पूरा करने की। और ऐसे ही हमारे बीच में जुड़ी हैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट। आइए सुनते हैं इन्हीं की जवानी, इनके संघर्ष की कहानी। चलिए इन्हीं से जानते हैं इनका नाम। तो आप हमारे युवा साथियों को अपना नाम बता दीजिए।
1: मेरा नाम शिवानी गंगवार है।
0: शिवानी जी नमस्कार, पहले तो आपको, आप कहाँ से हैं शिवानी जी?
1: ग्राम बसई जिला बरेली की निवासी।
0: अच्छा शिवानी जी, आप क्या कर रही हैं इस वक्त पढ़ाई में, आप प्लीज हमारे युवा साथियों को बताएंगी?
1: मैंने 3 साल पहले
0: जी
1: यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की थी
0: जी,
1: जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ था।
0: अच्छा, आपने 12th के बाद से यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट
1: की? हाँ।
0: तो आपने मतलब पहले से ही मन बना लिया था कि आपको यूपीएससी में ही जाना है, मतलब तैयारी आप सेल्फ से कर रहे हैं या आप कोई कोचिंग कर रहे हैं उसके लिए?
1: हाँ, मैंने कोचिंग ली थी प्रॉपर बरेली से, मैंने 3 साल कोर्स किया था, फिलहाल अभी तो मेरी कोचिंग कम्प्लीट हो गई है
0: जी,
1: तो अभी मेरी सेल्फ स्टडी चल रही है।
0: अच्छा, उसके साथ आपने ग्रेजुएशन तो डाली दी होगी?
1: हाँ, तो ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो गया।
0: ओके, तो आप आईएएस की जो तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए कितने घंटे पढ़ाई करती हैं? क्योंकि ये मुझे लगता है ज्यादातर बच्चा ये सपना होता है कि वो इस मुकाम, ये वाला मुकाम हासिल कर पाए, और इस मुकाम को देखकर हर किसी का मन करता है कि वो भी वहां तक पहुंच पाए। तो आप प्लीज हमें बताइए इस जर्नी के बारे में कि आप इसको कैसे तय कर रही हैं।
1: बिल्कुल, जब मैंने कोचिंग लिया था, जब मेरे कोचिंग साथ में चलती थी, तब मेरी पढ़ाई सेल्फ स्टडी है जो लगभग 6-7 घंटे हो जाती थी, क्योंकि 4-5 घंटे की मेरी कोचिंग भी रहती थी
0: जी।
1: लेकिन अभी मेरी कोचिंग जब

0: रही है और मैं केवल सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, तो मेरी पढ़ाई अप्रोक्स 10-11 घंटे हो जाती है।
1: 10-11 घंटे। अच्छा शिवानी जी, आप यूपी बोर्ड से हैं या सीबीएसई से? क्या आप हमारे श्रोताओं को?
0: मैं यूपी बोर्ड से हूं।
1: हाँ, ये काफी सारे श्रोता के मन में ये सवाल आता है, यूपी बोर्ड वालों के साथ चैलेंजेस ज्यादा खड़े हो जाते हैं, तो इसीलिए उनके मन में ये रहता है कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप प्लीज उन्हें बताइए कि आपको क्या क्या फेस करना पड़ा।
0: मेरा मानना है कि जो होता है ना, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है इस परीक्षा।
1: हाँ, यही मैं कहना चाह रही थी कि यूपी बोर्ड वाले बच्चों का अक्सर सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका लो हो जाता है, यही सोच के कि पता नहीं हम एग्जाम में सही से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा शिवानी जी, आपने जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, तो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसमें, कौन कौन से सब्जेक्ट मस्ट हैं, कंपलसरी हैं, क्या बताएंगे आप प्लीज?
0: जब कोई बच्चा तैयारी करता है तो उसमें मतलब बहुत बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि जीएस वगैरह हो गया, और ऑप्शनल तो हम लोग अपना अपनी अकॉर्डिंग ही रखते हैं।
1: जी, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें चूज करते हैं सब्जेक्ट, बाकी तो आपका जो बेसिक होता है
0: वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, मेंस में होता है, उसको हर कोई अपने अकॉर्डिंग चूज करता है, बाकी कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जो सबको अपना कंपलसरी होते हैं।
1: हाँ, जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब ये सारी चीजें तो आनी ही आनी है। उसके बाद आपके पास एक मतलब चॉइस होती है कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो आप कौन सा लें, है ना?
0: हाँ।
1: अच्छा, यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वो कितने चरण में होता है शिवानी जी?
0: हाँ, वो तीन में होता है। पहले प्रीलिम्स होता है, जो ऑप्शनल वाइज क्वेश्चन उसमें आते हैं, दो पेपर होते हैं, 200-200 नंबर के आते हैं वो। उसके बाद जब हमको क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हमारे मेन्स एग्जाम होते हैं। मेन्स जो होता है वो रिटर्न होता है।
1: अच्छा अच्छा,
0: हाँ जी, उसके बाद इंटरव्यू होता है।
1: ओके ओके, थैंक यू शिवानी जी, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो जरूर रंग लाएगी, और हमारे युवा साथियों को आपकी इस जर्नी के बारे में पता चला, उन्हें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, उन्हें भी थोड़ा आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से तैयारी करें। थैंक यू, आज आपसे बातचीत की, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू शिवानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बदलो बदलो आदत बदलो,
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अल्फाज में कहां समाए हकीकत इश्क, ये दिल का मामला है, जरा झूम के सुनो। तो दोस्तों, फरमाइश आई है हमारे पास गंगा सिंह रावत रामपुर रोड हल्द्वानी से, रवि कुमार राहुल कस्बा बारवर जिला अम्बाला हरियाणा से, ननौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी की, दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जयकिशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्रायणी, माया साहू छत्तीसगढ़ से, सहारनपुर से जॉन डी कैस्ट्रो की, चमोली उत्तराखंड से पीएस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल नवानकर महाराष्ट्र से, अगली फरमाइश आई है ताज मोहम्मद अंसारी की आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, अगली फरमाइश है नरेन नेताम कुसुम नेताम पथरिया से, फरमाइश है उत्तराखंड राज्य से दिग्दर्शन और कविता जी की, अगली फरमाइश हमारे पास आई है रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा। आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश पे नजराना है शाम में ये।

चलते हैं आज के सवाल पर, जहां हमने आपसे पूछा था रूपकुंड झील किस राज्य में है। सही उत्तर है उत्तराखंड में, और हमें इसका सही उत्तर दिया है हमारे श्रोताओं ने। राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंगेल, मध्य प्रदेश से दुर्गी नागनपुरे, छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, उत्तराखंड से निसार सलमानी, छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम साहू, पथरिया से नरेंद्र नेताम, सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, राजकुमार डोडी, उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गंगा सिंह रावत, मुरादाबाद से अजीत कसाना, मेरठ से दिग्दर्शन राजेश वर्मा, राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, छत्तीसगढ़ से गोस्वामी नरगोड़म, प्रवीण चौहान, एटा से नवी हसन अब्बासी, बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, पाटापारा से हीरामणि वर्मा, विजय को सुरलकर, मसूरी से मोहम्मद जाकिर और अनोखेलाल मौर्य, इन सभी ने आज के सवाल का सही उत्तर दिया है। दोस्तों, शमा बुझने को हर परवाना अभी बाकी है, महफिल में अभी चंद दीवाने बाकी हैं। आइए पेश है आपके लिए ये प्यारी सी कव्वाली।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी 100.4 एफएम पर। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। अब हमारे ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी अपने भैया और बहनों को आपके भैया हरदोई लाल वर्मा की ओर से राम राम। कैसे हो भैया और कैसी चल रही है आपकी खेती बाड़ी? हम उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। और बात करें खेती बाड़ी की, तो खेती बाड़ी का तो काम ऐसा है, हर समय कोई ना कोई लगो ही रहते हैं। चाहे भैया हम बात करें गन्ना की खुदाई की, चाहे हम बात करें गन्ना की सिंचाई की, तो ये काम ऐसे है कि हर समय लगो ही रहते हैं। और हमारे भाई तन्मता से काम करते हैं। खेती बाड़ी को काम ऐसो है, अगर ताक से न करेंगे तो जो हम उम्मीद करते हैं खेती से वो हमें उपज ना मिलेगी। खैर ये तो बात वही खेती बाड़ी के कार्य की। और आज हमारे कार्यक्रम में क्या क्या है ये भी आपको बता दें। आज हम आपको सुनवाएंगे प्रगतिशील कृषक सब्जी उत्पादक श्री ओम प्रकाश जी से बातचीत, साथ ही साथ आपसे चर्चा करेंगे संतुलित आहार और प्यारे प्यारे लोक गीतों से आपका कराएंगे मनोरंजन। किसान साथियों, जैसे हमने बात की आपसे संतुलित आहार की, संतुलित आहार में शरीर के विकास, स्वस्थ रहने और रोग मुक्त रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। इसके अलावा एक स्वस्थ संतुलित आहार आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता भी है जो इसके लिए पूरा करता है, विटामिन खनिज और अन्य पोषण संबंधी कमियों से बचाता है और प्रतिरक्षा का निर्माण करता है। संतुलित आहार खाने के क्या क्या लाभ हैं ये भी आपको बता दें। संतुलित भोजन शरीर को सामान्य वृद्धि और मरम्मत कार्यों को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान करने में मदद करता है। साथियों, वयस्कों के लिए स्वस्थ भोजन, इससे क्या क्या लाभ होता है जो आपको बता दें। एक स्वस्थ आहार प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है। टाइप 2 मधुमेह, हृदय संबंधी बीमारियां और कुछ कैंसरों के विकास के जोखिम का काम कम यानी जोखिम को यानी कम करता है, स्वस्थ वजन बनाए रखता है और बीमारियों और चोटों से जल्दी ओरन के लिए जो भैया मदद करता है। अब बात करें बच्चन के लिए स्वस्थ भोजन क्यों जरूरी है, तो बच्चन के लिए स्वस्थ भोजन इसलिए जरूरी है, एक स्वस्थ आहार हड्डियों को मजबूत बनाता है, मस्तक के लिए विकास में सहायता करता है, प्रतिरक्षा को बढ़ाने और विकास कार्यों को विनियमितीकरण करने में मदद करता है। आपको ये भी बता दें, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा या लिपिड सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन और खनिज और पानी एक संतुलित आहार के लिए आवश्यक घटक है। तो साथियों, संतुलित आपको पता है कितना जरूरी है, संतुलित आहार कितना लाभप्रद है। अब आपको बता दें कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं और आपके आहार का 50 से 60% होना ये जरूरी है।

0: हालांकि ये आहार एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन आपको सभी कार्बोहाइड्रेट को एक समान नहीं मानना चाहिए। स्वस्थ कार्बोहाइड्रेट के स्रोत भी आपको बता दें, जैसे साबुन, अनाज, ओट्स, साबुत गेहूं, दहियां, फलियां, रानी, रागी, बाजरा, जौ जैसे मोटे अनाज, सब्जियां, ये प्रोटीन में आते हैं। प्रोटीन आपकी मांसपेशियों के निर्माण और त्वचा और बालों के विकास में मदद करते हैं। यह आपके आहार का 10 से 12 प्रतिशत होना बहुत ही जरूरी है। अब आप करेंगे प्रोटीन के स्रोत का है, तो प्रोटीन के जो स्रोत हैं वो हैं फलियां और सेम, सोयाबीन, पोल्ट्री, चिकन, टर्की, समुद्री भोजन जैसे मछली, केंगड़ा, झींगा, झींगे, अंडे, ये प्रोटीन के स्रोत हैं। और आपको यहाँ पर प्रोटीन के स्रोत और भी बता रहे हैं, जैसे कुछ हमारे भाई मछली और मांस का सेवन करते हैं, तो इसी प्रकार से जो संतुलित आहार मनुष्य और बच्चों में कितना जरूरी है, यह आपको हम विस्तार से समझाया और समझा रहे हैं। अब बात करें वसा की, ये एक गलत धारणा है कि वसा आपके स्वास्थ्य के लिए खराब है। ये सबसे अच्छा वसा होता है और आप स्वस्थ वसा चुने, क्योंकि वसा आपके शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करती है और वसा में घुलनशील विटामिन एडीई को अवशोषित करने में वसा मदद करती है। स्वस्थ वसा के स्रोत कहाँ हैं? अब आप कहेंगे कि जो स्वस्थ वसा है उसके स्रोत क्या हैं? बीज, अतिरिक्त वर्जिन जैतून का तेल, वसा युक्त मछली, सैल्मन, साइड्राइंस, मैकेरन, हेरिंग, ये वसा के मुख्य स्रोत हैं। हमारे जो पशु हैं उनमें संतुलित आहार कितना जरूरी है, जैसे हम अपने पशुओं को वर्सीन, हरा चारा और इसके साथ साथ जो दलिया है, चोकर है, मिठाई है, ये सारी चीजें जो पशुओं को देते हैं, तो पशुओं का ये संतुलित आहार माना जाता है। जब आहार संतुलित देंगे पशुओं में तो दूध ज़्यादा देंगे, जो दूध देने वाले पशु हैं और जो खेती बाड़ी में काम आने वाले पशु हैं, तो संतुलित आहार मिलेगा तो मन लगाकर खेती बाड़ी में जो पशु हैं वो काम करेंगे। तो इन चीजों को आप अच्छी तरीका से समझ रहे हैं, तो आज जो संतुलित आहार पे हमने आपसे बातचीत की, हम उम्मीद करते कि आपको अवश्य पसंद आएगी। खैर, चर्चा लंबी हो गई, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में एक भेंट वार्ता प्रगतिशील कृषक सब्जी उत्पादक ओम प्रकाश जी, तो आइए सुनते हैं।
1: सभी सुनने वालों को हरदोईलाल वर्मा का नमस्कार। आप जानते हैं कि समय समय पर जो भी प्रगतिशील कृषक होते हैं उनके अनुभव आप तक साझा करते हैं। आज हमारे कार्यक्रम में हैं श्री ओम प्रकाश जी, ग्राम नतपुरा, विकासखंड व तहसील मीरगंज, जनपद बरेली के रहने वाले हैं। सब्जी उत्पादन से अपने घर की अच्छी परवरिश कर रहे हैं और घर का सभी जो खर्चा है, पढ़ाई लिखाई है, उनका कर रहे हैं। उनने सब्जी कैसे उत्पादन की और कहाँ कहाँ सब्जी की सप्लाई करते हैं, आज हमने उनके विचार जाने हैं। ओम प्रकाश जी, आज आपसे बात हो रही है, कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत बढ़िया लग रहा है सर।
1: अच्छा जी। आप आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम सुनते हैं
2: जी?
1: तो कभी आपके मन में जिज्ञासा हुई कि मैं भी रेडियो पर बोलूं?
2: जी
1: हैं
2: जी।
1: क्या लगता था मन में?
2: मन में लगता है रेडियो बोलूं, अच्छी बात करूं।
1: तो आज बोल रहे हो आप रेडियो पर, कैसा लग रहा है?
2: बहुत बढ़िया लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है।
1: चलिए, आपकी भावना को हमने समझा और हम आपसे आज बात कर रहे हैं। ये बताइए, आपने ये क्या लगा रखा है?
2: लौकी है, तुरई है और भिंडी है, अरबी है, टमाटर है, बैंगन है, ये सारे लगाए हैं।
1: अच्छा, सब्जी वाली फसल लगा रखी है?
2: जी जी।
1: कितने बीघे में होंगी ये?
2: 3 बीघे में।
1: सब्जी खेत में हम लगा

0: लगाएं उससे पहले किन-किन बातों का ध्यान रखते हैं आप?
1: खेत में सब्जी लगाए पहले तो जुताई
0: कितनी जुताई करते
1: जुताई
0: हैं?
1: करते हैं,
0: कितनी जुताई कर देते हैं?
1: लगभग 3 बार जुताई करते हैं।
0: उसके बाद क्या करते हो?
1: फिर उसके बाद में इसको पानी लगा के उनकी रोपाई करते हैं पेड़ों की।
0: अच्छा, देसी
1: जी
0: खाद नहीं डालते
1: देसी
0: हो?
1: खाद डालते हैं। जी
0: आपकी डीएपी क्यों नहीं डालते हो?
1: डीएपी साहब बीमारी के तौर पे
0: ज्यादा
1: लगती
0: लगती हैं,
1: है जी,
0: इसलिए देसी खाद का प्रयोग करते हैं।
1: देसी खाद
0: बहुत अच्छी बात है
1: जी
0: ओम प्रकाश जी, आप देसी खाद का प्रयोग करते हैं।
1: जी
0: बहुत सारी सब्जी वाली फसल लगाने की आपने बात की, नर्सरी कैसे तैयार करते हो?
1: नर्सरी साहब इसके पौध डालते हैं, बेल लेके आते हैं, इसकी पौध डालते हैं, फिर उसकी रोपाई करते हैं। कोई इसमें खाद बर्बाद ना हो, खाद बर्बाद ना हो, और इसके लिए सफाई करके उसके पाल के पेड़ तब लगाते हैं उसमें सफाई। जी
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: ये
1: अगर कोई
0: बताइए,
1: रोग ना लगे तो कभी जरूर पड़ने पे स्प्रे कर देते हैं।
0: ये बताइए कि यदि हम टमाटर की रोपाई कर रहे हैं, बैंगन की रोपाई कर रहे हैं, मिर्च की रोपाई कर रहे
1: जी
0: हैं, या हम लौकी तुरई की रोपाई कर रहे हैं, तो रोपाई करते समय किन-किन बातों का आप ध्यान रखोगे?
1: रोपाई करते समय तो सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे मिट्टी भुरभुरी हो,
0: अच्छा,
1: मिट्टी पेड़ पे चढ़ाना चाहिए, पेड़ से ये होता है कि जानवर चाहिए, पेड़ा गिरता नहीं है,
0: अच्छा,
1: फसल अच्छी आती है, उसमें सब्जी अच्छी रहती है।
0: अच्छा
1: और उसको ये देखना है कि कोई टमाटर हमारा या कोई फसल दागी तो नहीं बन रही है,
0: अच्छा
1: उसका ध्यान रखना पड़ता है। जी
0: बहुत अच्छी बात। जो बेल वाली फसल होती है तो उसके लिए आपने ये क्या बांध रखा
1: ये ठट्टर बांध रखा है साहब, ठट्टर बांध रखा है रस्सी
0: है?
1: का
0: ठट्टर क्यों
1: तार,
0: बांध रखा
1: इसलिए बांध रखा है कि जमीन में ना टिके,
0: है?
1: और जमीन टिकने से फल जो होता है, सब्जी होती है, जो भी होती है, वो दागी बन जाती है और बीमारी घातक बन जाती है।
0: अच्छा, जो ठट्टर है इस पे ही आपने पौधा फैला दिया है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आपने ये ठट्टर बनाया है तो उसमें तो काफी खर्चा आया होगा।
1: खर्चा तो आता ही है, खर्चा तो आता ही है, पैसा लगता है खेती करने
0: तो इसमें हम देख रहे हैं नीचे मिर्च भी है
1: में।
0: और अरबी भी है और बहुत सारी आपने फसल नीचे भी लगा रखी है, ऊपर भी फसल हो रही है, नीचे भी फसल हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा,
1: बच्चे की मजा आती है।
0: इसमें कोई बीमारी ना लगे इसके लिए क्या करते हो?
1: बीमारी ना लगे
0: जी
1: इसके लिए तौर तौर पे बीज बीज कोई स्प्रे मार देते हैं, कीटनाशक जो होती है जानवरों के लिए सुड़ी होती है, जैसे होती है, उसको मारने के लिए स्प्रे कर देते हैं,
0: अच्छा,
1: जो फसल दागी ना बने, जहर नहीं बने उसमें,
0: जी
1: जहरीली नहीं होनी चाहिए बस। जी नशीला पदार्थ नहीं होना चाहिए, अगर उसको नहीं देखोगे सड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी, तो नशीला पदार्थ बन जाएगा और भी
0: अच्छा,
1: फसल बेकार हो जाएगी।
0: आप जो दवाई का छिड़काव आपने जैसे पहले बताया तभी करते हैं जब बहुत ही अति आवश्यकता होती है, वरना नहीं करते हैं आप?
1: जी देखभाल तो करनी पड़ती है उसकी।
0: ना ना, दवाई की छिड़काव की बात कर रहे
1: हाँ
0: हैं,
1: जी
0: जब जरूरत पड़ती है तभी
1: तभी
0: छिड़काव करते हैं,
1: तभी तभी
0: वैसे कोई दवाई तो इस्तेमाल नहीं करते हैं सब्जियों में।
1: ना
0: अधिकांश हमारे भाई, हमने
1: जी
0: देखा है कि लौकी में, तुराई में, हर चीज में इंजेक्शन वगैरह बहुत
1: ना
0: तरह तरह की
1: बोले
0: केमिकल दवाई दे रहे हैं,
1: बोले लगा
0: तो
1: देते
0: इससे
1: हैं।
0: होता क्या है, हमारे भाइयों के जो इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर प्रवेश करता है, तरह तरह की आज बीमारियां हो रही हैं, इसका कारण ये भी
1: ये भी
0: हो
1: है।
0: सकता है। सिंचाई कितनी कर देते हो आप?
1: सिंचाई तो साहब जब पानी मांगती है तो कम से कम 5-6 बार 7-8 बार करते हैं उसे,
0: अच्छा, हल्की सिंचाई
1: और
0: करते
1: हाँ
0: हैं,
1: जी हल्की हल्की,
0: बहुत अच्छी
1: तेज
0: बात
1: पानी
0: है।
1: नहीं भरते सर, उसमें तेज पानी भरोगे तो उसमें जड़ उसकी कमजोर बन सकती
0: अच्छा,
1: है।
0: ये सब्जी आप उत्पादन करते हैं घर में तो इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद जो अन्य सब्जी है वो कहाँ ले जाते हो आप?
1: जी मंडी ले आते हैं,
0: कहाँ?
1: डेरापीर मंडी है,
0: हाँ,
1: बड़ी बड़ी मंडी है हमारे लिए, वहाँ ले आते
0: आपकी
1: हैं,
0: बाजार भी तो लगती
1: और
0: है,
1: बाजार भी जाते
0: कहाँ
1: हैं
0: की लगती है बाजार?
1: मिल की।
0: अच्छा, तो काफी आमदनी हो जाती है इससे, तो तरह तरह की आप सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो इस समय हमारे भाई सुन रहे हैं और उनके खेत खाली पड़े हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे?
1: जी मेरे तो उन्हीं से यही अनुरोध है कि वो भी यही करें,
0: अच्छा,
1: वो भी करेंगे तो फसल होगी, अच्छा होगा, बच्चे पढ़ा सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। जब इससे नहीं करेंगे, घर की खेती नहीं करेंगे, तो इससे क्या काम चलेगा, मजदूरी से काम चलता नहीं। अपना व्यापार काम करने से फसल भी होगी, दुगनी आमदनी होगी, और बच्चे भी खाएंगे सब्जी, हम भी खाएंगे, और बची जो बाजार ले जाएंगे,
0: बिल्कुल, और सब्जी भी घर की
1: आज
0: मिलेगी,
1: सब्जी घर
0: आजकल
1: मिलेगी,
0: सब्जियां बहुत महंगी हो रही
1: और जब
0: हैं।
1: बच्चे हरी सब्जी खाएंगे तो
0: जी
1: हृष्ट पुष्ट रहेंगे, सही रहेंगे,
0: जी जी
1: स्वस्थ रहेंगे, आने वाले समय के लिए रहेगा।
0: बिल्कुल, बात सही है आपकी, क्योंकि आजकल जो हमारे भाई लालची हो गए हैं, वो आज दवाई लगाई अब पता लगी कल बाजार में ले गए, खरीदने वाले को तो पता नहीं होती है कि इसमें कल दवाई लगी है, उसका असर हमारे भाइयों के अंदर जा और वो कहीं ना कहीं हमारे बहन भाइयों को नुकसानदायक
1: जी
0: होता है, तो इसलिए सब्जी उत्पादन घर की सब्जी घर में ही अपने खेत में ही सब्जी का उत्पादन करेंगे तो उन्हें ताजा ताजा हरी सब्जी मिलेगी और आनंदित होंगे उसे खाकर, बहुत अच्छी बात है। ओम प्रकाश जी और क्या कहना चाहोगे चलते चलते?
1: जी मैं तो यही कहूंगा कि सब भाइयों से, किसान भाइयों से, कि आने वाले समय में, और मैं तो ये कहता हूँ कि

0: सब अपनी खेती करें, चाहे वो फसल करें चाहे सब्जी करें, कहीं सब्जी उठाएं। और उसमें मेरा एक बात और भी है कि इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
1: बहुत अच्छी बात है ओम प्रकाश जी, आपने हमारे सुनने वालों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। किसान भाई हमारी और आपकी बात को बहुत ही गौर से सुन पाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत
0: नमस्कार सर।
2: तो अभी हमारे भाई सुन रहे ये क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगतिशील कृषक सब्जी उत्पादक श्री ओम प्रकाश, ग्राम नतपुरा मीरगंज बरेली। हम समझते हैं कि जो ओम प्रकाश जी ने अपने अनुभव बताए, हमारे भाई जरूर इनके अनुभव सुनकर इसी प्रकार से खेतीबाड़ी और सब्जी उत्पादन करेंगे। अब आपको हम करवाने जा रहे हैं प्यारे से जो ओम प्रकाश भैया की आवाज में बारी वालम की बारामासी। सुनने के लिए आप सभी लोगों ने अनुरोध किया है, जिला बदायूं ग्राम दूनी नगर से ठाकुर मन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार कठेरिया, सत्येंद्र कुमार कठेरिया, गुड्डू विशाल संगम, वैभव आदर्श, आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, निव्या, सरता, अंतिमा, जिला पीलीभीत मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर से विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके तमाम साथी, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी और समस्त इनके साथी, आप हैं मोहल्ला आजाद नगर वार्ड नंबर 6 कस्बा साई से बोरा सकलैनी अकरम, बाबू भाई, मेदी भाई, जावेद खान, मुमताज, करण कश्यप, राजेंद्र लोधी, हरपाल लोधी और इनके तमाम साथी, रामपुरा किसानान मजरा सिमरिया तहसील मीरगंज बरेली से राम कुमार वर्मा, भगवान दास वर्मा, रविंद्र वर्मा, तेज प्रकाश वर्मा, सोमपाल, नथुलाल नंदकी, अलकनाथ मंदिर के सामने से गंगवार बैग लाइन बरेली से बेचीलाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत देव, ज्ञानेंद्र देव, इला देवी गंगवार, संजय अग्रवाल, अश्वनी कुमार मौर्य, वर्पा देवी, सोनाली यादव, राज कश्यप, मोहल्ला राजेंद्र नगर मीरगंज बरेली से राजेश मिश्रा, राजेश मिश्रा, रामेश्वर दयाल मिश्रा, शारदा मिश्रा, मयंक मिश्रा, सुशांत मिश्रा, ओम प्रकाश, राजीव, संजीव सागर, राहुल सागर, पंचम पाल, पान कुमारी पाल और इनके तमाम साथी, बसंत विहार रोड नंबर 1 इज्जत नगर बरेली से निधि राजपूत, नेहा राजपूत, अनामिका राजपूत, निशा राजपूत, राखी राजपूत, संचित राजपूत, रवि राजपूत, आप सभी लोगों ने सुनना चाहा है ओम प्रकाश भैया की आवाज में बारे वालम की बारामासी।
3: दशहरा जानत सब भाई, अब मेरे ब्याह के हेत बढ़ायत द्वारे पर आई। ए ए भैया, खुशी सब लोग मनाते हैं, बारे बालम संग आज बबुल मेरो ब्याह रचाते हैं।

चलन लागी है पुरवाई बाहे मेरे नैनन से पानी सात बरस के देख बलम मैं मन में घबरानी बरस सत्रह की मैं आली दुख किसे सुना मैं जाय हमारे।

सब कोरी आओ गाना राग मल्हारी डारी कै रेशम की डोरी खुशी सब घर घर में सखियां बांधा अपने हाथ बलम के हाथ अनु में रखियां।

भरे है नदी और नाले, पतिया पी पी करे हमारो बिरहा तन जारे। जवानी हाय जवानी नाही कटीर काटे, मेरो करे मदन थन जोर हमारो सभी बदन फाटे। पिया मेरो ललिकन संग डोला।

कण पुरखन कौ पानी ब्राह्मण रहे जिमाए देत है दौलत मनमानी सखी आए गयो राम लीला मेला देखन जाऊ संग में लैके सुखीला हुई गौ छोटो निर्बलमा आधी रात हुई गई सखी सब सोए रही कलमा जगू मैं बिपदा के मारे मैं कैसे राखू।

करे रोशनी जोर बढ़ा मैं दीपक मैं पोती खिलौना खिले सब लामाए खिलौना खिले सब लामाए घर घर में खुशी अपार नार सब हंसी हंस के खावे अरे बलम मेरे खुन कत है आगे पेड़ा पर भी नहीं खात कचौड़ी खाई बे तो मांगे शीश मेरे चरणन में डारे मैं कैसे राखूं।

0: पास आए गई सवारी रे हम झोली, व्याकुल मुझको देख सखी सब ऐसे हैं बोली, हमारो मान ले तुम कहना, राखो मन में धीर मुसीबत दूर होए बहना, कि सौ दिन हुई जाएंगे सियाने तब इच्छा पूरण होए, काम सब करी है मन माने, लगे तब आली पतचारे, मैं कैसे राखूं धीर सखी मेरे बालम है बारे।
1: बदलो बदलो आदत बदलो,
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अगले लोकगीत की फरमाइश लिखकर भेजिए आप सभी श्रोताओं ने। निकट बिजली घर कस्बा मीरगंज बरेली से ये हमारे बहुत ही नियमित और पुराने श्रोता हैं, कल्लू भाई मिस्त्री मोहम्मद नईम, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद नसीब, अनाविया, फातिमा, बाबर अजीम, हमजा, इनके साथ में हैं आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, यशपाल दिवाकर, ओमिंदपुरी गोस्वामी, मुकेश गिरी, राजीव पुरी गोस्वामी और इनके सभी साथी, करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन निसार, मस्तान बाबा, कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश रिंकी, कपिल बेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही, स्वाति, बहड़ी से अंजुम भाई, खालदा बेगम, कैकसा, दानिश, आदिल, सफक, आप सभी लोगों ने सुनना चाहे ये प्यारा सा गीत। लेकिन एक पत्र और मिला है, मोहल्ला तलई उल्डा जागीर से फजरुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजल भाई, बाबू फौजी, पीएसी नकड़िया से ताराचंद और बबली, रेगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दातरंगी से भागवत वर्मा, लेवी से गुलाबदास मानकपुरी, लच्छमपुर से विश्वनाथ साहू, मनकारा मंदिर बीडी कॉलोनी करगना बरेली से पन्नीलाल सागर, विनी सिंह मासूम, धर्मवीर मनमौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश उर्फ बंटी, रूबी भारती, रचना भारती, एकता भारती, दिव्य भारती, ममता चौधरी, ओमवती, बेटी खनक, नकुल सारांश और इनके तमाम साथी, अलीगंज रोड ग्राम मोहलिया से हसरत खां, हजमत खां, आजमत खां।

डालमिया रईस बानो, छावनी अशरफ खां अफसर खां छावनी से टंकी के पास से राम प्रसाद शर्मा, वंदना मनोरमा और इनके तमाम साथी।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: किसान भाइयों, अब समय ना है आपसे और बातचीत करें और मनोरंजन कराएं। खैर, अगले कार्यक्रम में आपसे नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने भैया हरद्वारीलाल वर्मा को यहीं पर दीजिए अनुमति। भैया बहनों, राम राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत हरद्वाज लाल वर्मा के साथ। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7 बज चुके हैं। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम कृषि पाठशाला, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर शुभम गंगवार से भेंटवार्ता। विषय है गर्मी के मौसम में बिना कोल्ड स्टोर के फसल बचाए, देशी और वैज्ञानिक व्यवस्था। इनसे बातचीत कर रही हैं क्षमा सक्सेना।
1: किसान साथियों, आज कार्यक्रम कृषि पाठशाला में हमारे साथ हैं शुभम गंगवार जी, और आज हमारी बातचीत का विषय है गर्मी के मौसम में कोल्ड स्टोरेज के बिना फसल को बचाएं, देसी और वैज्ञानिक जुगाड़। तो सबसे पहले शुभम जी, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो शुभम जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं गर्मी और किसान की चुनौती, इस विषय में आप क्या कहेंगे?
2: जी बिल्कुल, किसान भाई अपना खून पसीना एक करके फसल उगाते हैं, लेकिन जैसे ही पारा 40-50 डिग्री के पार जाता है, हमारी फसलें दम तोड़ने लगती हैं, सब्जियां मुरझा जाती हैं, फल सड़ने लगते हैं, उनकी चमक फीकी पड़ जाती है, और मंडी पहुंचते पहुंचते उनकी गुणवत्ता इतनी गिर जाती है कि व्यापारी उन्हें कौड़ियों का दाम मांगता है।
1: बिल्कुल।
2: अब हर गांव में कोल्ड स्टोरेज तो है नहीं, और जहां है वहां किराया और बिजली इतनी महंगी है कि छोटे किसान उसे वहन नहीं कर सकते, तो क्या करें? हम किसान भाई अपनी किस्मत के भरोसे बैठे रहे? बिल्कुल नहीं। आज हम विज्ञान और हमारे पूर्वजों के देसी तजुर्बे मिलाकर हम ऐसे रास्ता दिखाते हैं जिनसे हम अपनी फसल की उम्र यानी सेल्फ लाइफ को काफी हद तक बढ़ा सकते।
1: बहुत अच्छी बात कही शुभम जी कि हम अपने फसल की उम्र यानी शेल्फ लाइफ को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। तो शुभम जी, ये बताइए फसल खराब होने का वैज्ञानिक कारण क्या है और इसे समझना क्यों जरूरी है हमारे किसान साथियों के लिए?
2: जी, फसल बचाने से पहले यह समझना जरूरी है कि फसल खराब क्यों होती है।
1: जी,
2: सबसे पहले फील्ड लीट। अब आप दोपहर की धूप में अगर फसल को काटते हैं तो फल सब्जी के अंदर धूप की वजह से गर्मी जमा हो जाती है, इस शब्द को हम फील्ड लीट कहते हैं।
1: अच्छा।
2: यह अंदरूनी गर्मी फसल को अंदर से ही पकाती है और फिर इसे सड़ाना शुरू कर देती है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है श्वसन दर। फसल हम इंसानों की तरह जीवित होती है और सांस लेती है, यहाँ तक कि कटाई के बाद भी। हम लोगों की तरह फलों में भी गर्मी में सांस लेने की गति तेज हो जाती है, जिससे अंदर की संचित ऊर्जा खत्म होती है और अब वे जमीन से पोषक तत्व ले नहीं सकते, जिस वजह से वे जल्दी बूढ़े या सड़ने लगते हैं। तीसरा फैक्टर है वाष्पोत्सर्जन। फसलों और सब्जियों में 80-90% तक पानी होता है। गर्मियों में जैसे हमें पसीना आता है, शरीर से पानी की कमी हो जाती है, फलों और सब्जियों में भी यह समस्या है। गर्मी इस पानी को सोख लेता है। अब हम तो पानी पीकर अपनी गर्मी की आपूर्ति को पूरा कर लेते हैं, पर कटाई के बाद फल या सब्जियां इस पानी की कमी को पूरा नहीं कर पाते, जिससे सब्जियों के वजन में हल्की हो जाती है और मुरझा जाती है। और सबसे जरूरी फैक्टर होता है इथिलीन गैस। फल पकते समय इथिलीन गैस छोड़ते हैं। अगर एक फल सड़ रहा है तो वो एथिलीन गैस छोड़कर आसपास के बाकी फलों को भी पका देता है, जिस वजह से वो जल्दी सड़ने लगते हैं। जैसे हमारे गांव में एक मुहावरा है कि खरबूजा को देख के खरबूजा पकने लगा, तो एक फल दूसरे फल को भी खराब करने शुरू कर देता है।
1: बिल्कुल। शुभम जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि फसल की उम्र बढ़ाने के लिए कटाई का प्रबंधन जरूरी है। हमारे किसान भाई अक्सर फसल तैयार होते ही उसे काटने की जल्दी में रहते हैं। आप विस्तार से बताइए हमारे साथियों को कि कटाई करते समय किन किन तकनीकी बातों का ध्यान रखना चाहिए।
2: बिल्कुल, कटाई सिर्फ फसल को पौधे से अलग नहीं करती, बल्कि उसे उसके अलग सफर के लिए तैयार करना है। मैं इसमें कुछ मुख्य बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहला और सबसे जरूरी है समय का सही चुनाव। फल या सब्जियों को हमेशा सुबह या शाम के समय तोड़ना या काटना चाहिए। गर्मियों के मौसम में फसल की सबसे बड़ी दुश्मन है फील्ड लीट, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया। सुबह की कटाई, वैज्ञानिक दृष्टि से कटाई का

0: सबसे अच्छा समय सुबह 4 बजे से 7-8 बजे तक है। रात की ओस और कम तापमान के कारण सुबह फसल ज्यादा ठंडी और ताजी होती है।
1: जी
0: सुबह काटी गई सब्जी का वजन भी ज्यादा निकलता है क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में नमी होती है। दोपहर से परहेज करें, सुबह 10 बजे के बाद सूरज अपनी तपिश बढ़ाने लगता है।
1: जी
0: इस समय कटाई करने से फसल के अंदर गर्मी जमा हो जाती है जिसके बाद निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यह गर्मी फसल को अंदर से पकाना शुरू कर देती है।
1: जी
0: दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है मैच्योरिटी इंडेक्स, या फिर जब हमें कब तोड़ना है। हर फसल को काटने का एक सही समय होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: किसान भाई ज्यादा मुनाफे के चक्कर में या तो सारी सब्जी एक साथ तोड़ लेते हैं या जल्दी तोड़ लेते हैं या उन्हें देर तक पकने देते हैं। जैसे जैसे टमाटर,
1: हाँ
0: टमाटर को अगर हमें दूर की मंडी भेजना हो तो हम उसे एक ब्रेकर स्टेज पे तोड़े
1: जी
0: जब
1: जी
0: टमाटर हल्का गुलाबी या पीले रंग का होने लगे। अगर टमाटर को हमें लोकल मार्केट में ही बेचना है तो उसका लाल होने का इंतजार करें। पत्तीदार सब्जियां,
1: जी
0: पालक, मेथी, धनिया, इन सबको फूल आने के पहले ही काट लेना चाहिए वरना वे सख्त हो जाती हैं, स्वाद कड़वा हो जाता है। ककड़ी, खीरा, इन्हें हमेशा कच्ची और नर्म अवस्था में ही तोड़ लेना चाहिए। अगर इनका बीज सख्त हो गया तो बाजार में दाम नहीं मिलेंगे। तीसरा सबसे जरूरी चीज है कटाई के औजार और तकनीक। अक्सर हम गलती करते हैं कि हम फलों को हाथों से ही जोड़ लगाकर या सब्जियों को हाथों से ही जोड़ लगा कर तोड़ लेते हैं जिससे पौधे और फल दोनों को चोट पहुंचती है।
1: जी
0: कटाई के लिए हमेशा हमें तेज धार वाले चाकू का इस्तेमाल करना चाहिए। औजार हमेशा साफ होना चाहिए ताकि उसमें क्रॉस कंटामिनेशन या संक्रमण ना फैले।
1: संक्रमण ना
0: फल पर एक छोटा सा नाखून या निशान, खरोच भी फंगस और बैक्टीरिया के लिए दरवाजे खोल देता है। ऐसी खरोच वाली सब्जियां बहुत जल्दी सड़ती हैं। अगर उसमें कोई मैकेनिकल इंजरी आ गई है तो वो जल्दी खराब होने लगेगी।
1: जी
0: बैंगन या मिर्च जैसी फसलों को हमेशा थोड़े लंबे डंठल के साथ तोड़ना चाहिए जिससे वो ज्यादा समय तक ताजी रह सके।
1: बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप हमारे साथियों को, और हमारे किसान साथी कार्यक्रम हमारा सुनते हैं तो जानकारी के लिए सुनते हैं, क्योंकि उन्हें नई नई तकनीकों के बारे में नई नई जानकारी मिलती है तो वो अपनी खेतीबाड़ी अच्छे से कर सकते हैं।
0: जी, मैं आपको एक और तकनीक बताऊंगा, उसको बोलते हैं प्री कूलिंग। प्री
1: जी
0: कूलिंग जो जैसे मैंने बताया कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन है गर्मी। प्री
1: जी
0: कूलिंग में हम क्या करते हैं, खेत के आसपास घने पेड़ की छाया में तिरपाल बिछाकर अगर मुमकिन हो सके तो सब्जियों को ठंडे पानी से हल्का सा कुछ देर के लिए छोड़ दें जिस वजह से उसके अंदर जो फील्ड हीट पहले से जमा हो रखी है
1: जी
0: वो बाहर निकल जाए और उसकी श्वसन दर कम हो जाए। अगर ये सब नहीं हो पाता है तो हम ZECC जीरो एनर्जी कूल चैम्बर का प्रयोग करके हम उसमें प्री कूलिंग करते हैं। प्री कूलिंग का सिर्फ मेन फैक्टर यही होता है कि वो फील्ड हीट को वैसे कैसी भी किसी भी तरह से वहां से रिमूव कर दे।
1: जी
0: और उसके बाद आखिर में हम अपने फल या सब्जी को ग्रेडिंग भी करना बहुत जरूरी है। कटाई के तुरंत बाद फसल को 3 भागों में बांट दें, उत्तम, मध्यम या ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। ए
1: अच्छा
0: ग्रेड
1: अच्छा
0: में बिना दाग वाली एक समान आकार की, बी ग्रेड में थोड़ा कम क्वालिटी की, और सी ग्रेड में जो हम मंडी नहीं ले जा सकते या गांव में बेचना चाहते हैं या इस तरह की सब्जियों को हम ग्रेडिंग कर दें। अगर हम ग्रेडिंग नहीं करेंगे तो जैसा मैंने बताया कि एक सब्जी दूसरी सब्जी को खराब कर देती है, इसलिए ग्रेडिंग करना बहुत जरूरी है।
1: जी शुभम जी, जैसे आपने अभी जिक्र किया शुभम जी जैसा आपने अभी जिक्र किया शून्य ऊर्जा कूल चैम्बर यानी ZECC का, ये सुनने में बड़ा वैज्ञानिक लगता है, लेकिन क्या हमारे साधारण किसान भाई जिनके पास ज्यादा संसाधन नहीं है इसे खुद बना सकते हैं? ये जुगाड़ असल में है क्या?
0: यह तकनीक भारतीय कृषि अनुसंधान IRI दिल्ली द्वारा विकसित की गई है। देखिए, शून्य ऊर्जा का सीधा मतलब है जीरो बिजली का बिल।
1: जी
0: यह पूरी तरह से कुदरती नियमों के पर काम करता है।
1: अच्छा,
0: IRI ने इसे खास तौर पर उन इलाकों के लिए बनाया है जहां बिजली कम आती है या कोल्ड स्टोरेज नहीं है। आप इसे ईंट, बालू और पानी देसी तरीके से बना के इसे देसी कोल्ड स्टोरेज कह सकते हैं। इसको बनाने के लिए लगभग 400 से 500 कच्ची या पक्की ईंटें चाहिए, थोड़ा रेता, सीमेंट और बांस की लकड़ी, जूट की बोरियां, बस इतना। जहां तक जगह की बात है, इसे हमेशा ऐसी जगह बनाना चाहिए जहां सीधी धूप ना पड़े और ना ही यहाँ इसे हमेशा ऐसी जगह बनाना चाहिए जहां सीधी धूप ना पड़ती हो,
1: जी
0: जैसे किसी बड़े पेड़ की छांव या छप्पर के नीचे। इसे बनाने के लिए 6x4 फीट की जगह काफी होती है। इसे बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले चरण में जमीन को समतल करें और उस पर ईंटों की परत बिछाकर एक चबूतरा तैयार करें।
1: अच्छा
0: इसकी
1: अच्छा
0: लंबाई 1.5 मीटर x1 मीटर तक रख सकते हैं। दूसरे चरण में अब इस चबूतरे पर दीवार उठाना शुरू करें, लेकिन यहाँ एक खास बात है, आपको यहाँ पर दोहरी दीवार बनानी है। पहली दीवार और दूसरी दीवार के बीच 3 इंच का खाली स्थान छोड़ना है।
1: जी
0: और दीवार एक दूसरी जरूरी चीज है कि दीवार पर आपको प्लास्टर नहीं करना है। तीसरा चरण, इस दीवार को आप 2 से 2.5 फीट ऊंचाई तक लेके जाएं। चौथे चरण में आप जब वो दीवारों के बीच हमने 3 इंच की खाली जगह छोड़ी थी उसमें नदी की बारीक रेत भर के छोड़ दें। ध्यान रहे,

0: रेत में कंकड़ पत्थर आदि ना हो। पांचवें चरण में आप इसको ऊपर ढक्कन लगा के या बांस की डंडियों से फ्रेम बना के उसको बस बंद कर दें।
1: तो शुभम जी, ढांचा तो खड़ा हो गया, लेकिन ये ठंडा कैसे होगा? इसमें सब्जियां रखने का सही तरीका क्या है?
0: जी, अब आता है सबसे जरूरी काम। जैसे ही ढांचा तैयार हो गया, आप दीवारों में भरी हुई रेत को पानी से अच्छी तरह से तर कर दें। ऊपर से जूट का ढक्कन को भी गीला कर दें। सब्जियों को रखने के लिए आप प्लास्टिक के छेद वाली क्रेट्स का इस्तेमाल करें और उन क्रेट्स को चैम्बर के अंदर एक के ऊपर रख दें, ऊपर से गीला ढक्कन लगा दें।
1: जी सर, शुभम जी, अक्सर किसानों के मन में सवाल आता है, इसमें ठंडक पैदा कैसे होती है? क्या हमें इसमें बर्फ डालनी पड़ेगी?
0: नहीं, बर्फ की कोई जरूरत नहीं है।
1: अच्छा,
0: इसके पीछे वाष्पीकरण या एवोपरेशन का विज्ञान काम करता है। जैसे जब हमें गर्मी में पसीना आता है, हम बाहर दौड़ के आते हैं धूप में या

0: काम करता है। जैसे जब हमें गर्मी में पसीना आता है, हम बाहर दौड़ के आते हैं धूप में या कुछ भी करते हैं तो हमें पसीना आता है,
1: जी जी जी
0: पर जब हम थोड़ी देर पंखे में बैठ जाए तो पसीना उड़ने लगता है और हमें ठंडा महसूस होता है, तो वो वाष्पीकरण या एवोपरेशन के कारण होता है। हम यहाँ पर भी उसी विज्ञान का काम करेंगे।
1: अच्छा
0: जब
1: अच्छा
0: बाहर की गर्म या शुष्क हवा गीली ईंटों या रेत से होकर गुजरती है तो पानी भाप बनकर उड़ता है। विज्ञान कहता है कि जब भी पानी भाप बनकर उड़ता है तो वह अपने आसपास की गर्मी को सोख लेता है। इससे चैम्बर के अंदर का तापमान बाहर के मुकाबले 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर की नमी या ह्यूमिडिटी जिसको मैं बोलूं, वो भी बहुत अच्छी 90% तक बनी रहती है, जिससे
1: अच्छा
0: सब्जियां
1: अच्छा
0: सूखती नहीं है।
1: शुभम जी, आपने जीरो एनर्जी कूल चैम्बर के बारे में बहुत विस्तार से बताया, लेकिन हमारे कई छोटे और सीमांत किसान ऐसे हैं जिनके पास ईंटों का ढांचा बनाने के लिए शायद पर्याप्त जगह या संसाधन ना हो। क्या कोई ऐसा और भी आसान तरीका है जिसे वे सीधे अपनी रसोई या बरामदे के कोने में इस्तेमाल कर सकते हैं?
0: जी बिल्कुल, इसके लिए हमारे पूर्वजों का सदियों पुराना मटका और बालू वाला जुगाड़ आज भी उतना ही वैज्ञानिक है। इसे आप घरेलू मिनी कोल्ड स्टोरेज भी कह सकते हैं। यह उन किसानों के लिए वरदान है जो अदरक, हरी मिर्च, धनिया, लहसुन जैसी महंगी सब्जियों का उत्पादन करते हैं और थोड़े थोड़े अंतराल में मंडी ले जाना चाहते हैं।
1: जी जी
0: इसकी विधि जितनी सरल है उतनी ही वैज्ञानिक तरीके से सटीक है।
1: अच्छा
0: इसके बनाने के 5 मुख्य चरण हैं। सबसे पहले आप मटके का चुनाव करें। सबसे पहले एक बड़ा मिट्टी का मटका लें।
1: अच्छा
0: ध्यान रहे
1: अच्छा
0: मटका पुराना ना हो, क्योंकि पुराने मटके में छिद्र बंद हो जाते हैं। मटके में नीचे कोई छेद नहीं होना चाहिए, वरना पानी अंदर चला जाएगा और सब्जियां गीली हो जाएंगी।
1: जी
0: आधार तैयार करें। एक बड़ा प्लास्टिक का टब, लोहे का तसला या जमीन में एक गड्ढा बना लें और इसमें 4-5 इंच मोटी बालू या रेत की परत बिछाएं। मटके को उस बालू के ठीक बीच में रखें और चारों तरफ से मटके के आधे हिस्से तक बालू भर दें, यानी मटका बालू से आधा धंसा हुआ होना चाहिए।
1: अच्छा
0: नमी
1: अच्छा
0: का प्रबंधन, उस बालू को पानी से अच्छी तरह भिगो दें। ध्यान रहे बालू हमेशा गीली रहे, लेकिन मटके के अंदर पानी ना भरे। ढक्कन और कवर, मटके के ऊपर आप किसी भी तरह का ढक्कन या कवर लगा सकते हैं या जूट की बोरी लगा सकते हैं।
1: शुभम जी, यहाँ एक सवाल मन में आता है। कुछ लोग मटके के अंदर पानी भर देते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मटका खाली रखना है और बाहर की बालू को गीला करना है, ऐसा क्यों?
0: बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप मटके के अंदर पानी भरेंगे तो वह सिर्फ पानी को ठंडा करेगा, लेकिन हमें हवा को ठंडा करना है ताकि सब्जियां ताजी रहें। जब बालू का पानी भाप बनकर उड़ता है तो वह मटके की बाहरी दीवारों से गर्मी खींचता है। चूंकि मिट्टी का मटका रोम छिद्र वाला होता है तो यह क्रिया लगातार चलती रहती है। इससे मटके के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से काफी कम हो जाता है।
1: अच्छा। और हमारे किसान भाई इसमें कौन कौन सी फसलें और कितने समय तक सुरक्षित रख सकते हैं?
0: यह विधि खास तौर पर उन फसलों के लिए है जिनमें नमी कम होने से उनकी कीमत गिर जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हरी मिर्च, जो अगर बाहर 2-3 दिनों के लिए धूप में रख दें तो वो सूखने लगती है, पर इस मटके विधि से 10-12 दिन तक ये मिर्चें बिल्कुल कड़क और हरी रहेंगी। नींबू का छिलका गर्मी में काला पड़ने लगता है, सूखने लगता है। इस तकनीक से आप नींबू को 20 दिन तक रसीला रख सकते हैं। अदरक, अरबी, इन्हें भी आप हफ्तों हफ्तों तक सूखने से बचा सकते हैं। हरा धनिया, पुदीना, हरा धनिया कटाई के तुरंत बाद ही मुरझाने लगता है, पर अगर मैं मटके विधि में हरा धनिया को रख दूंगा काफी दिनों तक ताजा रहेगा।
1: जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और शुभम जी, क्या इस तकनीक में कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जिनसे किसानों को बचना चाहिए?
0: जी हाँ, इसमें तीन तीन मुख्य सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। सीधी धूप से बचाओ, इस सेटअप को कभी भी सीधी धूप में ना रखें।
1: अच्छा।
0: इसे घर के सबसे ठंडे और हवादार कोने में रखें। हवा का संचार, हवा जितनी ज्यादा मटके से टकराएगी मटका उतना ज्यादा ठंडा रहेगा। मटके को किसी बंद अलमारी बक्से में रख देंगे तो हवा उससे नहीं टकराएगी और हवा मटका ठंडा नहीं होगा।
1: अच्छा।
0: अधिक पानी से बचाओ, बालू को सिर्फ गीला करना है, ना कि उसमें कीचड़ कर देनी है। अगर आप उसमें बहुत सारा पानी डाल देंगे तो वहाँ कीचड़ हो जाएगी, जो फफूंदी को आकर्षित करेगा और फफूंदी लगने का डर रहेगा।
1: शुभम जी, अब तक हमने बड़े जुगाड़ों जैसे कूल चैम्बर और मटका तकनीक की बात की, लेकिन हर फसल का अपना मिजाज होता है। जैसे इंसान को अलग अलग मौसम पसंद है, वैसे ही फसलों की जरूरतें भी अलग अलग होती हैं। हमारे किसान भाई कई तरह की फसलें उगाते हैं, कोई प्याज उगाता है, कोई आलू, तो कोई हरी सब्जियां। तो शुभम जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि प्रमुख फसलों के लिए विशेष सावधानियां क्या क्या हैं?
0: जी, जैसे प्याज और लहसुन, अगर लहसुन के किसान हैं तो उन प्याज और लहसुन को नमी नहीं चाहिए बल्कि उन्हें साफ हवा चाहिए। इसके लिए बांस या खपच्ची से जमीन से 1-2 फीट ऊपर मचान बनाएं और उस पर प्याज को लटका दें या परत बिछा दें। कुछ दिनों तक इसको हवा का अच्छा अगर आमागमन मिलेगा तो प्याज हमारा बढ़िया चलता रहेगा। आलू के लिए कोल्ड स्टोरेज तो सबसे अच्छा है, पर अगर आपके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है तो अंधेरे ठंडे हवादार कमरे में रख दें, जमीन पर सूखे नीम की पत्तियों की एक परत बिछा दें,
1: जी
0: इसके ऊपर आलू की ढेरी बनाएं और पुआल या पराली

0: से ढक दें, कमरे में जूट के पर्दे लगाएं, उसको गीला कर दें। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे मैंने अभी बताया, उनको मॉइस्चर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो इनको बांस की टोकरी में गीली घास के नीचे जूट की बोरियों के आसपास रख दें, जिस वजह से इनका हर 2-3 घंटे में पानी का छिड़काव करें और जिस वजह से इनकी सेल्फ लाइफ काफी बढ़ जाएगी।
1: जी, अंत में शुभम जी, आप हमारे कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं से क्या कहना चाहते हैं?
0: किसान भाइयों, ये सब छोटे छोटे बदलाव आपकी आय को बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, खेती में जितना महत्व पैदावार करना है उतना ही महत्व बचाव करना भी है। आपकी एक सावधानी आपकी पूरी साल की मेहनत को सड़ने से बचा सकती है। उम्मीद है आपको आज की जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी।
1: अच्छी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि पाठशाला। इसके अंतर्गत डॉक्टर शुभम गंगवार से बातचीत कर रही थी क्षमा सक्सेना। विषय था, गर्मी के मौसम में बिना कोल्ड स्टोर के फसल बचाए, देसी और वैज्ञानिक व्यवस्था। 100.4 FM पर ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुनिए। ग्राम लभारी थाना हजरतपुर जनपद बदायूं से रामकिशोर सूचित करते हैं कि उनकी पत्नी संजू 27 अप्रैल 2026 से लापता हैं, जिनकी आयु लगभग 30 वर्ष, ऊंचाई 4.5 फीट, रंग सांवला, चेहरा गोल, आंख और बाल काले, लाल साड़ी, फूलदार काला ब्लाउज पहने हैं। जिस किसी को यदि इनके बारे में कोई जानकारी हो तो कृपया इस पते पर सूचित करें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक अन्य सूचना, ग्राम बक्सेना थाना हजरतपुर जनपद बदायूं से मुकेश कुमार सिंह सूचित करते हैं कि उनकी पत्नी आरती 27 मार्च 2026 से लापता हैं, जिनकी आयु लगभग 27 वर्ष, ऊंचाई लगभग 5 फुट, रंग गेहुआ, चेहरा गोल, आंख और बाल काले, ये काली साड़ी और लाल ब्लाउज पहने हैं। यदि किसी को इनके बारे में कोई जानकारी हो तो कृपया इस पते पर सूचित करें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: खेती किसानी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। कहा, राष्ट्रहित की भावना के साथ करें बिजली और ईंधन की बचत। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2000

0: 2006 की परीक्षा, 2026 की परीक्षा। विद्यार्थियों को अपनी पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर। अगले वर्ष से ऑनलाइन होगी परीक्षा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए महंगा। प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला। मैच खत्म होने तक लागू किया गया ट्रैफिक डायवर्जन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए से अधिक की 79 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, टूल किट और आवास की चाबियां भी प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में तेजी से हुए विकास के चलते आज उत्तर प्रदेश देश के विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। पश्चिम एशिया संकट का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से प्रधानमंत्री की अपील का पालन करते हुए बिजली और ईंधन की बचत करने और छोटे छोटे प्रयासों से देश को मजबूती देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नेशन फर्स्ट की भावना के साथ हर नागरिक को देश हित में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
1: कि ईंधन से जुड़े हुए मामले हो, खाद्यान्न से जुड़े हुए मामले हो, फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ मामला हो, या फिर मैं सभी सराफा व्यवसायियों से भी अपील करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि विदेश से सोना मंगाने की बजाय हमारे घरों में जो सोना है उसी की मरम्मत कराना, हम सब अगर उस दिशा में कार्य करेंगे, देश का पैसा बचाना है, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को उभारने का काम करेंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को दिशा देने में प्रबुद्ध जन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास को गति देने के साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार की गारंटी देने का काम कर रही है।
1: आज स्वास्थ्य की सुविधा है, इंसेफ्लाइटिस बुरी तरह समाप्त, नौजवान के लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, उसके रोजगार की गारंटी है, नौकरी की गारंटी है, बेटी की सुरक्षा की गारंटी भी है, विकास की भी गारंटी है। प्रबुद्ध जनों से मेरी यही अपील है, इसको चर्चा परिचर्चा का विषय बनाना चाहिए।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। श्री प्रधान ने बताया कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से ऑनलाइन यानी सीबीटी के माध्यम से होगी।
2: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए, 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
2: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं। विंडो
0: दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। राज्य के प्रमुख शहरों में अब पेट्रोल की कीमत औसतन 95 से 97 रुपए प्रति लीटर और डीजल की दरें लगभग 88 से 91 रुपए प्रति लीटर हो गई हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। प्रदेश में तेज आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से हुई जनधन की हानि को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख

0: लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पशुहानि से प्रभावित लोगों को भी नियम के अनुसार सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने और हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम को 2400 घंटे सक्रिय रखते हुए राहत और सहायता कार्यों की निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार प्रदेश के 26 जनपदों में खराब मौसम के कारण 111 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 72 लोग घायल हुए हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर आज से बिना टोल शुल्क के यात्रा की सुविधा खत्म हो गई है। कल रात 12 बजे से इस एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क मार्ग पर 15 दिनों के लिए बिना टोल टैक्स के यात्रा करने की सुविधा दी थी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में 29 मई को माता भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित होगा। ये ध्वजारोहण राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही साध्वी रितंभरा के हाथों किया जाएगा। आयोजन को लेकर मंदिर परिसर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले इस कार्यक्रम में करीब 2000 महिलाओं को आमंत्रित किया जाएगा। आईपीएल में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से हो रहा है। मैच को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यातायात को सुचारू रखने के लिए इकाना स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के लखनऊ कार्यालय में आज एक दिवसीय समीक्षा शिविर का आयोजन किया गया। सम्मेलन में उप क्षेत्रीय कार्यालय गोंडा, कानपुर, झांसी, फतेहपुर और लखनऊ के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। राज्य राजधानी क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के उप महानिदेशक डॉ सुचिता गुप्ता ने बताया कि पारिवारिक आय के सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, जो अगले साल 31 मार्च 2027 तक चलेगा। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों को सरकारी नीतियों और योजनाओं को बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा।
2: ये सर्वेक्षण जरूरी था क्योंकि योजनाओं को बनाने में कहीं ना कहीं हमें इनकम की जरूरत होती है, और अगर हमें इनकम सही से मिल रही है तभी हम बहुत सारी योजनाओं में हम टारगेट बना पाएंगे, क्योंकि हर इनकम क्लास के जो लोग होते हैं उनकी जरूरतें अलग अलग तरह की होती है, तो सभी के लिए योजनाएं बन पाए अच्छी तरह से और टारगेट किया जा सके किस तरह की योजनाएं कितने लोगों को चाहिए होंगी, कितने हाउस होल्ड को चाहिए होंगी, तभी हमारा डेटा सही मायने में यूजफुल होगा।
1: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए श्री शाही ने कहा कि खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, जिसका ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार की प्राथमिकता किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि खेतों में हरी खाद बढ़ाने और रासायनिक खाद के कम प्रयोग का प्रयास किया जा रहा है। अम्बेडकर नगर में आज सभी 899 ग्राम पंचायतों ने एक साथ ग्रीन चौपाल का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पेट्रोल डीजल की खपत घटाने, हरित परिवहन को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए। इस दौरान ग्राम प्रधानों ने पेट्रोल डीजल की खपत घटाने और कार पुलिंग इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के साथ ही हरित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने का सामूहिक प्रण लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। कहा, राष्ट्रहित की भावना के साथ करें बिजली और ईंधन की बचत। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2026 की परीक्षा। विद्यार्थियों को अपनी पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर। अगले वर्ष से ऑनलाइन होगी परीक्षा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए महंगा। प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला। मैच खत्म होने तक लागू किया गया ट्रैफिक डायवर्जन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम अनुरोध गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आपके बहुत सारे पत्र हम तक पहुंच चुके हैं जिसमें आपने अपनी पसंद के गीतों को सुनने का अनुरोध किया है। ये पहला पत्र हम तक पहुंचा औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप और राशि राजेश का। आप हैं मोहल्ला तलैया उल्ला जागीर से फजुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई, माजिद नन्ने शानू, गैगटा काशी धर्मपुर बरेली से फहीम खां सिद्दीकी, सिद्दीक अली साबिया, दूनेनगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया और पीर बहोड़ा बरेली से आजाद खान दिलशाद, मुस्तकीम तबस्सुम, मेहरुन्निशा। आपके साथ ठिरिया निजावत खां से आफ्ताब भाई और दानिश। वजीरगंज जिला बताइयों से प्रेम कुमार वाष्णे, सुशीला कमल, प्रभात अमरीश, सलोनी सचिन, नीरू देविका, कार्तिक बेदरिचा और ऐश्वर्य कमल वाष्णे। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन, बबलू कैप्टन और निसार। साथ में है मस्तान बाबा। ड्राइवर कॉलोनी निजामबाद से शेख अल्लाबख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, शेख बहाव, नूर जहां बानो। बदलापुर मुंबई से बंटी कमांडकर, सुभाष पोतेवार। परीमहल कासगंज से इसी गीत को सुनना चाहते हैं आबाद खान, गजाला खान, अल्ताफ नबील, एम असलम सैफी। गंज टुंडवारा से शमसुल कुमार राही। बेला डांडी दत्तागंज से सुमित यादव, महेश बाबू, सौरभ, अमित, अखिलेश, आलिम खान और ठाकुर संदीप सिंह। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म निकाह का ये गीत जिसको गाया है महेंद्र कपूर ने। गीत के बोल हसन कमाल के, संगीत निर्देशन रवि का।
2: अभी अलविदा मत कहो।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हम तक पत्र पहुंचे हैं। ये पहला पत्र है छावनी अशरफ खान होली चौक बरेली से रामप्रसाद शर्मा। आपके साथ हैं वंदना शर्मा, मनोरमा देवी, अजय शर्मा, वंश, कनिष्क और आपके परिवार के सभी लोग। गढ़ैया बरेली से कैसर शमसी, अजीम शमसी, सलीम, नवेद, रजिया शमसी। आप हैं अलीगंज सिरौली रोड ग्राम मोहलिया से हसरत खान, हशमत खान, अजमत खान, डालमिया, रईस बानो, नसरीन, निशा बानो। ये पत्र हम तक पहुंचा बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास चनेटी बरेली से विनेश कुमार, रागिनी श्रीवास्तव और मुस्कान का। दौलतबाग मुरादाबाद से इसी गीत को सुनना चाहते हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी। गांव चौहल्दा बागपत से संजय ढिंगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल। आप हैं सेक्टर नंबर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म सरस्वती चंद्र का ये गीत जिसको गाए हैं मुकेश और लता मंगेशकर ने। गीत के बोल इंदिवर के हैं, संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र 100.4 एफएम और सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम का अगले गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी, मुस्कान रेडियो क्लब ग्राम करील से इंतजार भाई अंसारी, रहमान भाई, सकावत भाई, इस्तखार मोहम्मद दिलशाद, अब्दुल सेन, अख्तर रजा, शराफत और प्यारी हिना, परिमहल कासगंज से आबाद खान, गजाला खान, अल्ताफ नवील, असलम सैफी, गंज टुंडवारा से शमसुल कमर राही, पीपरपारा पालचुआ मुंगेली, छत्तीसगढ़ से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी योगिता, नितिन वंशिका दिवाकर, आप हैं आदर्श नगर मलोट, पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। ये पत्र हम तक पहुंचा शहीद टेकराम चौक हथबंद करेली से भाई रामाधार ध्रुव, भूपेश कुमार ध्रुव का, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं भारद्वाज रेडियो श्रोता संघ फूलबाग किला छावनी बरेली से विशन दत्त भारद्वाज, शिवदत्त भारद्वाज, गंगादत्त, विक्की, वर्षा, कविता, कल्पना, ईशु, भावना, आदित्य, देवकी देवी भारद्वाज, शिप्रा, नीलम, मुन्नी देवी और श्री राम राठौर। आपके साथ हैं संतोष और सूरज। कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखीलाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य। इसी गीत को सुनने का अनुरोध किया है ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं तहसील दातागंज से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनील।

सूरजश्री और गुनगुन यादव, बिलराम गेट कासगंज से आप हमारे श्रोता एम असलम सैफी, जैमुन निशा बेगम, अकरम सैफी, आवाज खान, आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म राजकुमार का ये गीत जिसको अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर ने। गीत के बोल हैं शैलेंद्र के और संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं के अनुरोध पर कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार, नुसरत फातिमा, अबरार अहमद, इसरार अहमद, इकबाल अहमद, तस्लीम रजा और मुन्ना भाई। आप हैं मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर जिला पीलीभीत से विमल वर्मा, विनय वर्मा और आपके परिवार के सभी सदस्य। एटा रोड गंज डुंडवारा से बीपी गौतम, सरिता गौतम, अनन्या, ऐश्वर्या, श्रेय, कुश, रिंकू, टिंकू और रीना। ये हमारे श्रोता नखासा रोड उसैत बदायूं से मसरूर खान, सरफराज खान, विकास सक्सेना, अमन अब्बासी, करमवीर गोस्वामी, प्रवीण रावत और चंचला कश्यप। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश और सौरभ शर्मा। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। आप हैं मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से वक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीन, प्रवीण, रोजी प्रवीण, बिट्टू, साजा रानी और हिना कौसर। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म अभिमान का ये गीत जिसको गाया है किशोर कुमार ने। गीत के बोल मजरूर सुल्तानपुरी के और संगीत निर्देशन एस टी बर्मन का।

आप हैं खमरिया बिलासपुर छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, मानस साहू और प्रतीक कुमार, इस्लामपुरा सनावत से, पाकिस्तान रेडियो श्रोता संघ से, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा। आप हैं कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी। ये पत्र हम तक पहुंचा ग्राम मल्लापुर पोस्ट बुधवाई जनपद बदायूं से। हमारे श्रोता सत्येंद्र यादव, जेके यदुवंशी, राजपाल यादव, अभिषेक, अतुल, कुलदीप और उथप्पा का। आप हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म यादों की बारात का ये गीत, जिसको गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने। गीत के बोल मजरू के हैं और संगीत निर्देशन राहुल देव बर्मन का।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम अनुरोध गीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, आइए अब आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे हमारे अगले कार्यक्रम।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं और अब प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम।
1: हिंदी कार्यक्रम के आज के अंक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार,

0: सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोताओ, आज के इस अंक में हम आपको एक वार्ता सुनवा रहे हैं जिसका विषय है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक अवदान। वार्ताकार हैं श्री सुशील अवस्थी।
1: हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आदर के साथ लिया जाता है। वो युग दृष्टा तथा युग सृष्टा साहित्यकार थे। रायबरेली जनपद के दौलतपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। द्विवेदी जी ने गद्य तथा पद्य दोनों विधाओं में 60 अनुदित एवं मौलिक कृतियों की रचना की। द्विवेदी जी का साहित्यिक महत्व इस प्रचुर साहित्य के कारण नहीं अपितु एक युग निर्माण करने से हुआ। उन्होंने युग सापेक्ष भाषा शैली और विषय निर्धारण करते हुए उस काल का नेतृत्व किया। स्वतंत्रता के समय में हिंदी शासन द्वारा तिरस्कृत थी। कवि भक्ति और श्रृंगार की कविताएं ब्रजभाषा में लिखकर कवि कर्म की इतिश्री समझ लेते थे। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद के अभ्युदय से हिंदी गद्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रगति अवश्य हुई थी, किंतु अचानक भारतेंदु के अवसान के बाद नेतृत्व के अभाव में सब कुछ लड़खड़ाने लगा था। ऐसी विषम परिस्थिति में आचार्य द्विवेदी ने बागडोर संभाली। उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन सन 1902 से 1920 ईस्वी तक किया। इस काल में हिंदी जगत को जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ वही विकासशील हिंदी का आधार बना। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को इसी कारण से युग सृष्टा कहा गया। नागरी प्रचारणी सभा ने सन 1932 में उन्हें हिंदी के सर्वप्रथम आचार्य का सम्मान दिया। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी के नए युग का निर्माण किया। आचार्य द्विवेदी संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, मराठी एवं गुजराती इत्यादि भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध करने के लिए अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट रचनाकारों और उनकी कृतियों पर ध्यान दिया। अन्य भाषाओं की अनेक कृतियों का उन्होंने अनुवाद किया। संस्कृत की कृतियों में महिम्न स्तोत्र, गंगा लहरी, रघुवंश, भामिनी विलास, अमृत लहरी, कुमार संभव प्रमुख हैं। वेकन विचार, रत्नावली, जल चिकित्सा, स्वाधीनता और शिक्षा शास्त्र तथा बंगाल में हिंदी महाभारत का द्विवेदी जी ने अनुवाद किया। इन अनुवादों का उद्देश्य हिंदी की विविध विधाओं में मौलिक कार्य शुरू हो इसके लिए हिंदी रचना धर्मियों के समक्ष मॉडल प्रस्तुत करना था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी की वास्तविक समालोचना का आरंभकर्ता माना जा सकता है। उन्होंने कई आलोचना प्रधान कृतियों का प्रणयन किया। उन कृतियों में नैषध चरित चर्चा, हिंदी कालिदास की समालोचना, लाला सीताराम की रचनाओं की आलोचना, हिंदी रीडर की आलोचना, कालिदास की निरंकुशता, समालोचना समुच्चय आदि प्रमुख हैं। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का ऐतिहासिक महत्व खड़ी बोली का परिष्कार है। संस्कृत, अंग्रेजी तथा उर्दू फारसी प्रेमियों के पूर्वाग्रहों को अस्वीकार करते हुए उन्होंने हिंदी गद्य की भाषा का स्वरूप निर्धारण किया। युग नायक द्विवेदी ने हिंदी व्याकरण की एक कसौटी तैयार की और भाषा की शुद्धता पर हिंदी जगत में एक बहस ही छिड़वा दी। फलस्वरूप भाषा की गलतियों में सुधार हुआ और वह व्याकरण सम्मत बन सकी। द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा और उसके साहित्य को हर प्रकार से संपन्न बनाने के लिए उपयोगी विषयों पर भी अनेक कृतियों का प्रणयन किया। संपत्ति शास्त्र नामक उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र विषय प्रधान है। आचार्य द्विवेदी जी ने उपेक्षित महिलाओं की ओर भी ध्यान दिया। उन्होंने अपने दौलतपुर गांव में नारी मंदिर बनवाकर उसमें सरस्वती और लक्ष्मी के साथ अपनी पत्नी की मूर्ति स्थापित कराई थी। सन 1928 में उन्होंने अवध के किसानों की बर्बादी शीर्षक पुस्तक की रचना कर अपने विद्रोही स्वभाव का स्वतः परिचय दिया था। द्विवेदी जी ने कविता संस्कृत काव्यों के अनुवाद से प्रारंभ की। वह निरंतर संस्कृत साहित्य का अध्ययन करते रहे। जब वह मात्र 21 वर्ष के थे तब उन्होंने संस्कृत कवि पुष्पदंत के श्री महिम्न स्तोत्र का काव्य रूपांतर ब्रजभाषा में किया। यह उनकी पहली काव्य कृति थी। विनय विनोद आचार्य द्विवेदी का तीसरा काव्य रूपांतर है। उसमें कवि की मूल भावना को तो संजोए रखा है, शेष सारी भाव संपदा द्विवेदी जी की मौलिक है। देवी स्तुति शतक में कवि ने चंडी रूप को आलंबन बनाते हुए अपनी भक्ति भावना व्यक्त की है। इस कृति के नामकरण के अनुसार ही इसमें 100 पद संकलित हैं। आचार्य द्विवेदी ने भारत

0: अत्यंत की भांति ही देशवासियों में स्वदेश प्रेम का तीव्र भाव जागृत करने के लिए वंदे मातरम, प्यारा वतन, आर्यभूमि, जय जय प्यारे भारत देश जैसी राष्ट्रीय भावना से अनुप्राणित कविताओं की रचना की थी। आचार्य संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। संस्कृत कवियों में भी वह कालिदास से सबसे अधिक प्रभावित थे। वाल्मीकि और व्यास के उपरांत वह कालिदास को ही सबसे बड़ा कवि मानते थे। आचार्य प्रवल द्वारा कालिदास के कालजयी तीन तीन महाकाव्यों का औपन्यासिक शैली में रूपांतर चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसे उन्होंने पूर्ण किया था। आचार्य द्विवेदी के समस्त लेखन में जीवन चरित्रों की संख्या सर्वोपरि है। निश्चय ही वह हिंदी के सबसे बड़े जीवनीकार हैं। उन्होंने देशी और विदेशी विभूतियों की जीवनी साहित्य का विषय बनाकर अपने विश्वजनीन विराट दृष्टिकोण का प्रमाण प्रस्तुत किया है। उनकी जीवनियों में जितनी विविधता, व्यापकता और विजन या भविष्य दृष्टि है, वही उन्हें सफल जीवनीकार के रूप में प्रतिष्ठित करती है। द्विवेदी जी द्वारा प्रणीत जीवनियां महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के चतुर्थ एवं पंचम खंड में संग्रहित हैं। इन जीवन चरित्रों के लिए आचार्य प्रवर ने रात दिन एक कर दिए हैं। उन्होंने अपने समय के प्रसिद्ध समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से सामग्री संकलित करके भी उसे जीवनियों का रूप दिया है, ताकि सरस्वती के पाठक संस्कारित हों। जीवनियों में वह सबसे अधिक बाल गंगाधर तिलक के जीवन से प्रभावित थे, इसीलिए इस जीवनी को लिखते समय अपने आप पर नियंत्रण नहीं लगा पाए। उनकी भावुकता के आधार पर चरितनायक की महानता का सहज ही आकलन किया जा सकता है। आचार्य प्रवर लिखते हैं, तिलक तुम निसंदेह इस अभागी भारत भूमि के ललाट के तिलक थे। तुम्हारे पार्थिव शरीर के नष्ट हो जाने से उसका वह तिलक पुछ गया। तुम्हारी लोकमान्य उपाधि ही सार्थक थी। प्राचीन कवियों और विचारकों में द्विवेदी जी ने भवभूति, सुखदेव मिश्र जैसी विभूतियों के अतिरिक्त भारतेंद्र युग के प्रताप नारायण मिश्र भी उनकी जीवनी के विषय बने। द्विवेदी जी सरस्वती के पाठकों को देश विदेश के सभी महत्वपूर्ण चरित्रों और विषयों से परिचित कराने के लिए कृत संकल्प थे, ताकि उनका पाठक समय के कदम से कदम मिलाकर चल सके। इसीलिए आचार्य जी का लगभग समग्र लेखन कार्य साहित्य एवं संस्कृति, भारतीयता का गौरवगान करना अर्थात राष्ट्रीय श्रेष्ठता को प्रतिपादित करना परिलक्षित करता है। आचार्य द्विवेदी के निबंधकार रूप के दर्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली में होते हैं। उनके निबंधों का विशेष महत्व है। उन्होंने अपने वैचारिक निबंधों द्वारा खड़ी बोली कविता की सुदृढ़ पृष्ठभूमि का निर्माण किया। द्विवेदी युग हिंदी निबंध के विकास का दूसरा चरण था। भारतेंदु ने विविध कला विद्या, अमित ज्ञान, अनेक प्रकार की भाषाओं से लेकर अपनी भाषा के भंडार को भरने का जो आह्वान किया था, द्विवेदी जी ने उसी लक्ष्य प्राप्त हेतु अपना सारा जीवन खपा दिया था। द्विवेदी जी क्रांतिदर्शी, अनुशासन प्रिय, उग्र और स्पष्टवादी थे। वह चित्र आधारित कविताओं के जनक थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की अहर्निश हिंदी सेवा तथा साहित्यिक पत्रकारिता को युगों युगों तक याद किया जाएगा।
1: आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक अवदान, ये वार्ता अभी आप सुन रहे थे। वार्ताकार थे श्री सुशील अवस्थी। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम का आज का ये अंक अब यहीं समाप्त होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद अजीज की गाई नात और कवाली। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं ये नात।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज की गाय नात। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है चित्रपट से।

प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे कमाल खान की आवाज में। और अब आइए सुनते हैं अभिजीत और श्रेया घोषाल की आवाजों में इस कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म का नाम मैं हूं ना।

0: चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते और ताशकंद में भारत ने

0: एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विजन में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना करना भी

0: भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
1: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
2: अंडर द थ्री पिलर्स ऑफ ब्रिक्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टिलरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट इन इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से

0: धन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले 2 दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मॉनसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर-17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर-17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर-15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर-17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रोग्राम आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं।
3: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
4: जरा मैं भी सुनू।
3: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
4: तुमसे? नहीं,

से मुझे।

0: लता मंगेशकर मनाडे की आवाजों में ये गीत चोरी चोरी फिल्म से आपने सुना, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

फिल्म जूली से ये गीत अभी आप सुन रहे हैं, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, राजेश रोशन का संगीत।

0: बॉबी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं समाप्त होता है।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।

ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के फनकार उस जगमगाती स्माइल के नाम जिसके जादू से बचना मुश्किल है।

0: कुछ अलग ही है उनका हर अंदाज।
1: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
0: तो आइए मिलते हैं द गॉर्जियस सुपर टैलेंटेड डांसिंग डीवा माधुरी दीक्षित से।

फैंस की लाडली और घर में सबसे छोटी सबकी दुलारी माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ। नृत्य के प्रति जन्मजात रुझान का असर था, जो नन्ही माधुरी संगीत सुनते ही ठुमकने लगती। 3 साल की उम्र से ही उन्होंने कथक सीखना आरंभ किया। कुछ ही वर्षों में कथक की बारीकियां उनके नृत्य में नजर आने लगी। जल्दी उनकी डांस परफॉर्मेंस सराही जाने लगी और बतौर कथक नृत्यांगना उन्हें स्कॉलरशिप मिली। उस वक्त वो सिर्फ 9 साल की थी।

पढ़ाई के साथ साथ माधुरी दीक्षित कल्चरल एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती। स्कूली शिक्षा के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के उद्देश्य से उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। कुछ ऐसे संयोग बने कि उन्होंने हिंदी फिल्मों के रुपहले संसार में किस्मत आजमाने का मन बना लिया। वो साल था 1984 जब राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, अबोध। इस फिल्म में उनके साथ थे बंगाल के अभिनेता तापस पॉल।

अबोध को दर्शकों का प्यार तो नहीं मिल सका, लेकिन माधुरी दीक्षित को मिली आलोचकों की प्रशंसा। आने वाले समय में माधुरी दीक्षित की कई फिल्में आईं। आवारा बाप 1985 में, स्वाति, हिफाजत और उत्तर दक्षिण 19

1987 में। 1988 में उनकी एक साथ चार फिल्में रिलीज हुई, मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, दयावान और तेजाब। फिल्म तेजाब में फिल्म हिफाजत के बाद एक बार फिर उनके साथ नजर आए अनिल कपूर। तेजाब की मोहिनी ने माधुरी दीक्षित को रातों रात स्टार बना दिया।

रवासी में कई सितारों से सजी फिल्म वर्दी में उनकी जोड़ी जैकी श्रॉफ के साथ जमी। इसी साल आई सुभाष घई की फिल्म राम लखन में एक बार फिर अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई।

वक्त के साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ती माधुरी दीक्षित अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदारों में फैंस के दिल में अपनी जगह बनाती गईं। मल्टी स्टारर फिल्म त्रिदेव की जया माथुर हो या प्रेम प्रतिज्ञा की भोली भाली लक्ष्मी राव या फिर परिंदा की पारो, रोल छोटा हो या बड़ा, माधुरी दीक्षित के अभिनय की छाप गहरी होती गई।

90 के दशक में माधुरी दीक्षित के करियर का एक नया दौर शुरू हुआ। 1990 में आई फिल्म कृष्ण कन्हैया के बाद फिल्म दिल की जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। आमिर खान के साथ उनकी इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

अपनी फिल्मों के जरिए माधुरी दीक्षित उस नए जमाने की लड़की की पहचान बन गईं, जो खूबसूरत और स्टाइलिश होने के साथ अकलमंद भी है, आजाद ख्याल है और उसूलों की पक्की है। थानेदार, 100 डेज, साजन जैसी फिल्मों ने ये साबित

1992 में आई फिल्म बेटा, जिसमें एक बार फिर माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी नजर आई। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित को मिला दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

0: अपने अभिनय से हर किरदार को यादगार बनाने वाली माधुरी दीक्षित 90s की बॉक्स ऑफिस क्वीन बन गईं। फिल्म थिएटर से उतरने के बावजूद उनका रोल जहन में हमेशा ताजा रहा। भला कौन भूल सकता है फिल्म खलनायक की जाबाज पुलिस ऑफिसर गंगा को, या फिल्म अंजाम की सताई हुई शिवानी चोपड़ा को, या फिल्म मृत्युदंड की केतकी सिंह को, जो अपराध और अत्याचार के खिलाफ चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है।
1: हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे।
2: देखिए, जाने दीजिए हमको, दीदी का तबीयत ज्यादा खराब है।
1: हमको भी कुछ बात करना है।
2: वो हम बाद में भी कर सकते हैं।
1: बाद में नहीं, अब भी।
2: भगवान के लिए अभी ये बहस मत उठाइए, दीदी को जरूरत है हमारा।
3: देखिए श्रीमती जी, अपना औकात में रहिए, हमरा मरद बनने का कोशिश मत कीजिए।
2: औकात को ताकत का तराजू में तोड़ने का कोशिश मत कीजिए। आप हमारे पति हैं, परमेश्वर बनने का फूल मत कीजिए।
0: 1994 में माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर राशि प्रोडक्शंस की फिल्म की हम आपके हैं कौन। सलमान खान के साथ ये उनकी एक और हिट मूवी थी, जिसके लिए उन्हें मिला तीसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

साल 1997 लेकर आया भावनात्मक उथल पुथल से जूझते तीन किरदारों की फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ

अक्टूबर 1999 में माधुरी दीक्षित अमेरिका के कार्डियोवास्कुलर सर्जन डॉक्टर श्रीराम माधव नेने के साथ विवाह बंधन में बंध गईं।

प्रेम त्रिकोण पर आधारित माधुरी दीक्षित की फिल्मों में सन 2000 की फिल्म पुकार का जिक्र भी आता है, जिसमें प्रेम में हारी ईर्ष्या दग्ध अंजलि के रूप में उनकी जमकर प्रशंसा हुई।

माधुरी दीक्षित एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो हर उम्र हर वर्ग के दर्शकों की फेवरेट रही हैं। 2001 में मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन साहब ने उन्हें लेकर फिल्म गजगामिनी का निर्माण किया। इसी साल रिलीज हुई राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा, जिसमें जानकी के रोल में उन्हें बहुत सराहा गया।

देश हो या विदेश, माधुरी दीक्षित की फिल्मों का जबरदस्त क्रेज रहा है। 2002 में फिल्म देवदास आई, जिसमें माधुरी दीक्षित ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई। इस फिल्म में कथक नृत्यांगना माधुरी दीक्षित के अभिनय को भी बहुत प्रशंसा मिली। उन्हें

0: फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया।
1: ढाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, ढाई शाम रोक लई और चकमुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई, गई, गई, सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक।
0: फिल्म देवदास के बाद माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गईं। वहीं रहते हुए उन्होंने एक फिल्म साइन की। खबर मिलते ही एक बार फिर रुपहले पर्दे पर उन्हें देखने के लिए फैंस बेकरार हो गए और सन 2007 में उनकी बेकरारी को करार देते हुए रिलीज हुई फिल्म आजा नचले।

2012 में वो वापस भारत लौटी और 2014 में रिलीज हुई आलोचकों द्वारा प्रशंसित फिल्म डेढ़ इश्किया, जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और हुमा कुरैशी नजर आए।

0: इसी साल अभिनेत्री जूही चावला के साथ माधुरी की फिल्म आई गुलाब गैंग, जिसमें वुमन एक्टिविस्ट के रोल में उनके सशक्त अभिनय की बहुत सराहना हुई।
1: जैसे तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। जुर्म जुर्म होता है और इंसाफ इंसाफ होता है। हमारे यहाँ कहावत है, डंडा सबका पीर होता है।
0: 2018 में माधुरी दीक्षित पहली बार एक मराठी फिल्म में नजर आईं। फिल्म का नाम था बकेट लिस्ट। इस फिल्म में एक बार फिर माधुरी दीक्षित के अभिनय की धाक जम गई।

2019 में एडवेंचर कॉमेडी टोटल धमाल में वो एक बार फिर अजय देवगन और अनिल कपूर के साथ नजर आईं। 2019 में ही रिलीज हुई फिल्म कलंक में माधुरी दीक्षित के अभिनय की सराहना हुई।

साथ ही वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट्स में भी व्यस्त रहती हैं। अपने अभिनय और नृत्य के साथ निखरती मेस्मराइजिंग माधुरी दीक्षित हर रोल में सफल हों।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। शोध आलेख और स्वर राजुल का था। प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

कार्यक्रम आपकी पसंद से मुझे यानी शिवानी वर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे पत्र व ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है

आवाजें थी अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक की फिल्म का नाम चल मेरे भाई। और अब आइए सुनते हैं मुझे कुछ कहना है इस फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं प्रीति, पिंकी और बाबुल सुप्रियो की।

0: हेलो जिमी, राहुल आ गया अपने 3 पॉइंट पर। नहीं राहुल तो यहाँ नहीं है।
1: अरे बॉबी भी राहुल यहाँ पर नहीं है। 2 मिनट बाद इसकी एंट्री होने वाली है।
2: कार्यक्रम के अंत में सुनिए इश्क फिल्म का गीत। आवाजें कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की।

इस गीत के साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित राजखुशी राम का राग चारुकेशी में पखावज वादन।

प्रस्तुत है हनुमत बीज कवच परन। ये परन हमारे गुरुदेव मृदंग महर्षि स्वामी पागलदास जी द्वारा रचित है। इसको उन्होंने बीज परन के लिए नाम दिया है। हमने इसको हनुमत बीज कवच परन के नाम से इसको बजाया है। प्रस्तुत है हनुमत बीज कवच परन। पहले पढ़न दिन ता त्रिकदि गदि गलेधा त्रिकदि गदि गलेधा

धागे तिट की परन मृदंग की विशेष परन कहलाती है और जो बहुत आवश्यक परन है। मृदंग या पखावज दोनों एक ही नाम है। लोगों को भ्रम है कि मृदंग अलग है और पखावज अलग है, लेकिन हम दोनों ही नाम एक है। हाँ, मृदंगम जरूर अलग है, वो दक्षिण भारतीय वाद्य है। ये चर्चा हम लोग किस कभी करेंगे। आज हम मृदंग की पर्णों की बात कर रहे हैं, पखावज के पर्णों की बात कर रहे हैं। पित्त एक परंपरागत पर्ण है, लेकिन थोड़ा अलग हटके है। बिंता तित गत गदी ग धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट धान धकिट

ये गुरु कृपा से हमारी जिद्दत है। एक आवर्तन में आएगी, तीन परने हैं छोटी छोटी फुलझड़ी की टाइप की, तो तीन परनों में एक पहली धात संपन्न, मतलब एक धा की तिहाई, फिर दूसरी धा दो धा की तिहाई और फिर तीन धा की तिहाई और एक आवर्तन प्रस्तुत है छोटी परने। धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे धागे

साईं बाबा, थोड़ा विवाद विवाद जरूर हो गया है उनके लिए, लेकिन हमारी दृष्टि में जो संत हैं उनके अतीत को न देखिए। अतीत तो सबका है, वाल्मीकि जी का भी अलग था, तुलसीदास जी का भी अलग था, लेकिन जो वर्तमान था उनका और जो भविष्य था उस पर निगाह करके हमने श्री साई बाबा की परण बनाई है और ये परण प्रस्तुत है। साई बाबा परण ये गुरु कृपा से हमसे बन गई है, आपके सामने प्रस्तुत है। पहले पढ़ंत। जय जय शिरडी साई नाथ प्रभु, जयति जयति जय जय गंगाधर घिंद्रगिरतक ना त्रिगिरतक त्रिगिरतक त्रिगिरतकता त्रिगिरतक त्रिगिरतकता त्रिगिरतक त्रिगिरतकता शंकर अभयंकर प्रलयंकर धड़न्न तड़न्न धाकृ धान धा धा शिव ही कृपा मैं साई नाथ प्रभु, कष्ट हरन सुख करन भवतरन श्रद्धा और सबूरी मंत्र प्रदाता राज विधाता। जय जय जय श्री साई नाथ बाबा बाबा बाबा, जय जय जय श्री साई नाथ बाबा बाबा बाबा, जय जय श्री साई नाथ।

रामपुर दरबार की है, आपके सामने प्रस्तुत है पढ़न। गदी गगन देत देत तगिनता धा त्रिगण देत देत देत धड़न नते चित तगित चित धगन का तनी तकित तक दिगन रान देत तगिन धा ताधा तित चित धिगित तगिन धगित चित गदिन तान धा किट किट धिकित तगिन धगित चित गदिन तान धा किट किट धिकित तगिन धगित चित गहिन तान न

जिस तरह से नृत्य में तांडव और लास्य होता है, उसी तरह हमारे पर्णों में भी तांडव और लास्य की स्थिति होती है। एक परण हम आपको पहले लास्य की सुनाएंगे और दूसरी परण तांडव की। पहली परण नाना साहब पानसे घराने की है और दूसरी परण कुदौ सिंह घराने की है। ये था लास्य। अब है तांडव।

रसूत है कुछ चकदार, नाना पांसे घराने की काम त्रिगृत कत दिनता धा दीनता त्रिगृत कत्तगिन गगनाता धा त्रिगृत कत्तगिन गगनाता त्रिगृत कत्तगिन गगनाता धा।